मायनम तू महेश्वरम है, तो सारे जगत का आदि कारण मैं हूं, हम लोग हैं, तो जगत के माता पिता हम हैं, और ये ठूंठ सा बैठा हुआ है, न इसने नमस्कार किया, न इसने खड़े होकर स्वागत किया है। तो ये जो इस प्रकार से बैठा हुआ है, ऐसा भाव उनके अंतर्गत आया। इसलिए पार्वती ने कहा, तू जो है अविचारशील होते हुए और जो है एक ऊंट की तरह से, जड़ व्यक्ति पशु की तरह से बैठा हुआ है, गर्दन ऊपर किए हुए, इसलिए जा तू ऊंट हो जा। संत कुमार को यह श्राप दे दिया, पार्वती ने श्राप दे दिया और आगे बढ़ गए। सनत कुमार को ऊंट के शरीर की प्राप्ति हो गई, सनत कुमार को ऊंट के शरीर की प्राप्ति हो गई, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों परिवर्तन नहीं हुआ? तो गीता का दूसरा अर्थ आपने पढ़ा होगा, भगवान ने क्या कहा, यह बलवी कब आता है? तो एक और श्लोक बच रहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। क्या संकेत किया? आप जो है भोजन छोड़ दोगे, आंख बंद कर लोगे देखना छोड़ दोगे, कान बंद कर लोगे सुनना छोड़ दोगे, लेकिन इतना छोड़ देने मात्र से आप जो है विषयों से हैं या हलचल से रहित नहीं हो सकते। कहा क्यों? तो इसके लिए गीता में बहुत प्रकाश से तृतीय अध्याय में भी संकेत किया, तो वो कहा रसवर्जम, हमने ऊपर से तो सुनना छोड़ दिया, खान बंद कर लिए, आंख बंद कर ली, भोजन का त्याग कर दिया, वस्त्रों का त्याग कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसका रस बैठा हुआ है, उसकी कामना इहा बैठी, तो वो हमको जो है प्रताड़ित करेगी। एक दृष्टांत सुना दें आपको, दृष्टांत क्या, घटित घटना सुना दें। सन्यासी के आसपास की बात है, उस समय हम लोग हरिद्वार में थे, आयु भी छोटी थी, एक बड़े अच्छे संत थे उनके साथ, उज्जैन का शायद कुंभ था, 80 या 89 की बात है, तो उनके साथ हम लोग हरिद्वार से चले, तो वो संत जो थे मौन धारण किए हुए थे, मौनी मौनी उनको कहते भी थे, और 50-55 की आयु भी उनकी थी। हम लोगों की उनके प्रति बड़ी श्रद्धा हुई, अच्छे संत हैं, शांत प्रिय हैं, तो रास्ते में उनकी सेवा करते हुए, खान पान सब पूछते हुए उनके साथ गए, उज्जैन पहुंचे, उज्जैन पहुंच करके वहां मंडलियां चलती, तो हम लोग जहां पर जिस कैंप में रुके थे वहां भी मंडली आई, उस मंडली में वो स्वामी जी भी थे, और जो नारियल वाली चिप्पी कमंडल उनके हाथ में था, एक संत से उनका जो है किसी प्रकार से विवाद हो गया, तो पहले तो वो इशारे से चेष्टाओं से उनसे चर्चा करते रहे, लेकिन फिर वो इतनी बात बढ़ गई कि उनको क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो जो हाथ में चिप्पी थी वही उन्होंने उसके सिर में मार दी, उसके सिर से खून निकल पड़ा। अब हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मौन, तो याद आया भगवत पादाचार्य शंकर कहा वह वचन, क्या, गिरा मौनम तू बालानाम, वाणी का मौन तो ये बालकों का काम है, माने अज्ञानियों का काम, वास्तव में मौन क्या होना चाहिए, तो ये संकेत करता, हम ऊपर से जो है वाणी नहीं बोलते हैं, शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलने की चेष्टा बैठी हुई, तो हम लिखेंगे, स्लेट चाहिए, अमुक चाहिए, या संकेत करेंगे, तो ये सारी क्रिया, इसलिए संकेत कर दिया गया कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक वह जो रस बैठा हुआ है, यह बैठी हुई है, कामना बैठी हुई है, उसकी निवृत्ति नहीं होगी, तब तक बात बनने वाली वैसी को राग देश वियुक्त विषयान इंद्रिय सन, ये भगवान ने संकेत किया। तो अब जो है ये रस कब जाएगा, इस रस की निवृत्ति कब होगी? तो रस की निवृत्ति कहा जो परम है, जब तक उसकी दृष्टि नहीं बनती है तब तक ये रस जाता,
परम को जब तक हम अपना लक्ष्य

0: कुछ नहीं बना पाते हैं, उसमें हमारी दृष्टि नहीं होती है, तब तक रस नहीं जाता, तब तक अपरम जो है उनमें रस बना रहता है। जी संकेत किया। तो यहां संत कुमार के जीवन में क्या था, वो बाहर से नहीं, उनके अंदर रस चला गया था। और जिसके अंतर्गत से रस चला जाता उसकी स्थिति क्या होती, तो इसको यदि समझना चाहे तो अष्टावक्र ने जनक को समझाते हुए इस बात को कहा। अष्टावक्र ने कहा, निर्वासनो निरालंब स्वच्छंद मुक्त बंधन।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। द नेक्स्ट प्रोग्राम इज शिव कीर्तनास। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन प्रणदार्थिहरम सॉन्ग sung by Sri Rajaram Iyer. Thank you. Om Namah Shivaya.

ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

वन्याय वन्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च वन्याय वन्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च नमो नमश्च कक्ष्याय।

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹாவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. ஃபிலாசபிக்கல் டிஸ்கோசஸ் அண்ட் பெரிய புராணம் லெக்சர்ஸ் இன் தமிழ் will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Veda Pataha ऋग्वेद रथपाठः.
2: ओम तक्षन्ना सत्याभ्याम युवाना पितरा, ना सत्याभ्याम तक्षन्ना पितरा युवाना, तक्षन्ना सत्याभ्याम युवाना पितरा, ना सत्याभ्याम परिज्मानं पितरा पुनः, परिज्मानं ना सत्याभ्याम तक्षन्ना पुनः पितरा युवाना, तक्षन्ना सत्याभ्याम युवाना पितरा, न सत्याभ्याम परिज्मानं पितरा पुनः, परिज्मानं सुखं पुनः सत्यमन्त्राः, परिज्मानमिति परिज्मानं पुनरिति पुनः, सुखं परिज्मानं न सत्याभ्याम तक्षन्न सत्यमन्त्राः पुनः पितरा युवाना, तक्षन्न सत्याभ्याम युवाना पितरा, न सत्याभ्याम परिज्मानं पितरा पुनः, परिज्मानं सुखं पुनः सत्यमन्त्राः, परिज्मानमिति परिज्मानं पुनरिति पुनः, सुखं रथं सत्यमन्त्रा ऋजुयवाः, सुखमिति सुखं सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः, रथं सुखं परिज्मानं न सत्याभ्यां तक्षन् ऋजुयवः सत्यमन्त्राः पुनः पितरा युवाना, तक्षन्न सत्याभ्यां युवाना पितरा, न सत्याभ्यां परिज्मानं पितरा पुनः, परिज्मानं सुखं पुनः सत्यमन्त्राः, परिज्मानमिति परिज्मानं पुनरिति पुनः, सुखं रथं सत्यमन्त्रा ऋजुयवाः, सुखमिति सुखं सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः, रथमिति रथं ऋजुयवाः.

कशा मधुमती रथि तमेति रथि तमा कशा मधुमती उभा देवा मधुमत्यश्विना मधुमतीति मधुमती देवा दिविस्पृशा अश्विना सुन्द्रतावती दिविस्पृशे।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: விஸ்வம் தர்ப்பண திருஷ்யமான நகரி துல்லியம். ஜாகிரத அவஸ்தா மே ஹமே ஜோ விஸ்வ ஜோ பதார்த்த ஜோ பிரபஞ்ச அனுபவ மே ஆ ரஹா ஹை திகாயி பட் ரஹா ஹை இஸ்கி வாஸ்தவிக்தா கைசி ஹை தோ ஆச்சாரிய சங்கர் பதாத்தே ஹை दर्पण में दिखे हुए दृश्य की तरह है। दर्पण में दिखने वाले दृश्य को हम दो तरह से मानते हैं। जब तक अपने ललाट की बिंदिया ठीक करनी होती है तब तक तो वह सत्य की तरह देखते हैं। जब तक अपने केस को ठीक करना होता है तब तक तो हम उसको भी सत्य की तरह ही देखते हैं, मानते हैं। जब तक अपने कमीज के कलर ठीक करनी होती है, कॉलर बोलते हैं ना, ठीक है कि नहीं, तो तब तक उस दर्पण में देखने वाले दृश्य को भी सत्य ही मानते हैं। या जब तक अपने सफेद बाल को काले करनी होती है तब तक भी हम सत्य ही मानते हैं कि नहीं। आप लोगों में से बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते हो, सबके सफेद दिख रही हैं, तो उसको सत्य ही मानते हैं। वो जो कहता है वो हम उसी को मान लेते हैं। दर्पण जो कहता है, जो दिखा रहा है, उसको सत्य मान रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर हम उसके परवाह नहीं करते, फिर हम चले जाते हैं, हम हट जाते हैं वहां से। हमारे हटने के बाद उसका क्या होगा? जब चाय पीने लगते हैं तो एक कप उसके लिए अतिरिक्त बनाकर रखते नहीं है, रखते हैं। जब भोजन करनी होती है तो उसके लिए एक कटोरी रस, आम का रस अलग नहीं रखते, उसके लिए अलग थाली तैयार नहीं करते। जब बाजार से कपड़ा खरीद के लाने होता है तो उसके लिए अलग साड़ी नहीं खरीदते हैं, उसके लिए अलग वस्त्र नहीं खरीदते हैं। उसका क्या होगा? तो कहते हैं कि अरे वो है ही नहीं, तो उसके लिए क्या भोजन रखनी, अलग थाली क्यों बनानी है? वो है ही नहीं तो उसके लिए अलग कपड़ा क्या करना है? हम खा लेंगे तो उसको हो जाएगा, हम पहन लेंगे तो उसको हो जाएगा। तो दो तरह से देखते हैं हम दर्पण के दृश्य को। एक तो कहीं सत्य की तरह देख लेते हैं और कहीं झूठे की तरह देखते हैं। शंकराचार्य जी की मान्यता है, शंकराचार्य जी का कहना है, वास्तव में ये पदार्थ दर्पण में दृश्यमान नगर के पदार्थ के समान है। सारा विश्व इसको सत्य मान लेना ही सबसे बड़ी जीव की भूल है। दिखना ही नहीं चाहिए ये अर्थ नहीं है, दिखने पर भी उसको सत्य मानना कि नहीं मानना ये आप पर निर्भर करता है। दिखता है कि नहीं दिखता है ये आप पर निर्भर नहीं करेगा। आप नहीं चाहोगे तो भी दिखेगा। आप दर्पण के आगे खड़े हो जाओगे और आपके आंख ठीक है, वो वस्तुतंत्र नहीं है, कर्तृतंत्र नहीं है, वो वस्तुतंत्र है, वेदांत का सिद्धांत है। कर्म आदि सब, स्वर्ग आदि, ये कर्तृतंत्र है, करोगे तभी प्राप्त होगा। लेकिन ये वस्तु ज्ञान जो है वह कर्तृतंत्र तंत्र नहीं है, वो वस्तुतंत्र है। प्रकाश हो और आंख ठीक हो और सामने दर्पण खड़ा हो, आप लाख कोशिश करें कि मैं उसको नहीं देखूंगा तो ये नहीं होगा। दिख तो रहेगा, दिखेगा तो सही, आप कहें कि जगत को मैं देखूंगा ही नहीं, ये नहीं होगा। दिखेगा तो सही, या तो आंख बंद कर लो हमेशा, या अंधकार में बैठे रहो हमेशा। नहीं तो आंख ठीक है और प्रकाश भी है तो दिखेगा, लेकिन दिखने पर किस रूप में दिखता है वो आप पर निर्भर करता है। उसको यथार्थ के रूप में देखना चाहते हो कि अयथार्थ के रूप में देखना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करता है। दिखने वाले दृश्य को सत्य के रूप में आप देखना चाहो तो देख लो, सत्य के रूप में देख लो, लेकिन एक बात ख्याल रख लेना, आपकी चाहना मात्र से वो सत्य नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा कि ये सत्य है, लेकिन आपको लगने मात्र से वो सत्य नहीं होता। नहीं तो बहुत आसान था, संसार में धनी होना बहुत आसान था, क्योंकि नदी के किनारे समुद्र के किनारे खड़े हो जाते और सबकी सीपी के चांदी को आप सत्य मान लेते, तो आपके सत्य मानने पर सबके सबको सत्य मानना पड़ता, तब तो फिर आपको धन कमाना कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आपके सत्य मानते ही फिर सब सत्य मान लेंगे, तो फिर समुद्र के किनारे सीपी भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सभी सत्य मानने लग जाएंगे तो फिर कौन छोड़ेगा उसको है? केवल आपको सत्य लग रहा है और सत्य नहीं मानते, इसलिए आपके लिए बचा रहता है। जैसे आपको सत्य लगा वैसे और को भी सत्य लग जाएगा, तो कहां बचेगा समुद्र के किनारे सीपी? बचेगी, सभी उसको उठाते ले जाएंगे, किनारे में आ गया कि उठा लिया। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, निजांतरगतम, कहां दिख रहा है ये जगत, है कहां? है तो निजांतरगत, तुम्हारे अंदर ही है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी सत्ता से भिन्न सत्ता नहीं है। तुम्हारी अंदर है का मतलब ये नहीं समझ लेना कि जैसे हॉल के अंदर हम अलग हैं, स्वतंत्र हैं, हम बैठें चाहे उठें, चाहे कथा सुने चाहे कुर्सी में सो जाएं, हम स्वतंत्र हैं, हैं कि नहीं बोलो? यहां बैठने वाले सभी को कथा सुनना अनिवार्य है कि सोने के लिए भी स्वतंत्र है वो? है, निद्रा लग जाए तो सो भी सकता है कि नहीं बोलो? स्वतंत्र है, कोई कानून तो है ही नहीं कि हॉल में कुर्सी में बैठने के बाद सोना नहीं, ऐसा तो नियम तो है ही नहीं। और नियम भी बना देंगे तो वह नियम वहां दरवाजे में लटका रहेगा, नियम, अपना सोने का काम सोते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, निजांतरगत का अर्थ होता है कि अपनी सत्ता से स्वतंत्र सत्ता वाले ये पदार्थ है नहीं। दर्पण की सत्ता से दर्पण के अंदर दिखने वाला जो दृश्य है वह स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है। यदि स्वतंत्र सत्ता वाला होता तो फिर दर्पण के नष्ट होने पर भी उसमें कोई भी विकार ना आता। दर्पण के हटने के बाद, दर्पण के टूटने के बाद भी वह यथावत बना रहता, स्वतंत्र सत्ता वाला होता तो। निजांतरगत, हम अपने अंदर विद्यमान है। लेकिन हमको तो सब ये लग रहा है कि ये तो सब हमसे बाहर है, हमसे बाहर है। किसी को भी ये नहीं लग रहा है कि ये सब हमारे अंदर है, ना आपको लग रहा है ना मुझे लग रहा है, मुझे भी नहीं लग रहा है। मैं कह तो रहा हूं शंकराचार्य जी की भाषा को, मुझे नहीं लग रहा है कि आप सब मेरे अंदर हो। लगने की बात जहां तक है, विचार से सिद्ध होता है कि आप मेरे अंदर हैं, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है कि आप मेरे अंदर हैं। विचार से सिद्ध होता है कि आप मेरे अंदर हैं, क्योंकि आपकी सत्ता केवल मेरी दृष्टि और मेरी सत्ता पर निर्भर है। आप यहां हो कि नहीं, आप मेरे से बाहर हो कि नहीं, आप कुर्सियों में बैठे हो कि नहीं, या आप स्वतंत्र नहीं है, वो मेरी सत्ता पर निर्भर है। मैं आंख बंद कर दूं तो क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे बोलो? मैं आंख बंद कर दूं तो क्या कर लोगे? तुम्हारी सत्ता कुर्सी में सिद्ध होगी? मैं गहरी निद्रा में चला जाऊंगा, बोलो, मैं गहरी निद्रा में, डीप स्लीप में चला जाऊंगा तो तुम्हारी सत्ता कुर्सी में सिद्ध होगी? है? तुम हो यही मुझे भान नहीं होगा तो कैसे सिद्ध करूंगा कि कुर्सी में हो? यही तो बात है। शुतुरमुर्ग को लगता है, कहते हैं कि जब उसको कोई डर लगता है तो वह बालू में, रेत में सिर छुपा लेती है। कहते हैं बिल्ली को जब दूध पीनी होती है तो आंख बंद कर लेती है। बिल्ली से पूछा कि भाई दूध पीते समय आंख बंद क्यों करती हो? उसने कहा डर लगता है, आंख खोल लूं तो डर लगता है। सो कैसे? क्योंकि मैं आंख खोलूं तो सामने और कोई दिखाई पड़ेगा, और कोई और होगा तो वो मुझे मारेगा, वो देख लेगा कि मैं दूध पी रही हूं। आपने आंख बंद कर दिया तो सामने कोई भी दिखेगा नहीं, कोई भी नहीं दिखेगा तो कोई मारने वाला ही नहीं है, तो आपने निश्चिंत तो दूध पी लो। आप भी दूध पीना हो तो आंख बंद करके पी लेना, निश्चिंत तो होगा। तो आप देखते हो तभी बाहर दिखाई पड़ता है, आप न देखो आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये बात सिद्धांत तक ही है, प्रयोग में आना बड़ा मुश्किल है, प्रयोग में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा ये अभ्यास हुआ है और इस अभ्यास के चलते ऐसा अध्यास हुआ है कि हमने कभी भी ये पक्ष को सोचा ही नहीं है कि पदार्थों को बाहर न देखकर अंदर देखें, कभी सोचा ही नहीं है, कभी अभ्यास किया ही नहीं है। तो फिर हम हमेशा बाहर देखते आए हैं, तो वही आदत है, वही अभ्यास है, उस अभ्यास के चलते ये अध्यास इतना दृढ़ हो गया है कि हमको बाहर के अलावा अंदर पदार्थ दिखता ही नहीं है। दृष्टांत दिया उन्होंने, स्वप्ने स्वंतर्गतम विश्वम यथा पृथक इवेक्षते पश्यन्नात्मया मायया बहिरिवोद्भूतम यथा निद्रया। दृष्टांत दिया था, यथा निद्रया बहिरुद्भूतम इव पश्यन्, जैसे स्वप्नावस्था में अंदर ही अपनी सत्ता और अपने प्रकाश से भिन्न अभिन्न हुए हुए पदार्थों को, अपने ही अंदर विद्यमान तमाम पदार्थों को स्वप्न दृष्टा पुरुष बाहर की तरह देखता है। लेकिन स्वप्न में दिखाई दिए हुए, दिखाई पड़ने वाले वो सभी पदार्थ वास्तव में निजांतर है। जैसे स्वप्न के सारे दृश्य निज अंतर्गत है, अपने ही अंदर विद्यमान है, अपनी सत्ता और अपनी प्रकाश से भिन्न प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, अपनी सत्ता से भिन्न सत्ता वाले नहीं होते। आपको अभी तो ये लग रहा है कि कुर्सी की सत्ता मेरी सत्ता से भिन्न सत्ता है, आपको अभी तो ये लग रहा है, मैं भिन्न हूं कुर्सी भिन्न है, कुर्सी स्वतंत्र सत्ता वाली है, मैं यहां से निकल जाने पर भी कुर्सी यहीं के यहीं रहती है, और जब मैं बाहर से आ रहा था तो कुर्सी यहीं थी, कल भी यहीं छोड़ के गया था और आज भी यहीं है, और मैं कहां से कहां पहुंचकर आ गया। इसका मतलब यह है कि यदि मेरी सत्ता से कुर्सी की सत्ता भिन्न न होती, अभिन्न होती, तो मैं जहां जाता कुर्सी वहीं पीछे लग कर जाती, मनमोहन की तरह है, शायद उसी की कुर्सी पीछे लग कर जाती और किसी की नहीं जाती है। स्वतंत्र सत्ता, हमको ऐसा नहीं लगता कि अभी कुर्सी की सत्ता और मेरी सत्ता एक ही है, और हमको ये नहीं लगता है कि ये कुर्सी को देखने वाला मैं अलग हूं और दूसरा अलग है, इसको प्रकाशित करने वाला सूर्य का प्रकाश अलग है, देखने वाला मैं अलग हूं, कुर्सी की सत्ता अलग है, अलग अलग। लेकिन दृष्टांत दिया, आप तो ये जागृत में जो कुछ भी हो रहा है ये भ्रांति से हो रहा है, सत्य क्या है? जैसे स्वप्न की कुर्सी और आपकी सत्ता, कुर्सी की सत्ता और आपकी सत्ता दोनों अलग अलग है कि नहीं? स्वप्न की कुर्सी की सत्ता और आपकी सत्ता दोनों सत्ता अलग अलग है कि नहीं? ऐसा होगा कि आप जागृत में आ जाएं और कुर्सी की सत्ता स्वप्न में ही रह जाए, स्वप्न की कुर्सी की सत्ता वो स्वप्न में सुरक्षित रह जाए, संभव है? है? आप जागृत में आ जाएं या आप सुसुप्ति में चला जाएं, तब स्वप्न की कुर्सी की सत्ता स्थावत यथावत रहेगी वहां? इसका मतलब यही सिद्ध हुआ कि आपकी सत्ता और कुर्सी की सत्ता भिन्न नहीं है। और आप कहोगे कि भिन्न नहीं है, एक ही है, तो फिर सुसुप्ति में भी कुर्सी दिखनी चाहिए, क्योंकि मैं सुसुप्ति में गया तो कुर्सी भी वहीं जानी चाहिए। मेरी सत्ता जहां है कुर्सी की सत्ता वहीं है, दोनों की सत्ता एक ही है, तो सुसुप्ति में भी कुर्सी जानी चाहिए, सुसुप्ति में तो नहीं जाती। और जागृत में आते ही तो कुर्सी की सत्ता, फिर स्वप्न की कुर्सी की सत्ता जागृत में भी आनी चाहिए, फिर जागृत में नहीं आती है। तो मेरी सत्ता और स्वप्न की कुर्सी की सत्ता दोनों को अलग अलग कैसे माने? एक ही माने, एक ही मानते हैं तो फिर अनुभव में क्यों नहीं आता है? तो यह अनिर्वचनीय है, वेदांत यहीं जाकर अनिर्वचनीय कहता है। ये जागृत की सत्ता भी ठीक इसी तरह है। दूसरी तरफ, दूसरी बात, स्वप्न में उस कुर्सी को प्रकाशित करने वाला प्रकाश और आप, ये दोनों एक ही है। मैं हूं जो बोध वहां हो रहा है, वही आपका प्रकाश ही, ये कुर्सी है ये बोध करा रहा है। कुर्सी को प्रकाशित करने वाला प्रकाश और आपके प्रकाश ये दो नहीं है, इसीलिए प्रकाश और सत्ता स्वप्न की दोनों एक ही है। स्वप्ने स्वांतर्गतम विश्वम यथा पृथक इवेक्षते, अंतर्गतम विश्वम यथा पृथक इव इच्छते, स्वप्न दृष्टा अपने से भिन्न की तरह देखता है ठीक उसी तरह, तथैव जागृत काले अपि प्रपंचोयम् विविच्यताम्, इसी तरह जागृत का ये प्रपंच भी आपके अंदर ही है, ये विचार कर लेना। विविच्यताम्, ये विचार किए बिना ये अनुभव में नहीं आएगा। बिना विचारे यदि इसको अपने अंदर देखना चाहो तो वो संभव नहीं होगा। विचार करोगे तब आपकी सत्ता और आपके प्रकाश से अभिन्न सिद्ध हो जाएगा। स्वप्ने स्वसत्ते वार्थानां सत्ता नान्येति निश्चिता, को जागृति विशेषस्ति जड़ानां आसुनासिनां। जागृत के पदार्थ जड़ होने के कारण स्वयं प्रकाशित तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि जड़ पदार्थ में प्रकाशता नहीं है। और मैं अपने आप को जड़ मान नहीं सकता, क्योंकि किसी भी हालत में भी अपने को जड़ नहीं मान सकता। अतः मैं चैतन्य रूप हूं और जो चैतन्यता है उसी में ही प्रकाशता है। तो उसकी विशेषता क्या है? कि वह दूसरे को भी प्रकाशित कर सकता है और स्वयं भी प्रकाशित हो सकता है। जागृत के तमाम पदार्थ जड़ होने के कारण ये जड़ पदार्थ न ये दूसरों को प्रकाशित कर सकते हैं, न खुद प्रकाशित हो सकते हैं। आपका पेन यदि खो जाए तो उसको संबोधन करो, हे पेन मास्टर तू कहां है? तो शायद वो बता पाएगा कि मैं यहां पर हूं। बता पाएगा? है? हे पेनी राम, है? तू कहां है? तो वो बता नहीं पाएगा कि मैं कहां हूं। और उसके साथ, अच्छा भाई तेरे साथ और कौन कौन है वो भी नहीं बता पाएगा कि मेरे साथ और कौन कौन है, ना मेरे साथ और कौन कौन है ये बता पाएगा, ना ये बता पाएगा कि मैं कहां पर हूं, किस अवस्था में हूं। ऐसी अवस्था क्यों है? तो क्योंकि वो जड़ है। जड़ वस्तु में न तो वह अन्य को प्रकाशित करने की क्षमता है, न खुद प्रकाशित होने की क्षमता है। स्वप्ने स्वसत्य वार्थानम सत्तान्नान्येति निश्चिता को जाग्रति विशेषो अस्ति जड़ानम आसुनासीनाम, क्योंकि वही पदार्थ स्वप्न में भी वह सूक्ष्म संस्कारवान जो पदार्थ है वह जड़ का संस्कार जड़ ही होगा, तो तुम्हारे प्रकाश के बिना स्वप्न के पदार्थ प्रकाशित नहीं होते, इसी तरह जागृत के ये पदार्थ भी तुम्हारे प्रकाश के बिना प्रकाशित नहीं होंगे। तुम देखोगे कि ये कलम यहां पर है तभी वो प्रकाशित होगा, अन्यथा प्रकाशित नहीं होगा। तुम्हारे प्रकाश से पेन प्रकाशित होता है, अन्यथा पेन प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि जड़ है। आसुना आसीनाम। और दूसरी बात यह है कि जड़ पदार्थ जागृत के पदार्थ इतने अनित्य हैं, इतने अनित्य हैं, तो इनकी खुद की सत्ता है यह तो कोई मूर्ख भी कल्पना नहीं कर सकता। जागृत के दिखे हुए पदार्थ इतने अनित्य हैं, आसुनासी हैं, दृष्ट नष्ट हैं। जब आसुनासी हैं, दृष्ट नष्ट हैं, तब फिर कैसे ये कल्पना करते हो कि ये पदार्थ खुद अपनी सत्ता में टिके हुए हैं? तो इसका मतलब है कि इनको टिकाने वाला कोई और सत्ता है जिसकी सत्ता से ये कुछ टिके हुए हैं, कुछ टिके हुए हैं ना, वो भी पूर्ण टिकाऊ तो इनकी नहीं है। दूसरे की सत्ता से टिकने पर भी यह पूर्ण इनकी स्थिरता नहीं है, अनित्यता सिद्ध है। तो सत्ता भी तुम्हारी है और प्रकाश भी तुम्हारी है। को जागृति विशेषो अस्ति जड़ानाम आसुनासीनाम। सुरेश्वराचार्य जी श्लोक इस मूल श्लोक की व्याख्या करते हैं। स्वप्ने प्रकाशो भावानाम सो प्रकाशान नहीं तर जाग्रत्यपि तथे वेति निश्चिन्वन्ति विपश्चितः। विपश्चित विचार करने वाले व्यक्ति को विचार के माध्यम से यह निश्चय करना चाहिए, ये बिना विचारे निश्चय नहीं होगा। दूसरे के कह देने मात्र से आपको निश्चय नहीं बन पाएगा, आपको खुद विचार करना पड़ेगा तभी जाकर आप निश्चय कर पाओगे। कोई दूसरा कह देगा कि यह जगत का पदार्थ स्वप्न की तरह है, ये कह देने मात्र से निश्चय नहीं होगा। खूब बैठकर खूब गंभीरता से युक्तियों से प्रमाणों से आचार्य वचनों से आप जब खुद विचार करने लगोगे तब धीरे धीरे आपको यही बोध होने लगेगा कि हाँ ठीक कह रहे, श्रुति जो कह रही है ठीक कह रही है, आचार्य जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा ही अनुभव हो रहा है। तब जाकर विपश्चित विद्वानों को, विचारवान पुरुषों को ही यह निश्चय होगा कि जाग्रत का पदार्थ भी स्वप्न की पदार्थ की तरह ही है, उससे भिन्न इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तब जाकर निश्चय होगा। निद्रया दर्शिता नर्थान न पश्यति यथोत्थितः। उसी बात को और स्पष्ट करते हैं। निद्रया दर्शितान अर्थान, निद्रा यानी स्वप्न रूपी निमित्त से दिखाई देने वाले स्वाप्निक पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ वस्तु हैं, न पश्यति यथोत्थितान, जगने के बाद स्वप्न में जो पदार्थ जिस रूप में दिखाई पड़ रहे थे वो पदार्थ जगने के बाद उस रूप में दिखाई नहीं पड़ते। स्वप्न में सूर्य दिखाई पड़ रहा था। अब रात्रि का समय है, पदार्थ इतने विरोधाभासी हैं, स्वप्न में आपको सूर्य दिखाई पड़ रहा था और यदि आप स्वप्न में जग गए, किसी निमित्त से गए, कई बार ऐसा होता है, स्वप्न देख रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, गर्मी है, इतना गर्मी है कि एकदम शरीर से पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है, और आप छटपटा रहे हैं कि बेचैन हो रहे हैं कि कहीं छाया मिल जाए, शीतल पानी मिल जाए, तो कहीं छाया भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिल रहा था, आप छटपटा रहे थे। उसी समय में किसी कारण से, कई बार ऐसा होता है, स्वप्न के दृश्यों से स्थूल शरीर में भी क्रिया होती है, जबकि नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वप्न के दृश्य का सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध है और सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ संबंध होने के कारण तत्संबंधा तत्संबंध के द्वारा स्थूल शरीर में क्रिया दिखने लग जाता है। कई बार स्वप्न देखने वाला व्यक्ति स्वप्न में संवाद करता है, किसी से बोलता है, तो यूं तो सामान्यतया स्वप्न में वो क्या बोल रहा है जागृत को पता नहीं चलने वाला है, भैखरी के रूप में परिणत नहीं होगा वो।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Manakkanjara Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhaktos, aaj hum sunenge aur ek Nayanmar Yasan ki kahani, jinka naam hai Manakkanjara. तमिलनाडु के आधुनिकता आनंद तांडवपुरम का पुराना नाम कंचारूर प्रसिद्ध था। इस कंचारूर में वीर सेनानियों के एक प्रतिष्ठित वेलालर या सेनापति कुल में मानकंचारूर का जन्म हुआ। इस वंश के लोग नरेशों के सेनापति रहते रहे हैं। मानकंचारूर भी एक सुयोग्य और सफल सेनानायक थे, परंतु व्यवहार में विनम्रता से एक प्रतिमूर्ति थे। उनका मन संतों और भक्तों की सेवा में आनंद का अनुभव करता था। शिव भक्तों की सेवा करना इनके जीवन का व्रत बन गया था। मानकंचारूर को चिरकाल एक संतान सुख की कामना थी। कई वर्ष बाद प्रभु कृपा से उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। रूप सौंदर्य में अद्वितीय विविध गुणों से युक्त इस कन्या के घने काले दीर्घ केश उसका विशेष आकर्षण थे। जब कन्या युवा हुई तो अपने संबंधियों में से एक योग्य युवक जिनका नाम एना था, उनके साथ मानकंचारूर की युवती का विवाह निश्चय किया गया। विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई थी। विवाह उत्सव का दिवस आ पहुंचा। विवाह मंडप में आमंत्रित लोग बड़ी धूमधाम से आनंद ले रहे थे। प्रभु शिव तभी स्वयं तपस्वी का वेश धारण कर वहां आ पहुंचे। शरीर में पवित्र भस्म का लेप, पुत्राक्ष की मालाएं और शीश पर जटा समूह सज्जित, उनका वेश उत्तर भारत के शैव मार्गी महाविधि शाखाओं के संत जैसा था। मानकंचारूर उसे उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनका उन्होंने खूब आदर सत्कार किया। बड़ी बेटी को भी उनके पास ले गया और आशीर्वाद लेने को कहा। उनकी बेटी के लंबे केश को देखकर मानो तपस्वी आश्चर्यचकित रह गए। महाव्रती मुनिश्रेष्ठ की आंखें नववधु की विशेष केश पर अटक गईं। वे उनकी केश से मुग्ध हो गए। बिना किसी को संबोधित किए हुए मुनि ने विचार व्यक्त किया, श्यामल मेघ के समान सुशोभित यह केश अगर मिल जाए तो जो हमारी पंचसूत्री पंचवटी बनाने के काम आएंगी। साधु की यह इच्छा जानकर मानकाचार्य ने तत्काल अपनी तलवार निकाली और बेटी के सौभाग्य सज्जित केश काट डाले और उन्हें उन्हीं के कर कमलों में अर्पित कर दिया। लेकिन आश्चर्य, सभी लोगों ने देखा कि महाबली अंतर्धान हो गए और आकाश में पार्वती के साथ खड़े शिव स्वयं दर्शन दे रहे थे। कन्या की वेणी का केश यथावत हो गई। प्रथम दृष्टि में इस कथा में कोई अद्भुत त्याग नजर नहीं आता, परंतु ये याद रखें, विवाह मंडप में पधारे मुनिवर की वेशभूषा शैव मार्ग के महाभक्तियों जैसी थी। इस प्रकार के साधु तमिलनाडु के नहीं होते, अपितु इस संप्रदाय विशेष के लोग उत्तर भारत में होते हैं। कन्या के विवाह समारोह में अपने संप्रदाय से बाहर के साधु के आ जाने पर इतना विशेष सत्कार करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु मानकाचार्य ने शिव भक्त के रूप में उनका विशेष आदर सम्मान किया। किसी उत्तर भारतीय साधु द्वारा नववधु की केश मांगने पर उसे तुरंत काट कर दे देना एक तथ्य को उजागर करता है। संत श्रेणी या नायना श्रेणी के ये शैव संत जाति धर्म और क्षेत्र के भेदभाव के ऊपर उठ चुके थे। उनके लिए शिव चिन्ह ही प्रमुख था। उसे धारण करने वाले की जाति धर्म और क्षेत्र से कोई अंतर नहीं पड़ता। पुत्री के केश काटने के साथ ही मानकाचार्य ने मानो अपने समस्त सांसारिक बंधनों को काट फेंका था। स्पष्ट है कि संत अपना सर्वस्व शिव भक्तों की संपत्ति मानते हैं, अतः इनके लिए ऐसी घटनाएं दिनचर्या जीवन की घटनाओं के समान साधारण सी बात है। इसीलिए मानकाचार्य एक उच्च कोटि के संत है। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.आर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाई डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
5: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Saivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
6: Bhajan kar Paramatma ka. Bole Narad Ji ko kaha Markandeya Ji ne, abhi kya chinta hai bhai? अभी तो बहुत बच्चा हूं, बड़ी लंबी जीवन है, कर लेंगे बाद में भगवान का भजन। ये तो उम्र ही खेलने का उम्र है बेटा। नारद जी, क्या चिंता है, खेलने दो। नारद जी ने कहा कि अभी बड़ी उम्र नहीं है, अभी एक मुहूर्त बाकी है। सच कह रहा हूं, तेरा प्रारब्ध समाप्त है। अरे एक ही मुहूर्त है, फिर क्या करे? उसके बाद बोले यमराज आएगा, तेरे को उठा जाएगा, निकालेगा, ले जाएगा, तुझे मरना पड़ेगा। हाँ, किस चक्कर में पड़ा है तू? बड़ी भारी लंबी आयु, लंबा समय है, लंबी आयु ये कह रहा है, कुछ नहीं है। अरे राम राम, तब तो फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर क्या करें? बोलो, बचने का कोई उपाय? बोले और कोई उपाय नहीं है। मेरी मां है, मेरे पिता है, भाई बंधु हैं, कोई ना कोई तो मदद करेगा ना उस समय में। पृथ्वीपति सूर्य ने महाराष्ट्र के कवि हुए हैं पृथ्वीपति सूर्य, उन्होंने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरि बलम कुलम अवति कोऽपि न कालगतम वशम भजत रे मनुज गिरिजापति।
0: अरे मनुष्य, तो इस भरोसे में नहीं रहना कि काल वशम गतम, जिस समय यमराज के वश में जाने का समय होगा उस समय में न जनको न जननी, यमराज सामने आ जाएंगे तो तेरे बाप भी तेरे को बचाने में असमर्थ हैं, न जाना का तो किसी के भरोसे में नहीं रहना। बोले पिता नहीं बचाएगा, मां तो बचाएगी ना। बोले न जननी, मां भी उस समय नहीं बचा सकती है। भूख लगी हो तो खाना खिला सकती है, लेकिन यमराज सामने खड़े हो मां कुछ नहीं कर सकती। न चसोदरा, अपना ही बेटा भी कुछ नहीं कर पाएगा, भाई अपना भाई भी कुछ नहीं कर पाएगा। न तनय, अपना बेटा भी कुछ नहीं कर पाएगा। न च भूरी बलम, और लोग कुछ नहीं कर पाएंगे तो बादाम खा के डंडवर पेल कर तगड़ा है पहलवान बनेंगे तब तो बल काम आएगा। बोले न च भूरी बलम कुलम, तुम्हारे शरीर की ताकत भी काम नहीं आएगी। आवति को पिन काल गतम बसम, फिर उस समय में कौन रक्षा करेगा, कौन मदद करेगा? तो कवि ने कहा कि एक ही व्यक्ति है उस समय में, ऐसी अवस्था में तुम्हारी रक्षा करने वाला, रक्षा करने में समर्थ एक ही व्यक्ति है। कौन है महाराज? भजत रे मनुजा गिरिजापतिम, वह पर्वत पुत्री पार्वती उनके जो पति हैं गिरिजापति। गिरि पर्वत, जा पर्वत से उत्पन्न हुई, गिरिजा पार्वती उनके पति शिव, वही समर्थ है, उसके अलावा और कोई समर्थ नहीं। यदि उस समय उनके शरण में गए तो वो तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, और नहीं कर सकते, बस। फिर नारद जी ने मार्कंड ऋषि को वही समझा दिया। तो मार्कंड ऋषि ने कहा कि अच्छा, उनके शरण में जाने के बाद वो रक्षा करेंगे? बोले हाँ, पक्की बात है। तो तुरंत ही खेलना छोड़कर भगवान शिव के शरण में चले गए अनन्य। तो कहते हैं कि वहां जहां खेल रहे थे उस मैदान के बगल में ही एक शिव मंदिर था। खेला छोड़कर तुरंत मंदिर के अंदर घुस गए और शुरू कर दिया प्रार्थना। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम् कर्म बंधनैः। प्रार्थना करना आरंभ कर दिया, तब तक एक मुहूर्त समय निकल गया। नारद जी बाहर खड़े थे, अब देखते हैं क्या होता है। यमराज ने मार्कंडेय ऋषि को कहा कि हे मार्कंडेय ऋषि, तू कहां है? चल अब यहां तेरा खेल खत्म, यहां मृत्युलोक में तेरा खेल अब खत्म, चल बाहर आ। बोले कौन हो? बोले मैं मृत्यु का देवता यमराज खुद आया हूं। चल, अरे ठहरो बाहर, हम अभी पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, बाहर ठहरे रहो।
6: यमराज ने कहा कि आज तक कोई किसी बहाने से नहीं बचा है। टेबल में खाना खाने बैठा हो और यमराज आए, वो बताओ मैं ये थाली का भोजन खा पूरा करूं तब ले जाना, रुका है भोजन पूरा करने तक और तुम टॉयलेट में बैठे हो और यमराज आ गया, चल खड़े रहो हम पूरा फ्रेश हो जाए नहा धोए तब ले जाना, रुका है वो, कोई बहाना नहीं है, वो आ गया तो आ गया, बोले जल्दी चल, बोले हम नहीं जाएंगे बस तुम जाओ वापस, बोले हम आए और तू ऐसा कहे तेरी क्या हिम्मत है। कहते यमराज खुद मंदिर के अंदर घुस गए। महाभारत की कथा है, पुराण की कथा है, महाभारत की कथा है। अब यमराज ने अंकुश और पास दोनों निकाली और अंकुश से स्थूल शरीर के अंदर का अंगुष्ठ परिमाण का सूक्ष्म शरीर को और पास से निकालना शुरू किया, पास फेंक दिया निकालने के लिए। जैसे यमराज ने पास फेंकी, अंकुश का प्रहार किया, मार्कंडे ऋषि ने वो जो शिवलिंग था उसको पकड़ लिया, शिवा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् मृत्योर्मुक्षीय। इस यमराज से मेरे मुक्ति करो, ये जबरदस्ती कर रहा है, मैं जाना नहीं चाहता हूं, आपके आराधना में लगा हूं और ये जबरदस्ती मुझे ले जाना चाहता है, रक्षा करो रक्षा करो। तो उसी शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। अच्छा ये जबरदस्ती करता है, तू मेरे शरण में आया और ये जबरदस्ती करे। एक लात उसे यमराज के छाती में प्रहार किया, उसी पर शंकराचार्य जी ने संकेत कर दिया, मारा एक लात तो यमराज मर गया। बक्ष कपाट क्षति, देख लो कठोर यमराट बक्ष, यमराज का हृदय कोमल हो सकता है, है? हो सकता है यमराज का हृदय कोमल? 2013 में केदारनाथ में अतिवृष्टि के चलते खंड प्रलय हो गया, ये बूढ़े बूढ़े को भगा दूं बच्चों को छोड़ दूं ऐसा कहा यमराज ने, हैं? कहा। अभी अभी नेपाल में भूकंप चला, बड़ा भयंकर तबाह हो गए, बूढ़े बूढ़ों को तो खत्म कर दूं, छोटे बच्चों को छोड़ दूं, महिलाओं को छोड़ दूं, ऐसा कहा है क्या? उसके हृदय में दया तो है ही नहीं, दया हो सकती है यमराज के हृदय में? कठोरता, ये संभव? मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है, कहां आपका चरण नित्य योगी हृदय कमल में, हृदय रूपी कमल में संचरण करने वाला चरण, और कहां वो यमराज का कठोर हृदय में अपने एक प्रहार किया और एक ही प्रहार से यमराज मर गया, ये कैसे संभव हुआ? महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कितना पीड़ा होगी, आपके चरण में कितनी पीड़ा हुई होगी महाराज। अत्यंतम मृदुलम तवांग्री युगलम, हाय हाय हाय, खेद दुख की बात है। अत्यंतम मृदुलम तवांग्री चरणम, तुम्हारे चरण कमल इतने कोमल है, अत्यंत मृदुलम, मे मनश्चिन्तयति। मुझे तो उस दिन से आज तक, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मुझे तो उस दिन से आज तक, किस दिन से हैं? यमराज के हृदय में जब आपने लात प्रहार की, उस दिन से आज तक मनश्चिंता, यही मुझे तो यही चिंता सता रही है, आपके चरण में कितना कष्ट हुआ होगा। हैं? हाँ, मैं मनश्चिंतयति, मुझे तो रात दिन वही चिंता लगती है कि शिव के चरण में कितना दुख होगा। भावना बड़ा विचित्र होता है भाई। अभी एक डेढ़ महीना से ये क्या बोलते हैं इसको, हैं? फ्रोजन शोल्डर, इस शोल्डर को फ्रोजन हो गया है ना, जाम हो गए नस मसल्स, कहीं जाम हो गए होंगे है ना। अब उसके चलते हाथ मूव करने में, चलाने में कहीं ना कहीं तो खिंचाव आता है। तो हमने यहां आने के बाद मुख से ये शब्द निकल क्या गया, जो आता है इसके इलाज की ही चिंता करता है। कोई बिजली का वाइब्रेटर लेके आ रहा है, कोई मैग्नेट का वो रोलर लेके आ रहा है, कोई गर्म पानी के थैली लेके आ रहा है, हैं? कोई तेल लेके आ रहा है, कोई ऑयल लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है। हे भगवान, जब से आया जिसको पता चला वो कुछ न कुछ उपचार के लिए प्रयत्न कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कराने के लिए आ रहा है, कोई कुछ कराने के लिए आता है। हे, एक चेला है, सुबह कथा करके कमरे में आया नहीं कि बुरी उठिए एक्सरसाइज करिए, दिन में चाय पिया नहीं कि एक्सरसाइज करिए। अब कमरे में पहुंचोगे तो वो फिर कहेगा स्वामी जी एक्सरसाइज करिए। कितनी चिंता है देखो भक्तों को, मुझे उतनी चिंता नहीं, इनको चिंता है, है कि नहीं बोलो, भावना ना है, भावना ना है। इस शोल्डर के फ्रोजन से मुझे इतनी चिंता नहीं है, और दूसरे लोग बहुत चिंतित हो गए, स्वामी जी को कितना कष्ट हुआ होगा, कैसे ठीक करें, तेल लगाकर ठीक करें कि एक्सरसाइज करके ठीक करें कि वाइब्रेटर करके ठीक करें कि, हैं? हे भगवान। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि महाराज ये भक्तों का तो यह हाल है, तो मेरा क्या हाल होगा, तो मैं क्यों नहीं चिंता करूं बोलो। उस दिन से मैं आज तक यही चिंता कर रहा हूं कि आपके चरण में कितनी पीड़ा हुई होगी। हाँ, अत्यंतम मृदुलम त्वदंग्री युगलम, तत् माने आपके चरण कमल अति कोमल हैं और यमराज का वक्षस्थल अति कठोर है। ऐसे कठोर हृदय में आपने इतनी कोमल चरण से प्रहार किया तो आपके चरण में कितनी पीड़ा हुई होगी महाराज। ये तत् लोचन गोचरम कुरु विभो, हे विभो, मुझे एक बार जिस चरण से यमराज का वक्षस्थल प्रताड़न करके फोड़ा था, नष्ट कर दिया था, मुझे एक बार दिखाइए तो सही, क्या कितना घाव हुआ है, स्वेलिंग हुआ है कि नहीं, सूजन आया है कि नहीं, लेकिन तब से फिर मैंने आज तक आपके वो चरण देख नहीं पा रहा हूं। एक बार दिखा दीजिए, मैं एक्यूप्रेशर जानता हूं। शंकराचार्य जी कह रहे हो मेरे पास उसके उपाय है, ट्रीटमेंट है, हैं? ए भी वो एक बार दिखाइए तो से। एतत लोचन गोचरम कुरु, मुझे एक बार दिखा दीजिए, मैं आपके चरण में यदि सूजन आया हो, फ्रैक्चर हुआ हो, क्रैक हुआ हो, कुछ घाव हो गया हो, कुछ छिलछाल गया हो, तो हस्तेन संभा है, हस्तेन संभा है, मैं अपने हाथ से आपके उस चरण की मालिश करना चाहता हूं। कौन कह रहा है ये बात? किसके चरण की? बोलो, क्या भाव है, क्या भाव है? है? और मैं मालिश करूंगा तो आपके जो चरण में यमराज के छाती में प्रहार करके जो आपको पीड़ा हुई है, बड़ा आनंद आएगा महाराज। मैं ज्यादा दबाऊंगा नहीं है? मैं कुछ दो चार पॉइंट जानता हूं, एकदम भी कर दूंगा। एक बार दिखाइए तो सही। हस्तेन संवाहये, और दूसरी बात है, मेरे हाथ छोटे हो सकते हैं, आपके चरण बड़े हो सकते हैं, कुछ नहीं तो शायद हाँ वो था ना बाणासुर, जिसके सिर्फ दो हाथ थे और शिवजी की तपस्या करके, शिवजी को प्रसन्न करके शिवजी से ये वरदान मांगा कि महाराज मुझे 1000 हाथ दे दो, ये दो हाथ आपकी सेवा में कम पड़ रहे हैं। मान लो शंकराचार्य जी ये कह रहे हो कि मेरे हाथ कम हो तो मेरा चेला बाणासुर है, उसको भी बुला लूंगा महाराज, एक बार चरण दिखाइए तो सही, और क्या है, दिखाइए तो सही। ये भक्ति का भाव है महाराज, है शिव जी के चरण को आप क्या दबाओगे? पाताल जिसके पांव है, ब्रह्मलोक जिसके सिर है, ऐसे विराट पुरुष का आपके क्षुद्र हाथ क्या सेवा करेंगे? फिर भी आपकी भावना तो है ना, फिर भी आपकी भावना है, आपका छोटा पोता नाती जिस समय आप कहो कि यह मेरा तो आज कमर में बहुत दर्द हो रहा है, और उस समय उसने देखा कि कभी कभी जब

क्या भावना है, इतना छोटा है लेकिन भावना कितनी विशाल है, मेरे कितनी हित की चिंतन करता है ये। आपकी प्रसन्नता का कारण बनेगा कि नहीं? और आप नहीं करोगे तो भी जबरदस्ती वो आके मालिश करेगा, तो शाम को जब पत्नी आएगी तुम्हारी, बेटा आएगा तुम्हारा, कहोगे आज इसने मेरी मालिश कर दी है, तब कमर में तेल लगा के, मूव लगा के उसकी प्रशंसा करोगे कि नहीं? ये तो भावना के साथ संबंध है, भक्ति भाव है महाराज। क्या सुंदर भाव है, नित्यम योगी मन सरोज दल सन चारक्षम त्वत्प्रम शंभो तेन कथम कठोर यमराट वक्ष कटाक्ष क्षति कवाट क्षति अत्यंतम मृदुलम त्वदंग्री युगलम हा मे मन चिंतयत ते तत् लोचन गोचरम कुरु विभो। एक बार दिखा तो दो, हस्तेन संबाहये मैं अपने ही हाथ से मालिश करूंगा आपके चरणों की, और शायद मेरे मालिश करने से आपके चरण की जो पीड़ा है, यमराज के छाती में प्रहार करते समय जो दर्द हुआ है, अवश्य जाएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। ये श्लोक भी लगभग उसी तरह का है, ये दूसरा श्लोक भी 80वां नंबर का। यस्य तेस जनिम मनुअस्य कठिनम तस्मिन् नटा नीतिमत् द्रक्ष्यायै गिरिसीम्नि कोमलपद न्यास पुराभ्यासितः। भगवान शिव कैलाश की चोटी में अपने पांव से चल के जाते हैं। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि वो क्यों आप जबरदस्ती पहाड़ की चढ़ाई करते हो महाराज, कोमल पद न्यास और इतनी कोमल आपके चरण हैं और पहाड़ की चोटी पर कठोर पत्थर हैं, वहां चट्टान के चट्टान है, न आपके चरण में जूते हैं न चप्पल है, और नंगे पांव क्योंकि दिगंबर हो, बोलो जो शरीर में लंगोटी भी नहीं लगाएगा तो पहाड़ की चढ़ाई करते समय जूता पहनेगा क्या? बोलो जो शरीर में लंगोटी भी नहीं लगा रहा दिगंबर है वो क्या पहाड़ की चोटी में चढ़ते समय जूता पहन के चढ़ेगा? नंगे दिगंबर है वो, कहां वो पहाड़ के चट्टाने, वो पत्थर कठोर, कहां आपके चरण बहुत कोमल, फिर भी आप उन्हीं पत्थरों में नित्य निरंतर विचरण करते हो। मुझे तो लगता है आपने ये सोच रखी है, मेरे जन्म से पहले आपने ये सोच रखी है कि ये संसार में जन्मेगा, पैदा होगा, जन्म लेगा, और इसका हृदय नरम तो होगा नहीं, कठोर होगा। जीवों का हृदय तो कठोर होता ही है ना, मेरे कहां कोमल चरण और कहां इसके कठोर हृदय, और कदाचित इसने मुझे बुला ली, पुकार लिया, ये कठोर हृदय वाला ने संसार में, मुझे तुरंत उसके हृदय में जाना पड़ेगा, और कहां मेरा चरण कोमल कहां उसका हृदय कठोर। जब बाद में उसके कठोर हृदय में मुझे चलना है तो क्यों ना अभी से रिहर्सल करूं,

0: ये सच बात कह रहा हूं मैं। भगवान ने ये सोचकर बाद में इसके कठोर हृदय में मुझे चलना है, अभी से कठोर पत्थर में चल के कठोर हृदय में चलने का अभ्यास करूं करके आपने वो अभ्यास किया है, समझे कि नहीं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं ना, जो निश्चय करते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना। मैं ही प्रेमपुरी आश्रम में ही कथा कर रहा था तो हमारे डॉक्टर अतुल भाई मजुमदार, उन्होंने निश्चय किया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा करनी है, तो फॉर्म भर लिया। बहुत पहले की बात है, फॉर्म भर लिए तो दिल्ली से स्वीकृत हो गए, सिलेक्ट हो गए, वो जाने के लिए चिट्ठी आ गई कि फलाने ग्रुप में, नंबर के ग्रुप में आपको जाना है, आप तैयार होइए। चिट्ठी प्राप्त होने के बाद से डॉक्टर मजुमदार जी सुबह घर से वो जो स्पोर्ट शूज पहनकर सुबह से घर से पैदल चल के श्री रोड से वहां हैंगिंग गार्डन घूम के फिर दौड़ के आते थे, फिर जाते थे, तो आके मुझे कहते थे, स्वामी जी अब कैलाश मानसरोवर जाना मेरा पक्का हो गया, मैं इस पहाड़ की चढ़ाई करने का अभ्यास कर रहा हूं। इसे अभ्यास कर रहे हैं, और ताकि पहले से अभ्यास करोगे तब ना वो कैलाश की जो परिक्रमा आसान से हो पाएगी। ये केवल मजुमदार की कथा नहीं है, हर कैलाश की यात्रा करने वाले इस प्रकार से पहले अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं। ये बात शंकराचार्य जी या शिव जी से कह रहे हैं, नहीं तो तुमको क्या पड़ी है कि वो कैलाश की चोटी के इतने कठोर चट्टानों में नंगे पांव घूमने का क्या जरूरत है? कहां आपके कोमल चरण, कहां इस पहाड़ों की कठोर चट्टाने, और वहां आप क्यों विचरण कर रहे हैं? मुझे तो लगता है मोहनीश पैदा होगा, उसका हृदय कठोर है, और जिस दिन वह बुलाएगा मुझे उसके हृदय में पहुंचना है। अब अभी से पहाड़ में चढ़कर कठोर में चलने का अभ्यास करूंगा तभी उसके हृदय में चल पाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं चल पाऊंगा। तो ये जरूर आपने अभ्यास ही किया है, अन्यथा तो पहाड़ के चोटियों में नंगे पांव कोमल हृदय वाला व्यक्ति चलने का कोई तुक नहीं है। श्लोक का वो भाव है, ऐसा यस्यति जनिम, ऐसा माने ये जीवात्मा, येति जनिम येति, पैदा होकर आएगा इस संसार में, और यहां आने के बाद इसका मन कैसा होगा? मनोस्य कठिनम, जरूर कठिन होगा इसका मन, कठोर होगा। और तस्मिन अटानीति, उसके मन में मुझे चलना पड़ेगा। मद्रक्षा ये, और मेरे हृदय में आए बिना आप मेरी रक्षा कर भी नहीं पाओगे। जब वो मृत्युंजय महादेव त्राहिमं शरणागतम कहेगा तो उसकी रक्षा के लिए मुझे उसके हृदय में पहुंचना पड़ेगा। मद रक्षा यही गिरिसीमनी, पहाड़ के चोटी, गिरि माने पहाड़, सीमनी माने चोटी, गिरिसीमनी कोमल पद न्यास पूरा अभ्यासिता, आपने पहले से ही उस चढ़ने का अभ्यास कर रखा है। नोचित, यदि यह प्रयोजन न होता, दिव्य गृहांतरेषु सुमनस्तल्पेषु वेद्यादिषु, अन्यथा आपके लिए क्या कमी थी? किसी बढ़िया घर बनाकर उस घर के अंदर बढ़िया एक तख्त लगाकर, मंच बनाकर, उन मंचों के ऊपर बढ़िया बढ़िया गुलाब के और कमल के फूल बिछाकर, उस फूल के ऊपर चढ़कर आप नृत्य करते तो हर्जा क्या था? क्या आपको संभव नहीं था वो करना? कमल के फूलों की कमी होती है शिव जी को? वो चाहते मेरा कोमल चरण है, तांडव नृत्य करना मुझे जरूरी है, ये कठोर पत्थर में मैं क्यों करूं? एक बढ़िया स्टेज बनाऊं, बढ़िया बढ़िया फूल लाकर उसमें बिछाऊं, पुष्पेशु तल्पेशु, फूलों के चादर बनाकर फूल बिछाऊं और फूल के ऊपर मैं नाचने करकर अभ्यास करूं, ये तो आप कर ही सकते थे। फिर वो पहाड़ों में क्यों चढ़ना पड़ा? वहां जाकर क्यों नाचना पड़ा? जरूर यही सोचकर कि ये पैदा होगा, इसके हृदय में फूल कहां मिलेंगे, और इसका हृदय कठोर है और उस हृदय में मुझे विचरण करना है। पहले से ही इसी कठोर पहाड़ में चढ़ के अपने पांव को उसी प्रकार का बनाओ ताकि उसके हृदय में विचरण करना कोई कष्ट न हो। नोचेत दिव्य गृहांतरेषु सुमनस्तल्पेषु विद्याधिषु प्राय सत्सु शिलातलेषु नटनम शंभो किमर्थम तव। अन्यथा ये शिलातलेषु नटनम किमर्थम, क्या प्रयोजन था? तांडव नृत्य करना था तो घर में ही बढ़िया स्टेज बनाकर बढ़िया डल्लभ का गद्दा लगा के वही अभ्यास करते, नंगे पांव से पहाड़ों में नाचने की क्या जरूरत थी? बड़ा सुंदर भाव है, और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे भाई। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.

गोविंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्लोक नंबर 8, कल हम विचार कर रहे थे उसी संदर्भ में। अब श्री पुष्पदंत जी, परमात्मा के जो वैभव है सगुण साकार का वर्णन हुआ, तो वर्णन में उनके जो वैभव है उसका वर्णन उसके साथ ही आ जाता है। अमुक अमुक व्यक्ति है तो वो कुछ विशिष्ट सा से जानी जाती है। पहले के जमाने में हम बोलते थे कि कोई बड़ा कोट पहनते थे, यहां तक का हमारे दादाजी तो ऐसी चप्पल ऐसी मोजड़ी पहनते थे, ऐसा हार रखते थे गले में, ऐसी इस प्रकार की टोपी रखते थे, पगड़ी पहनते थे, हाँ तो ऐसे जाने जाते थे श्रेष्ठी। ये तो श्रेष्ठियों की भी श्रेष्ठी है, तो ये परमात्मा को पहचानेंगे कैसे, ये रखते क्या है, उनका वैभव क्या है। तो कहते हैं मोहक्ष खटवांगम, नंदी कहते हैं, नंदी जी खटवांग परशु यानी फरसी कहते हैं जिसे, अजिनम मृग चर्म भस्म रखते हैं, और फणिनह सर्प, इतने उनके आभूषण है, उनका ये वैभव है। तो ये जो बातें हैं वो हमें दो तीन बातें सिखा के जाती है। देखिए जब अतद व्यावृत्ति यानी अंतिम पढ़ाया जाता है, और अतद व्यावृत्ति का ज्ञान गुरु भी 5, 6, 10 साल तक शिष्य रहे और लगा कि अधिकार है, साधन बराबर बनाए रखा है, तो कभी समझाते हैं, हमारे कान में वो शब्द पड़ते हैं, बहुत विरल और दुर्लभ है। और ये विरल और दुर्लभ बातें करने के बाद ये बातें की जाती है, यानी उसका सिर्फ इसका ट्रांसलेशन ही कर दिया, उतना महात्म्य नहीं हो सकता है। स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी और कई जो भी गुरुजन हैं, संत हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो भी व्याख्याएं दी है उनमें कई अर्थ भी निकाले गए हैं। देखिए कहा जाता है कि 7 जो प्रकृतियां हैं, 7 जो तत्व है, उससे ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, परमात्मा के उपादान कारण। देखिए ये उत्पत्ति है विशिष्ट है, तो उपादान कारण भी विशिष्ट होंगे। आपको सब रोटी बनानी है, पूरी बनानी है, उपादान कारण क्या है, तो बोले गेहूं लेके आए, हाँ लोट बना दिया और बना दिया, वो क्या है स्थूल उपादान। रोटी भी दिखती है और ये उपादान कारण भी दिख रहा है। यहां हम जब कहते हैं कि उत्पत्ति रज्जु सर्पवत है, उत्पत्ति बीज अंकुरवत है, सब परमात्मा का ही झृंबण है, तो उसका जो उपादान कारण है उसमें ऐसे ही गुण होने चाहिए जिससे परमात्मा का जो वैभव है अकर्ता वैभव वो बना रहे, परमात्मा का जो अनाम अरूप जो वैभव है वो भी बना रहे और उत्पत्ति भी हो। और इसे हमारे शास्त्र में विवर्त उत्पत्ति कहते हैं। विवर्त यानी दिख तो रही है उत्पत्ति, जन्म दिख रहा है, पर वो क्या है, वो हकीकत में नहीं है, अमुक देश अमुक काल से सीमित ही वो वस्तु दिख रही है। और विवर्त जो कारण है उसकी और एक विशिष्टता क्या है कि भाई वो जो अपना कारण जो है वो उत्पत्ति तो करता है पर अपने में कोई भी परिवर्तन किए बिना उत्पत्ति होती है, ये विवर्त उत्पत्ति है। तो दूसरी क्या है, दूसरी परिणामी कारण है, परिणामी उत्पत्ति है। परिणामी यानी क्या, तो बोले कि रात को दूध है, दूध में थोड़ा अपने जमाने के लिए दही डाल दिया तो क्या हुआ, उसका परिणाम आ गया, उसमें दूध जो है वो अपनी कंसिस्टेंसी जो तरलता है वो खो देगा और थोड़ी स्थूलता आ जाएगी। तो ये विवर्त और परिणामी। कहने का तात्पर्य के अगर परमात्मा में से ही उत्पत्ति मानने के लिए हम तैयार हो गए हैं तो उनकी उपादान कारण की विशेषता होनी चाहिए। और ये 7 जो चीजें कही गई है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, किसे दिखा रही है, तो बोले कि मानो ये 7 प्रकार की
जो प्रकृति जो है परमात्मा की, जिससे ये उत्पन्न हुआ है, तो किससे उत्पन्न हुआ है? तो बोले पहले तो प्रथम पुरुष ये परमात्मा, फिर पुरुष के साथ उनकी प्रकृति आती है, फिर सूक्ष्म तन्मात्राएं आती है, फिर पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच प्राण और महत्तत्व। ये सब शब्द जो है, और इसीलिए प्रकरण ग्रंथ में ये सब पढ़ाया जाता है। तो ये पुरुष, प्रकृति, पंच प्राण, पंच इंद्रिया, महत्तत्व और पंचभूत, ये सब मिल के क्या होता है, ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अब पुरुष जो है वो आंख से दिख रहा है, क्या है, सूक्ष्म है। तो ये सब प्रकृति में जो सूक्ष्मतया अनुस्यूत है, वो पुरुष ने किया वो काम अनुस्यूत होने का। भाई सूक्ष्म भाग जो है, नहीं दिखने वाला भाग जो है, नहीं समझने वाला भाग जो है, उसे मैं संभाल लेता हूं, क्योंकि वो कोई भी स्थूल जो है वो ये संभाल नहीं सकता। प्रकृति ने क्या किया, प्रकृति यानी माया, त्रिगुणित्म का माया, माया ने क्या किया, माया ने कहा कि मैं अपना पार्ट, में अपना रोल। कभी भी देखिए हमारे यहाँ भी ज्ञान यज्ञ या शिविर होती है तो कमिटी होती है, तो कोई किचन को देखता है, कोई स्टेज की व्यवस्था देखेगा, कोई ये देखेगा। तो इस प्रकार सब ने अपना अपना किया। तो ये पुरुष जो है अस्थि भांति प्रिय रूप सब में अनुस्यूत होने के लिए तैयार हो गए। प्रकृति माया ने क्या कहा कि भाई मेरे पास तीन चीज है, सत्व, रजस और तमस। तो सत्व, रजस और तमस रूप में मैं सब में अनुस्यूत हो जाऊंगी। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे ही आप नहीं अनुस्यूत हो सकते, सबके कर्म के फल के अनुसार उतनी ही मात्रा में आप प्रवेश कीजिए। इसीलिए हमें मिलता है कि कोई एकदम तामसिक है, हाँ, कोई एकदम राजसिक है, दो मिनट भी बैठ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और कोई एकदम परम सात्विक है, तो कोई कभी थोड़ा तामसिक। देखिए सत्व, रजस और तमस का मीटर पहले से ही फिक्स करके भेज दिया है, और इसी से हमें पता लगेगा कि माया परमात्मा के अधीन है। मैया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मायाम तु प्रकृतिम विद्धि माइनम तु महेश्वरम। ये माया से पार उठना है तो जो महेश्वर है, जो आत्मा है, ब्रह्म है, परमात्मा है, उसे आपको जानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका प्रारब्ध रूपी मीटर लेके आए हैं ना, इतना सत्व, इतना रजस, इतना तमस, इतना ही काफी नहीं है। कब, कौन सी क्षण में, कौन से देश में, कौन से काल में कितना सत्व, रजस और तमस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, घटता है, वो पहले से ही फिक्स करके परमात्मा ने रख दिया है। जितना हम जिएंगे उतने तरक, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल। अब ये तो फिक्स करके ही आए हैं, कर्मफल भुगतना ही पड़ेगा। तो इज देर एनी वे आउट? तो बोले हाँ, किसे मिलना पड़ेगा हमें, माया के बाद वाली जो भी चीज हम कह गए, जो महत्तत्व है, जो पंच महाभूत है, दूसरी जो इंद्रिया है, प्राण है, वो तो बाद में आ गए। तो माया के बाद वाले को आप मिलेंगे या माया के पहले वाले को, माया के कारण को मिलेंगे? किसके किसको मिलने से काम बनेगा अपना? हमें क्या करना है, प्रारब्धवशात सुख दुख आते रहते हैं, सत्व रजस तमस में हम घुमड़ते रहते हैं। कैसे? ब्राह्मयन सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया, ऐसे घूमना फिरना बंद करना है तो मिलना है किसे? पहले पुरुष है, फिर माया है, और फिर मैंने जो बता दिया वो है। अब किससे मिलने से काम हो जाएगा वो बता दीजिए। हाँ, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ज्ञात्वा तम मृत्यु मत्येति। ये मृत्यु यानी ये माया, हर क्षण हम मरते हैं, वो मृत्यु तो अच्छा होगा यहाँ तो हर क्षण मरना है। हाँ, तो ज्ञात्वा तम, वो ज्ञान प्राप्त करने से। और इसीलिए कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन जी को संकेत दे दिया कि मैं ब्राह्मयन करने वाला कौन है। पहला वाक्य सुन लीजिए, ईश्वर सर्वभूतानाम, ये इनडायरेक्टली बता दिया। देखिए परमात्मा डायरेक्टली नहीं बता दे सकते कि मुझे मिल लो तो इस भ्रम, आपका भ्रमण बंद हो जाएगा, ऐसा श्लोक में क्यों नहीं कहा कि ईश्वर को जानने से माया का भ्रमण बंद होगा, ऐसा श्लोक नहीं है। मैं सब में बैठा हूं और घुमा भी रहा हूं, तो ये सूक्ष्म बुद्धि लगानी है यहाँ कि भाई ये घुमाना बंद कौन कर सकता है जो घुमा रहा है यही बंद कर सकता है, तो उसे पकड़ लीजिए, उसे जान लीजिए। नहीं तो परमात्मा ने नहीं कहा होगा कि अपि चेदसि पापेभ्यः, ऐसा नहीं कहा होगा, सर्व ज्ञान प्लवे नैव। और वो जो कर्म जो है, यथे धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, ये हमें इंडिकेशन मिल गए हैं।
तो ऐसे जो आप पुरुष है वो पुरुष आप ही जगत की यहाँ प्रस्थापित आप क्या करना चाहते हैं भाई, उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण एकमात्र ये महेश्वर, एकमात्र ये परमात्मा है, उपादान भी उन्हीं में से आया है, यही बताना चाहते हैं। क्योंकि परमात्मा के पास उनका जो पौरुषत्व जो है, पौरुषत्व यानी उनका जो अस्थि जो है, सत्य चित और अनंतता है, जो वो अनंतता का प्रभाव ये है। देखिए एक पुष्प भी है ना, यहाँ एक पुष्प ये आपको दिख रहा है ना, उसका प्रभाव नहीं है क्या? हाँ, उसका क्या प्रभाव है? पुष्प अपने साथ क्या लेके आया, उसका प्रभाव क्या है? सुगंध आप तक नहीं पहुंच सकती, रूप तो पहुंच सकता है ना, उसका प्रभाव है ये। उसका प्रभाव क्या है? ये चीज आपका ध्यान खींच रही है, वो उसका प्रभाव है। हर चीज अपनी प्रभाव को लेके आता है। तो परमात्मा का प्रभाव क्या है? सत चित और आनंद जो स्वभाव है उनका प्रभाव है। सत्व रजस और तमस रूपी जो माया जो शक्ति जो है वो उनका प्रभाव है और वो उनके साथ चला आता। हम क्या समझते हैं कि यहाँ एक ब्रह्म है, कुछ निकला माया जैसा और सृष्टि हो गई, ऐसा नहीं है। ये प्रभाव का कारण है। हा? कर्म जो होते हैं प्रभाव से होते हैं। आप किससे प्रभावित होके उनसे खींचे चले जाते हैं और अप्रभावित होके वापस आते हैं, प्रभाव तो दोनों में है। वहाँ जो है वो रिजेक्शन का प्रभाव है, वहाँ जो है अट्रैक्शन का प्रभाव है। प्रभाव तो हम में भी है, जड़ वस्तुएं अभी हमें अट्रैक्ट करती है। शोकेश में देखते हैं तो चीज अट्रैक्ट नहीं करती है क्या? हाँ, जाटते हैं, अच्छा लगता है, खरीदते हैं, तो वो जड़ चीज, शोकेश में पड़ी हुई जड़ चीज भी हमारे पूरे संगात को खींच सकती है। जो हम किसी का नहीं सुनने वाले वो चीज हमको सुना देती, वो हमको घर में से निकालती है बाहर, चलो आओ मेरे पास और मुझे ले लो। ये चीज का, ये जड़ चीज का प्रभाव है। सुनिए, ये जड़ चीज इतना प्रभावित करके आपको घर में से खींच लेके वहां ले जाती है। हाँ, सात्विक बुद्धि है तो आपको क्या खींचेगी भाई? ऐसे प्रवचन है, सत्संग है, भजन है, दर्शन है, खींच के चली लाती है। तो ये सब जड़ चीजें भी आपको खींच सकती है, तो वो परम पुरुष परमात्मा का जो प्रभाव है क्या हमें नहीं खींचेगा? और उसी की शक्ति यहाँ हो रही है। तो ये समझ लीजिए कि ये पुरुष के बाद का जो है वो परमात्मा का प्रभाव है, उसकी आभा है। एक गुलाब का फूल ले लिया तो सौंदर्य उसका प्रभाव है, ऐसे ये परमात्मा का एक किरण निकला, ये प्रकृति है, एक वहां से इंद्रिया बन गई, यहां से पंच महाभूत, यहां से तन मात्रा, यहां से महत्तत्व और कुछ ऐसा लगा। प्रभाव का जो फीलिंग जो है, गुलाब के फूल को देखा, उसका जो प्रभाव है, उसका जो महिमा है वो सौंदर्य। तो सौंदर्य देखने के बाद आपके भीतर जो हुआ वो गुलाब का अनुभव है। सौंदर्य होने के बाद क्या अनुभव हुआ कि भाई सुंदर है? अभी वो सुंदरता वो गुलाब है नहीं, आप उसे बोल सकते हैं नहीं। ऐसे परमात्मा प्लस ये जगत रूपी प्रभाव, वो हमें जो भी कुछ फीलिंग हो रहे हैं वो है। हम कहते हैं मैं देख रहा हूं, तो देखना उसका प्रभाव है, अब उसको पकड़िए। सुनना श्रवण शक्ति वो प्रभाव है, बोलना प्रभाव है, खाना प्रभाव है, जाना उसका महिमा है। तो ऐसे आप धीरे धीरे करके परमात्मा मई धीरे धीरे होने लगेंगे। कैसे होने लगेंगे? जान लिया कि ये सब जो है वो वही पर, मेरा स्रोत जो है वो यही परमात्मा है, ऐसा जानना जरूरी है। और इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, मिले हुए हैं कि भाई ये जाने, ये प्रक्रिया में हम प्रवेश करें। ये प्रक्रिया है, ये साधन है, ये विधि है। दूसरी कौन सी बात श्री पुष्पदंत जी हमें बताना चाहते हैं कि श्री शिवजी जो है वो कहते हैं कि देखिए, जगत की कोई भी ऐसी चीज नहीं है, नाम रूपात्मक कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका प्रभाव मुझ पे है। ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हमारे इर्द गिर्द आ गए कि ये सब चीज कोई हमें भी देगा, कोई नंदी जी आके हमें भेंट कर देंगे, कोई सर्प भेंट कर देगा, हाँ कोई भस्म देंगे, तो ये क्या, ये सात में से एक चीज भी ऐसी है जिसकी आपको वासना या कामना या आसक्ति हो? नहीं, डर लगता है। वासना कामना आसक्ति तो बात जाने दीजिए, कोई फर्शी आके दे दे तो, खटवंग आके दे दे तो, ये चीजें ऐसी नहीं है कि जिसे आपका मन वहां लग जाए और इच्छा हो। यहाँ ईश्वर परमात्मा इतना ही बता रहे हैं कि भाई कोई भी चीज की इच्छा वासना, एक कण की भी, मिट्टी की भी वासना इच्छा मत रखिए।
एक चीज, एक विषय भी ऐसा, एक विषय ऐसा सेवन नहीं कीजिए जो वासना से आप वहां जाके आपका मन वहां लग के आपको लाना पड़े। मैं ऐसे विषयों के मेरे साथ रखता हूं जो उनसे मैं वासना से प्रेरित नहीं हुआ हूं, ये मेरी प्रकृति में से ही उत्पन्न हुए हैं, मैं उनसे अलिप्त हूं। और क्या कहना चाहते हैं कि मेरा वैभव भले ऐसा हो जिसकी कोई इच्छा भी न करे। नंदी तो अभी भी बराबर है, उसके बाद वाली जो बात है वो फणी न कोई सर पाके दे दे तो बोले कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे मैं आसक्त हूं। और सुन लीजिए कि मेरे पास मेरा जो कुछ भी वैभव है वो ऐसा वैभव है जिससे होने या न होने से आपकी जो, आपका जो महिमा जो है, आपका जो रहना है, आपका जो अस्तित्व है, उसमें कोई भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ सकता। और एक बात है कि मेरे वैभव को देख के मेरे बारे में कुछ भी सोचना नहीं, मैं पहले से ही कैसा हूं, मैं पहले से ही अवांग अमनस अगोचरम हूं। हाँ, मेरा वर्णन नहीं किया जाता, यानी परमात्मा इनडायरेक्टली बता देते हैं कि मेरे नंदी जी को, मेरी फर्श को, मेरी भस्म को देख के मेरे बारे में कुछ भी अनुमान नहीं लगाना, ऐसा परमात्मा कहते हैं। कोई सृष्टि आ गए, उनके जो बाहर के रूप है वो बग्गी में से उतरे, आज के जमाने में वो कार में से उतरेंगे, तो उनके जो हलन चलन है उससे हम जो व्यवहार में क्यास लगाते हैं कि ये ऐसे ऐसे होंगे। ऐसे शिव जी कहते हैं कि मेरे बारे में अगर, मेरे रूप को, विशेषणों को देख के मेरे बारे में आपने कुछ भी सोचा तो आप गलत ही ठहरेंगे, गलत ही पड़ेंगे। और दूसरी बात है कि मैं अवांग अमनस अगोचरम हूं, इतना बताने के लिए। और दूसरी बात है कि मेरा जो वैभव जो है उसके बारे में भी कुछ बोला नहीं जा सकता। आप नंदी जी के बारे में क्या बोलेंगे, आप भस्म के बारे में क्या बोलेंगे, आप सर के बारे में क्या बोलेंगे, बोलना नहीं आता। क्या है, वाणी रुक जाती है और मन विचार में चढ़ जाता है कि ऐसा, तो बोले कि मेरा जो बाहर का भी स्वरूप है वो इतना आश्चर्यमयी है, ये दिखाने के लिए कि मैं आश्चर्यों का आश्चर्य हूं, इसलिए मैंने मेरा बाहर का वैभव भी ऐसा ही कुछ विशिष्ट रखा है कि आश्चर्य होना शुरू हो जाए, आश्चर्य होने की प्रैक्टिस आपको मेरे रूप से ही हो जाए। तो मैं जो आश्चर्य को लेके बैठा हूं, परम आश्चर्य है जिसका अनुभव आपको करना है, वो जब आपके पास आने लगे, वो अनुभूति आप करने लगे, तब आपको वो अनुभूति में थोड़ी सरलता आ जाए। मैं मेरे रूप से ही प्रैक्टिस दे रहा हूं। इतनी बहुत सुंदर बातें। और ये देखो, ये जब परमार्थ चलता है ना, तो परमात्मा को जो इच्छा होती है अपने आप से वो अपने अर्थ निकाल लेते हैं। तो कई कई संतों, बड़ी विभूतियां, उन्हें ये सब अर्थ निकाले हैं, ये अर्थ से हमें इतना ही समझना है कि बाह्य वैभव हमारे काम का नहीं है, उससे परमात्मा का मिलना या नहीं मिलना अपेक्षित नहीं है। दूसरा, ये वैभव है जो आप मन वाणी वहां तक नहीं जा सकती, और मन और वाणी, दूसरा ऐसा है कि मन और वाणी प्रवृत्त होने की कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं। कोई एकदम, मैं अगर एकदम सुंदर वस्त्र पहनूं या ऐसा कुछ विशिष्ट मेकअप कर लूं तो आपको जानने की उत्सुकता होगी कि ये क्या करके आए हैं आज। मेरे आधा प्रवचन तो आपके विचार में ही चला जाएगा, हाँ, आप सोचते रहेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं मेरा वैभव ही ऐसा रखता हूं कि एक क्षण के लिए भी नाम रूपात्मक वृत्ति जो है वो आपकी न बने। जीवन ऐसा जीना कि हमारी वृत्ति भी नाम रूपात्मक न बने, ऐसे उसका कारण नहीं है कि फटे हुए कपड़े पहनो के ऐसे ऐसे घूमो, ऐसा नहीं कहा है शास्त्र ने, पर जरूर है उतना बनो सजो, जरूर है। वृत्ति बदलनी चाहिए, मेरे तैयार होने में मेरी भगवद आकार वृत्ति जरा भी यहां से यहां हिलनी नहीं चाहिए। और तैयार हमें ऐसे होना है, बाह्य हमारा वेश ऐसा रखना है कि सामने वाला जब मुझे मिले तब उसकी भी जो वृत्ति जो है वो भगवद आकार टूटे नहीं, उसकी भी वृत्ति नाम रूपात्मक न हो। आप कुछ ज्यादा ही करके आएंगे और सामने वाली व्यक्ति में उसका अभाव होगा, उसके पास वो कम चीज होगी तो उसे मन हो जाएगा। आप ऐसा कुछ नहीं कीजिए जिससे सामने वाले का मन वो लेने में कह रहे भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये वैभव नहीं है। ऐसा सामने वाला का मन
थोड़ा भी विक्षिप्त हो जाए ऐसा आप कुछ भी नहीं कीजिए। ऐसी बहुत सारी सुंदरी तो चलती ही रहेगी, बहुत सारी सुंदर बातें यहाँ पुष्पदंत जी बता रहे हैं। हमें इतना ही समझना है कि ये न केना प्रकारेण परमात्मा की कोई भी विभूति है वो मेरे आनंद का कारण बननी चाहिए, इतना पर्याप्त है। श्लोक नंबर 9 एक साथ आप गान कीजिए। ध्रुवम कश्चित सर्वम सकल

0: तस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मित इव स्तुहि जिह्वेमि त्वाम् न खलु ननु दृष्टा मुखरता।
1: बहुत सुंदर कहते हैं, यहाँ कहते हैं ध्रुवम कश्चित सर्वम, कोई कोई सांख्य या योग दर्शनकार है, फिर से मतवादियों की बात कर दी, संप्रदाय की बात कर दी कि कोई और संप्रदाय और वादियों से हमें क्या समझना है कि अष्टमूर्ति वृद्ध पृथ्वी से लेके पुरुष तक जो जहां रुक गया वहां थोड़े और रुक गए और कुछ बन गई बात, कुछ वाद बन गए, कुछ संप्रदाय बन गए। कोई सच्चे झूठे के उसमें नहीं करना, हमारा कर्तव्य क्या है कि अगर हम रुक गए हैं तो आगे चलना है, बस पुरुष तक, अहम ब्रह्मास्मि तक चलना है, गंतव्य स्थान जान लीजिए। तो बोले कोई सांख्य कोई योग दर्शनकार जगत नित्य है ऐसा मान रहे हैं, यानी जगत की उत्पत्ति सत्य है, हकीकत में नहीं है, नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न हुआ है ऐसा मानते हैं। दूसरे जो बौद्ध है वो ये जगत अनित्य है, उनका क्या है, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, और शून्य शून्य बौद्धवादी जो है वो क्या मानते हैं कि सर्व शून्य शून्यम शून्यम, ऐसा मानते हैं कि ये जगत शून्य है क्षणिक है। ये जो है जो जगत में जगत की नित्यता या अनित्यता को प्रस्थापित करने में अपने जीवन का समय और शक्ति बर्बाद करते हैं ये भिन्न भिन्न विषय में, तो हे पुरमचन हे परमात्मा, वो सब स्तुति के प्रकार से मैं मानता हूं कि पृथ्वी से लेकर पुरुष तक सब में आप ही है, तो कोई कहेगा कि जगत नित्य है तो वो आपकी स्तुति ही है, क्योंकि नित्य तो नित्य, जगत तो आपने वैसे ही आया है। उन्होंने उसको विवर्त तरीके से नहीं समझा तो उनमें उनकी गलती नहीं है, जगत का नाम तो लिए क्या है, अनजाने में भी परमात्मा का नाम तो लिया ना, उसका प्रभाव तो होगा ही। जैसे ये एंटी स्नेक वेनम आपको पता है ना, वैक्सीन जो आते हैं सर्प की, सर्प जब काटता है तब उसका जहर उतारने के लिए, पर ये तो अभी अभी बने हैं, पहले के जमाने में क्या था तो बोले मंत्र आते थे, सर्प डंस हो जाता था तो मंत्र आते थे, वो सर्प वो जो मंत्र जो जानने वाले होते थे वो विशिष्ट प्रकार के लोग होते हैं, उन्होंने उसकी आराधना की हुई होती है, और जब सर्प दंश होता है तो उन्हें बुलाया जाता है, वो मंत्र उच्चारण करते हैं और सर्प का जहर जो है वो आदमी में से चला जाता है। तो भाई जिसे सर्प काटा है वो तो बेहोश पड़ा है, और अगर होश में भी है तो वो मंत्र का अर्थ करने में क्या सक्षम होंगे, मंत्र का अर्थ जिसे सर्प काटा है उसे जानना जरूरी है सर्प का जहर निकालने के लिए, नहीं जरूरी है, मंत्र की असर तो होती ही है, आप अर्थ जानो या नहीं जानो। यानी हे परमात्मा, आपके जगत को नित्य मानने वाले हैं या अनित्य मानने वाले हैं, या आपको नहीं मानने वाले भी ऐसा कहते हैं कि मैं परमात्मा को नहीं मानता हूं, वो भी आपका नाम तो लेते हैं ना, तो मुझे उसका भी हर्ज नहीं है, मैं उनको भी मानता हूं। देखिए ये सीखना है, और वेदांत के हम सब साधक हैं, और हमारा मुख्य जो वाक्य जो है, मुख्य जो शब्द जो है, हम वेदांत साधक अपने को जब कहते हैं तब ये दो शब्द याद रखना, अविरोध अविवादश्च, ये आपके साधन की साधना की नींव बननी चाहिए। अविरोध, किसी के साथ भी आप विरोध नहीं करना और किसी के साथ भी आप विवाद नहीं करना, भाई मेरे परमात्मा हमारे परमात्मा ने तो ऐसा ऐसा लिखा है, उत्पत्ति यहीं से हुई है, परमात्मा ऐसे है, सगुण ही है निर्गुण ही है, आप ये गलत बता रहे हैं, नहीं, विरोध किसी से नहीं करना, और अगर विरोध प्रदर्शित कोई करे तो उसके साथ विवाद भी नहीं करना। दुस्तर्का सुविरम्यताम श्रुतिमतः तर्को अनुसंधीयताम, दुस्तर्क कभी भी नहीं करना, विवाद नहीं करना, हमारी जो शक्ति जो है उसका ह्रास हो जाता है, और वो व्यक्ति को तो मजा आता है, हमें इरिटेट ही करना होता है, उन्हें कुछ सुलगाना ही होता है और वो पास हो जाता है, वी आर हेल्पिंग देम। तो अविरोध और अविवाद एकदम याद रखना, वेदांत के साधक को तो खास याद रखना है, कभी भी विरोध विवाद नहीं करना, अंतर से समझ जाना, पुष्पदंत जी जैसी वृत्ति रखना। ये श्लोक यही समझाने के लिए है कि अगर वो इतने ज्ञानी होके भी सांख्य को, जैन है बौद्ध है मीमांसक है कपिल मुनि के जो है सबको, सब धर्म को, सब संप्रदाय को वो मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हे परमात्मा आपका ही नाम वो ले रहे हैं। तो हे परमात्मा मैं उन्हें आपकी स्तुति ही समझ रहा हूं, और हकीकत में ये बात है। ओहो हे परमात्मा, इसीलिए मैं भी विस्मित होकर आपकी स्तुति करूं तो गलत नहीं है। पुष्पद अंत्यक्रिय का यही मेन पॉइंट है कि मैं गलत नहीं हूं आपकी स्तुति करने के लिए। मैंने जो आपकी स्तुति की है वो गलती नहीं है, क्योंकि आपको नित्य अनित्य मानने वाले भी इनडायरेक्टली आपकी स्तुति ही करते हैं। तो मैं स्तुति करूं, मैं गलत नहीं हूं। और ओहो हकीकत में ये वाणी जो है यहां कहा है स्तुवन झिर्रे मित्वम न खलु ननु दृष्टा मुखरता। ये जो वाणी जो है वो कैसी है? वो दुष्ट है, निर्लज्ज। दुष्ट नहीं कहते हैं, कहते हैं कि ये वाणी तो हे परमात्मा निर्लज्ज है। क्यों ये वाणी निर्लज्ज है? जानती है कि आपका जो प्रभाव है, आपका जो महिमा है, वहां तक नहीं जा सकती, तो भी आपके प्रभाव का वर्णन करने में उत्सुक है। इसलिए ये वाणी भले ही निर्लज्ज हो, फिर भी स्तुति तो आपकी ही कर रही है। कहीं ना कहीं तो मेरा इससे चित्त शुद्ध हो रहा है, मेरी भगवद आकार वृत्ति बनी रहती है, इसलिए ये मेरा प्रयत्न व्यर्थ नहीं है। इतना ही परमात्मा को बार बार श्री पुष्पदंत जी कहते हैं। देखिए कुछ भी हमारे भी शरीर मन बुद्धि से, ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय पांच प्राण से कोई भी प्रकार से के कर्म हो, तो कैसे भी इसके बारे में परमात्मा को मना लीजिए कि हे परमात्मा कुछ भी प्रकार के मेरे कर्म अभी हो गए हैं तो आप उसका स्वीकार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये कर्म करते हुए मैं आपको याद तो कर रहा हूं, आपको याद कर लिया, अब कर्म की उल्टी सुलटी करनी, कर्म को शुद्ध करना, मेरे पुण्य को, मेरे पाप को पुण्य में बदल देना, वो आपके हित में है। ऐसा क्यों परमात्मा से प्रेम से बातें करनी है? ये वृत्ति बनाए रखने के लिए। और हकीकत में उनके प्रभाव में अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पुण्य पाप जो है वो भी विसर्जित हो जाते हैं। ऐसी श्रद्धा अगर हम खुद को वेदांत के साधक समझते हैं तो इतनी श्रद्धा आपके पास से अपेक्षित है। पर ये कब होगा? जब अविरोध और अविवाद करेंगे। और एक चीज और ध्यान में रखना, अविरोध अविवाद तो करें आप, खास करके कोई भी संत, कोई भी शिक्षक वेदांत के, कोई भी आचार्य, कोई भी गुरु, उनके साथ कभी भी वाद भी नहीं करना। वाद तो अच्छा है, वाद यानी बातें, फिर विवाद होता है, तर्क के बाद दुष्तर्क होता है और सुतर्क होता है, अच्छा तर्क होता है। कोई भी प्रकार का तर्क या वाद या सलाह सूचन ये गुरुजनों के साथ भूल से भी करना नहीं। ये अविरोध और अविवाद गुरु से ही शुरू होता है। कभी भी कोई भी प्रकार की सूचन हमें देने की जरूरत नहीं है, ये खूब ध्यान में रखना। क्योंकि हम जानते हैं किसके पास ये बुद्धि विवेक कहां से लाते हैं, उन्हीं लोग के, उन्हीं से पास लाते हैं।
2: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
3: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta 9. Thank you.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Nandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Chiptah Sansar Vatena Cheshtate Susk Parvat. Pretty sundar charcha ki. Unhone kaha, निर्वासनों जिसके अंतर्गत से कामना निकल गई, वासना निकल गई, निर्वासित हो गया, वासना से रहित हो गया, और वासना से रहित हो गया तो कहने लगे निरालंब। तो उसने सारे सहारे छोड़ दिए, आलंबन छोड़ दिए, अब किसी का सहारा ग्रहण नहीं किया। और जब तक वासना कामना रहती तब तक सहारों की आवश्यकता पड़ती। अब निर्वासनो निरालंब, आलंबन से रहित हो गया, और जो इतना काम कर लेता है, जो वासना से रहित हो गया, आलंबन का त्याग कर दिया, तो क्या होता? स्वच्छंद, वो स्वच्छंद हो जाता। आजकल तो स्वच्छंद शब्द का अर्थ है उच्छृंखलता, लेकिन ये नहीं। स्वच्छंद का अर्थ क्या है? स्व माने अपना, और छंद माने गीत। अब क्या हुआ? जो इस प्रकार से इहा से रहित, कामना से रहित हो गया, आलंबन का जिसने त्याग कर दिया, उसका फिर क्या है? अपना गीत। अब उसे पराधीन नहीं होना पड़ता। भई यदि किसी दूसरे से वह सुनना चाहेगा, आनंद लेना चाहेगा, तो वो संगीतज्ञ का मूड है या नहीं है, है ना, वो उपस्थित है अथवा नहीं है, ये सारी बातें आएंगी। लेकिन यदि अपना ही गीत है तो जब इच्छा हो तब उसका आनंद ले सकते। तो इसलिए कहा स्वच्छंद, वो स्वच्छंद हो जाता, अर्थात अपने में ही आनंदायित होने लगता, अपने भी ही मग्न हो जाता। और आगे संकेत किया मुक्त बंधन, सारे बंधनों से भी वह रहित हो जाता। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तब तक तो उदाहरण दिया चेष्टते शुष्क पर्वत, सूखे पत्ते का उदाहरण दे दिया। क्यों? जब तक पत्ता हरा है, उसके अंदर हरा तब तक है जब तक रस विद्यमान, और जब तक उस पत्ते में रस विद्यमान है, हरा है, तो रस को ही वहां आसक्ति कह दो, कामना कह दो, और वो जब तक वासना है तब तक पत्ता क्या किए? टहनी का आसारा ग्रहण किए, टहनी का आलंबन ग्रहण किए हुए, और टहनी का आलंबन ग्रहण किए हुए तो क्या होता? छिपता संसार बातें, वायु आती है और उस पत्ते में थपेड़ा लगाती है, पत्ता दौड़ करके आगे जाता है उसके धक्के से, लेकिन वह वासना सहारा पकड़े हुए होने के कारण पुनः वापस, और बार बार ये थपेड़े खाता रहता है, बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है। लेकिन यदि उसमें से रस चला गया, और रस चला गया, उसने टहनी का त्याग कर दिया, और जब टहनी का त्याग कर दिया तो पत्ता नीचे गिर गया। अब वो शुष्क पत्ता है, अब वही वायु आती जो पहले थपेड़ा लगाती थी तो पत्ता बेचैन होता था, अब वही वायु आ रही, और वही वायु आती है तो पत्ता क्या करता? वायु आती है, वायु उसे उड़ाना चाहती है, पत्ता की अपनी कोई कामना है ही नहीं, इसलिए वो वायु के साथ चल पड़ता, नृत्य करने लगता, और नाचता हुआ, अब उसका कोई आग्रह भी नहीं, ये भी छूट जाते। अब जो है वायु ले जाकर के उसे किसी कीचड़ में डाल दे तो वहां भी पड़ जाता, किसी देवालय में डाल दे तो वहां भी पड़ जाता, उसका कोई दुराग्रह। अब तो वो क्या है? तो यही है इसकी स्वच्छंदता, अपने में मग्न है, जैसी हालत है वैसे में वह प्रसन्न है। और क्यों? अब उसके लिए कोई बंधन नहीं है, सारे बंधनों से वो मुक्त हो जाता। इसी प्रकार से यहां चर्चा कर रहे हैं रसवर्जम, ये कब हुआ? जब रस चला जाता है, और रस कब जाता? जब परम को समझ लेता। तो ये कामना ही हमारे अंदर बंधन का हेतु है, और कामना है ही अज्ञान पूर्वक, अज्ञान को लेकर के ही अहम और मम को लेकर के कामना, ये सब होते हैं। तो अब जब इस प्रकार की जब कामना से वह रहित हो जाता, वही यहां संकेत कर रहे संत कुमार के अंतर्गत, जिन्होंने उस कामना को ही मार दिया है, जिनके अंदर कामना ही नहीं रहती, और वो जो है अपने बाल्य भाव में बैठे हुए, और जब बाल्य भाव में बैठे हुए तो ऊंट का शरीर भी उन्हें मिल गया, तो अब उनका दुराग्रह नहीं कि मनुष्य शरीर वो बेचैन हो, वो उसमें भी मस्त है और मस्त हैं। पार्वती शिव तो चले गए, कुछ वर्षों के बाद वापस आए, देखा भगवान शिव ने तो फिर भी कोई विचार नहीं किया, वो तो अपने स्वरूप में मस्त रहे। पार्वती ने देखा और देखा जैसे लोक में हमारा कोई प्रतिरोधी होता है और उसे कोई कष्ट आ जाता है तो हम लोग व्यंगात्मक ढंग से पूछते हैं, ठीक हो ना? पार्वती ने कहा ठीक हो ना? अब जब ऐसा संकेत किया तो ऊंट के शरीर से संत कुमार ने संकेत किया कि बड़ी कृपा है मां, बड़ा आनंद है। जब ऐसा कहा तो पार्वती को आश्चर्य हुआ, ये क्या कह रहा? तो कहा क्या मतलब? कहने लगे मतलब ये है, पहले बड़ी झंझट थी, मनुष्य शरीर होने के कारण सदा लगती थी तो भिक्षाटन करना पड़ता था और भिक्षाटन के नियमों का पालन करना पड़ता। अब तो बड़ा ही सुख है, सारे झंझट दूर हो गए, कोई भी अब उपद्रव नहीं, अब तो ऊपर मुख किया, कांटे ही क्यों न हो, और तृप्ति हो गई, सारा भिक्षाटन आपका झंझट खत्म। मनुष्य शरीर होने के कारण मनुष्योचित व्यवहार भी करना पड़ता, अब वो भी सारे झंझट दूर। विसर्जन आदि के बाद जो स्नान आदि की समस्या थी कहा वो भी नहीं रहेगी, अब तो बड़ा आनंद। ये जैसे ही कहा पार्वती को अब समझ में आ गया कि ये तो अपने बाल्य भाव में स्थित है, इसके अंदर कोई ईया है ही नहीं, ये तो प्रकृति से भी परे है। और जब ये भाव आया तो पार्वती ने क्या कहा? पार्वती ने कहा कि अच्छा अब तू मेरे से वरदान। सनत कुमार से जब कहा कि वरदान मांग लो तो सनत कुमार कहने लगे कि सारे झंझटों से निवृत्ति हो गई और अब हम क्या वरदान मांगे, अब हमें कोई इच्छा नहीं, इसमें बड़ा आनंद है, इसलिए हमारी तो कोई वरदान मांगने की इच्छा है ही नहीं, हम तो यही चाहते कि ये ऊंट का ही शरीर बना रहे। जब ऐसा कहा तो पार्वती ने कहा यदि तुझे वरदान नहीं चाहिए, अवसर देखा तो तू ऐसा कर मुझको ही दे दे। तो संत कुमार ने कहा मांग लो मां। पार्वती कहने लगी अच्छा अवसर, कहा यदि तू मेरे को मां कहता है तो मेरे यहां पुत्र के रूप में। और यही संत कुमार छांदोग्य श्रुति में आप सुनते हो, तन स्कंद मित्य आचक्षते, स्कंद के रूप में, कार्तिकेय के रूप में, है ना, षड्मुखादि जिनको कहते हो, वही जो है वहां पर अवतरित हुए, वही संत कुमार। तो ये संकेत आता तो ऐसे सर्वथा। अब यहीं पर एक बात और समझने की, संत कुमार जो हैं और गणेश ये दोनों जो है किसके पुत्र हैं? काश्यप और पार्वती। लेकिन बड़ी विलक्षण बात है, सनत कुमार का संबंध पार्वती से नहीं है और गणेश का संबंध शिव से नहीं, दोनों दोनों के पुत्र नहीं, एक एक के पुत्र हैं। अर्थात मने सनत कुमार सर्वथा प्रकृति से परे, भगवान शिव से संबंध है उनका, सदा शिव भाव में स्थित रहने वाले हैं, मूल कारण में स्थित रहने वाले हैं, वहां जो प्रकृति है जो अज्ञान है उसके द्वारा होने वाली कामना संभव ही नहीं, ऐसी संत कुमार। तो इसको कहा बाल्य भाव। एक और कथा आती है इसी संबंध में, आपने श्रुतियों में सुना होगा राजा बृहद्रथ। बृहद्रथ बड़ा ही शौर्यशाली राजा था, बलवान राजा था, लेकिन उसने जो है अपनी बलवत्ता को लेकर के सारे देशों पर विजय प्राप्त कर ली, सारे देशों को अपने अधीन बना लिया और अधीन बनाने के बाद में अपने गुरु के पास पहुंचा और कहने लगा कि मैंने सारे देशों को अपने कब्जे में कर लिया, है मेरे समान कोई बलवान, है मेरा कोई दूसरा शत्रु, है कोई देश जिसे मैं जीतूं? गुरु समझ गए जिसका अहंकार और अहंकार ही क्या है, तो तुलसीदास ने लिखा अहंकार अति दुखद डमरुआ, सारे दुखों का कारण क्या है। गुरु ने समझ लिया, गुरु ने कहा हां है, जब कहा है, कहां है, कहा यहीं है, तो उसने कहा यहां तो आप हो, आप मेरे गुरु हो और मैं हूं, मैं आपका शिष्य हूं, यहां तो कोई शत्रु या देश आदि है ही नहीं, तो कौन है बतलाओ। गुरु ने कहा है, तो उसने तुरंत अपने जो है थाली बजाई, तो उसका चपरासी आदि चौकीदार आदि आ गया, उससे कहा बुलाओ सिपा सैलार को, बुलाओ जो है सेनापति को, आ गए वो सब, कहा सजा लो सेना, शत्रु पर चढ़ाई करनी। जब ये सब तैयारी कर ली, गुरु ने कहा ये सब क्या कर रहा, कहा आप कह रहे ना शत्रु है देश है उसे जीतूंगा, कहा इससे वो जीता जा सकता, ये बल काम नहीं आएगा, इस बल से नहीं जीत सकता, यदि तू इनसे इन शस्त्रों के रूपी बलों से और आप जो है प्रहार करोगे तो तेरी आंख फूट जाएगी, कान फूट जाएंगे, बहरा हो जाएगा। कहा क्या मतलब, कहा शत्रु कौन है, कहा और कोई शत्रु नहीं, तो आचार्य शंकर ने लिखा के शत्रवाह संति तो निजेन्द्रियाणी और के मित्र कान मित्रानी मित्राणी और मित्र कौन है तो जितान ही आनी, ये इंद्रियां ही हमारी शत्रु भी हैं और इंद्रियां ही हमारी मित्र, ये संकेत किया। तो जब उन्होंने कहा कि वही और कोई नहीं है यही है और इन्हीं में क्या बैठा हुआ, कहा रस विद्यमान है, कामना विद्यमान, क्यों आंख हम जहां ले जाना चाहते वहां नहीं जाती, किंतु आंख हमको घसीट करके ले जाती, कान हम जहां लगाना चाहते वहां नहीं लगता किंतु कान हमको घसीट ले जाता, मन जहां हम लगाना चाहते वहां नहीं लगता किंतु मन को हमको घसीट ले जाता, ये नियम है। तो ये क्या है, ये तो शत्रु, तो संकेत किया और इसको कबीर दास ने तो बड़ी सरल भाषा में लिख दिया। कबीर ने क्या लिखा, उन्होंने पद ही बना दिया, उन्होंने कहा यतन बिन मृगनन खेत उजारे, तारे नहीं तरत निशवासर, बिडरत नहीं बिडारे, यतन बिन मृगनन खेत, अपने अपने रस के लोभी कर्तव्य न्यारे न्यारे, यतन बिन मृगनन खेत। तो क्या संकेत किया उन्होंने भी, ये इंद्रियों को ही मृग शब्द सीखा, ये जो है इन्होंने क्या है, हैं? तो भगवान ने जो कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्ते, यही खेत है, इसमें हम चाहे तो सुंदर फसल पैदा कर सकते हैं और इसीलिए इसकी दुर्लभता भी बतला दी गई कि बड़ा दुर्लभ है, है? तो ये संकेत करते हुए वहां भी उन्होंने कहा अपने अपने रस के लोग, आंख जो है क्या उसका आहार है, तो रूप, रूप को देखती, कान का क्या आहार है, कहा शब्द, नाक का क्या क्या आहार है, कहा सुगंध, और यहां इनको देखती है तो वहां हमको खींच ले जाती, हम जहां आंख को लगाना चाहते हैं वहां आंख जाती नहीं है, बोलते तो है हम लोग, शास्त्र कहता भी है आंख वही है, अनूप जलोठा ने भी कह दिया है आंख वही जो भगवान का दर्शन, और पे हैं सुख कान सुने बतियां फल लोचन आफन तो लहे, तुलसीदास ने भी लिखा कानों की सार्थकता क्या है, जो सुंदर कथा सुन, और इस बात को संत कुमार के विषय में लो तो तुलसीदास ने क्या लिखा, तुलसीदास ने लिखा कि ब्रह्मानंद सदा लय लीना देखे बालक बहु काली। तो बालक भाई ये नियम है, शरीर की अवस्था में परिवर्तन होगा, शरीर कभी बालक नहीं रह सकता, लेकिन वो बालकपना क्या है, किसको संकेत किया वहां, देखे बहुत

हो रहा वो क्यों? उत्सम शब्द का अर्थ क्या है? उत्सम शब्द का अर्थ बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी उपाधि कभी सम नहीं हो सकती, किंतु उस उपाधि में एक समता बैठी हुई, उस पर हमारी दृष्टि जाती नहीं। वही पंखा है, क्या करता है? वायु देता है। बल्ब क्या करता है? प्रकाश देता है। लेकिन बल्ब और पंखे को हम बराबर कहना चाहें, सम कहना चाहें, ये कभी हो ही नहीं। आंख भी एक बल्ब है ना, और नासिका से प्राणवायु आती है, पंखा ही समझ लो। कान जो है शब्द को ग्रहण करने वाला, आप ट्रांजिस्टर टीवी आदि समझ लो, और जो है ये सारी क्रिया, लेकिन इनमें समता नहीं है, विषमता भी, लेकिन समता भी है। वो समता क्या है? इनके अंदर जो भी ये प्रकाश हो रहा है, जो चक्कर काट रहा है, ये जो हमारी आवाज को है विवर्तन कर रहा है, ये किसके बल से कर रहा है? तो इसमें बल किसका है? क्या ये स्वयं करने में समर्थ है? कहा नहीं। ये प्रकाश करने में समर्थ है? नहीं। और पंखा क्या वायु करने में समर्थ? कहा नहीं, लेकिन फिर भी कर रहा। और इनमें भेद भी है, लेकिन फिर भी एक समता बैठी। वो समता क्या है? विद्युत। विद्युत रूपी बल जो है वो इसमें भी विद्यमान है, बल्ब में भी विद्यमान है, पंखे में भी विद्यमान है। उस विद्युत रूपी बल के द्वारा ही ये सारी क्रिया हो रही। इसी प्रकार से यहां पर भी संकेत किया, चाहे विद्यावान हो और चाहे हाथी गऊ आदि हो, और इतना कह दिया कि इतना ही नहीं, चांडाल ही क्यों हो, कुत्ता भी हो चांडाल, उसको पका करके कुत्ते को खाने वाला क्यों, सब में वह बल है। तो उस समता को, उसको यदि जब देख लेते हैं तो वही है समर्थ। उस सत्ता को यदि देखना हमारे अंदर आ गया तो उसी को सम कहते हैं। ये कहा समा सर्वेश भूतेश आदि गीता में नाना प्रकार से कहा, समत्व दृष्टि की भी चर्चा की। तो इस प्रकार से ये है क्या? बल। और इसी को चर्चा की समदर्शी मुनि विगत विभेदा, उन ऋषियों के अंतर्गत क्या थी? समत्व दृष्टि थी। माने एक जो कारणात्मना सत्ता थी, कारण रूप जो था, उस कारण रूप सत्ता को ही सर्वत्र वह थी, और कारण रूप सत्ता को देख करके ही वो समझते थे कि ये जो कार्य हो रहा है वो इस कारण के बिना हो सकता नहीं। तो मूल है कारण, कारण में दृष्टि रखने वाले थे, इसलिए उनके अंदर समत्व था। लेकिन उपाधि को, कार्य को लेकर के समता संभव नहीं हो सकती। तो इसलिए समदर्शी मुनिविगत वेदा, और वेद शब्द माने चारियो वेदा, मतलब उनके अंतर्गत। चारियो वेदों का रूप क्या है? बात थोड़ी बढ़ जाती। वेद जो है वैसे तो एक ही है, विद धातु जो है ज्ञानार्थक भी है, और विद धातु सत्तार्थक भी है, और विद धातु अभिकांक्षायाम अभिकांक्षा अर्थ में भी है, और विद धातु जो है विद लाभे लाभ अर्थ में। विद धातु के चार अर्थ हैं, सत्ता, ज्ञान, अभिकांक्षा और लाभ, और इन्हीं को लेकर के चार पुरुषार्थों की भी वर्गीकरण के हिसाब से कल्पना की गई। तो अब यहां पर जो है संकेत करते हैं, ऐसे वेद से संपन्न थे, लेकिन वो सत्ता और सत्ता का उन्हें ज्ञान था, इसलिए उनकी कामना जो थी, अभिकांक्षा थी, वो भी कहां थी? सत्ता में थी, असत्ता में कामना, और उस सत्ता का ही उन्हें लाभ था, इसलिए जब सत्ता का ही लाभ था तो सत्ता तो शाश्वत है। इसलिए कह दिया कि रूप धरे जिन चार्यो वेदा समदर्शी मुन विगत, इसलिए उनके अंदर कोई विभेद था ही नहीं, सदा अद्वैत रूप में वो मस्त रहते थे। लेकिन इतना होते हुए भी उपाधिवान थे, तो वो कैसे फिर आगे क्रिया? तो आगे संकेत किया कि ऐसा होते हुए भी उनकी स्थिति क्या थी? आशा वसन व्यसन यह तीन ही, बड़ी विलक्षण बात कही। कहा उनके वस्त्र क्या थे, उनमें आवरण क्या था? तो कहने लगे दिशाएं ही जिसका आवरण थी, आशा और व्यसन। हम लोग भी कोई छाय का व्यसनी है, हैं? कोई सिगार का व्यसनी है, कोई किसी का व्यसनी। तो अब कहा व्यसन क्या था, तो क्या संकेत किया? अकर्मण्य नहीं कहा, कहा आशा वसन व्यसन यति नहीं, रघुपति कथा होए ता सुने। ये व्यसन था, एक वक्ता बन जाता तो तीन श्रोता बन जाते, कोई सुनने वाला मिल गया तो उसे सुनाते, नारद जैसे आ जाते तो उनको सुनाते थे,
और कोई नहीं।

0: किया तो आपस में,
1: तो ये सब। और ये दूसरी तरह से हमारे अंतःकरण के जो चार रूप हैं उनको भी समझ लेना, और उस अंतःकरण में भी जब उस सत्ता का जो सत्यत्व है उसका ज्ञान होता है, और उसका जब ज्ञान होता है तो उसकी अभिकांक्षा अन्यत्र नहीं होती है, उसी सत्ता में होती है और उसी का वो लाभ उठाता है, इसी को परम दृष्टा निवर्तते कहके, तब उसका रस जो है बाहर कहीं ग्रहण करने के लिए जाता, उसी से रसान्वित होता है। और उस अवस्था में ही कह दिया रसो वही शह रसम लब्ध्वा हेवा आनंदी भवति, वही रस स्वरूप है और ऐसे रस को प्राप्त करके वो आनंदायत हो जाता, ये संकेत किया। तो ऐसे संत कुमार आदि थे, तो यहां संकेत कर रहे हैं कि जब इस प्रकार से हमारे अंदर समत्व दृष्टि आ जाती है, हमारा रस कहीं नहीं रह जाता है, तब क्या होता है, तब सारे बंधनों से मुक्त होकर के और जैसे पत्ता है तो वैसे ही संसार रूपी वायु और आती है, जहां रख देती है वहीं पर वो मस्त रहता है, जैसी स्थिति में रखती है वहीं पर मस्त रहता है, वहां उसका कोई आग्रह दुराग्रह नहीं रहता, इससे रहत हो जाता है। तो ऐसा बल जब जीवन में आता है तब ऐसे बल से वो युक्त होकर के और जो है क्या है अपनी इंद्रियों को जीतने वाला और बलवान कहलाता है। केवल इंद्रियों को उनके आहार से निवृत्त कर देने का नाम बल नहीं है, वो उनको जीतना नहीं। वही गुरु ने जो है जरस वो क्या नाम ब्रद रथ से कहा कि इस प्रकार से तू जीत नहीं पाएगा, इससे तो तेरी इंद्रियां नष्ट हो जाएंगी, और इंद्रियां नष्ट हो जाएंगी तो तेरे जीवन में जो है जीवन निर्वाह करना भी कठिन हो जाए। इसलिए कहा जो है इन इंद्रियों को जीतने के लिए एक ही उपाय है, वो उपाय क्या है, परम दृष्टा निवर्तते, अर्थात इंद्रियों का भी, इंद्रियों को सामर्थ्य देने वाला, इंद्रियों में बल रहने वाला जो मूल कारण है, जो मूल सत्ता है, उस सत्ता को तू समझ, और जब उस सत्ता को समझेगा तो इंद्रियों के द्वारा होने वाली जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति में फिर कामना राग द्वेष आदि नहीं रह जाएगा, और ये जब नहीं रह जाएगा तो तुझे बाल्य भाव की प्राप्ति होगी, वो बल तेरे में आएगा और तू विजयी हो जाएगी। ये संकेत किया, वही संकेत यहां पर जो है कर रहे, तो कौन सा बल हमें चाहिए, तो इंद्र भी यहां पर ईशु रूप से भी संकेत किया, तो बल का प्रतीक है। तो हमारे जीवन में क्रम से वही बतलाते हैं, हमें सहायक चाहिए, हमें मित्र चाहिए, सहयोगी चाहिए, वो सहयोगी कौन है, तो एक परमात्मा ही वास्तव में हमारा मित्र, वही सदा साथ देने वाला। और कहने लगे कि ये सब ठीक है, फिर जो है हम वर्ण भी किसका करें, तो कहा वही श्रेष्ठ है, वही वर्ण करने योग्य है, और वो कब वर्ण होगा, तो उसके लिए अरिमा शब्द से संकेत कर दिया, जब हमारा मन श्रेष्ठ होगा, हमारा मन सरल होगा, और सरल मन में ही उसकी वर्णता संभव है। और कहने लगे मन तो सरल हो गया, मन में सुसंस्कृतता तो आ गई, लेकिन वहां भी अहंकार बैठा हुआ है, वहां भी भेद बैठा हुआ, तो कहा तब भी बात नहीं बनेगी, तब बल चाहिए, वो बल कौन चाहिए, तो ये बल चाहिए, यहां पर किसी प्रकार की कामना क्रोध आदि न रहे, इनकी निवृत्ति हो जाए, उनको सहन करने में भी हम समर्थ हो जाएं, अर्थात तितिच्छु बन जाएं, ये जो है जब जीवन में आ जाता है तो ये ही साधन साधन चतुष्ट में भी शतक संपत्ति के अंतर्गत भी इनकी चर्चा की विवेक वैराग्य पूर्वक, और वही चर्चा यहां शांति पाठ में कर रहे हैं, और उसी की ऋषि याचना करता है कि ये जब हमारे जीवन में आएंगे तब जो है हम जिसके आगे कहेंगे ब्रह्मविद आपनोत ब्रह्म करके संकेत करेंगे आगे की बल्ली में, तो उनकी जो है उसकी प्राप्ति हमें तभी हो सकती है और तभी हम सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए ऋषि कहता है कि सन्नो इंद्र, इंद्र जो है तुम मुझे हैं सुख प्रदान करो, हमारे दुख की निवृत्ति करो, और दुख की निवृत्ति तभी होगी, सुख की निवृत्ति तभी होगी जो बल है, वो बल हमें प्राप्त हो, और इंद्र यहां पर बल के प्रतीक माने गए, इसलिए ऐसे बल की याचना जो है ऋषि करता है, और ऐसी याचना करते हुए आगे जो है संकेत करता बृहस्पति सन्नो, दोनों के साथ संबंध है इसका, सन्न इंद्रो सं बृहस्पति, इंद्र भी हमारे लिए जो है इस प्रकार से हमारा जो है कल्याण करें, और आगे कहा बृहस्पति। अब बृहस्पति क्यों कहा तो इसकी चर्चा कल करें।
2: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
0: ஓம் சிவாய நமஹ. சைவம் டாட் ஆர்கின் ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சி சிவகீர்த்தனை, கோபாலகிருஷ்ண பாரதி பாடல்கள். இதில் நீங்கள் கேட்கவிருப்பது அறிவுடையோர் பணிந்து ஏற்கும். வழங்குபவர் சிவலட்சுமி பூவாள் அவர்கள். வணக்கம். ஓம் சிவாய நமஹ.

वन्याय वन्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च वन्याय वन्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசிபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹாவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோர்சஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. ஃபிலாசபிக்கல் டிஸ்கோர்சஸ் அண்ட் பெரிய புராணம் லெக்சர்ஸ் இன் தமிழ் will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Veda Pataha ऋग्वेद रतपाठः.
2: ॐ दक्षन्नासत्याभ्याम् युवान पितरा, नासत्याभ्याम् दक्षन्न पितरा युवान, दक्षन्नासत्याभ्याम् युवान पितरा, नासत्याभ्याम् परिज्मानम् पितरा पुनः, परिज्मानम् नासत्याभ्याम् दक्षन्न पुनः पितरा युवान, दक्षन्नासत्याभ्याम् युवान पितरा, नासत्याभ्याम् परिज्मानम् पितरा पुनः, परिज्मानम् सुखम् पुनः सत्यमन्त्राः, परिज्मानमिति परिज्मानम् पुनरिति पुनः, सुखम् परिज्मानम् नासत्याभ्याम् दक्षन् सत्यमन्त्राः पुनः पितरा युवान, दक्षन्नासत्याभ्याम् युवान पितरा, नासत्याभ्याम् परिज्मानम् पितरा पुनः, परिज्मानम् सुखम् पुनः सत्यमन्त्राः, परिज्मानमिति परिज्मानम् पुनरिति पुनः, सुखम् रथम् सत्यमन्त्रा ऋजूयवाः, सुखमिति सुखम् सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः, रथम् सुखम् परिज्मानम् नासत्याभ्याम् तक्षन् ऋजूयवः सत्यमन्त्राः पुनः पितरा युवान, तक्षन्नासत्याभ्याम् युवान पितरा, नासत्याभ्याम् परिज्मानम् पितरा पुनः, परिज्मानम् सुखम् पुनः सत्यमन्त्रा.

कषा मधुमती रथि तमेति रथि तमा कषा मधुमती उभा देवा मधुमत्यश्विना मधुमतीति मधुमती देवा दिविस्पृशा अश्विना सुन्द्रतावती दिविस्पृशे।

अदब्धव्रत प्रमतिर्वसिष्ठ सहस्रंभर शुची जिह्वो अग्नि सज्ञसीदस्वमहाँ आशिशोचस्वदेववीतामह विधुममग्ने अर्षम्मीयेध्यसृज प्राशस्तदर्शतम्।

नमैदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम्। जागृत अवस्था में हमें जो विश्व, जो पदार्थ, जो प्रपंच अनुभव में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, इसकी वास्तविकता कैसी है, तो आचार्य शंकर बताते हैं, दर्पण में दिखे हुए दृश्य की तरह है। दर्पण में दिखने वाले दृश्य को हम दो तरह से मानते हैं। जब तक अपने ललाट की बिंदिया ठीक करनी होती है तब तक तो वह सत्य की तरह देखते हैं। जब तक अपने केस को ठीक करना होता है तब तक तो हम उसको भी सत्य की तरह ही देखते हैं, मानते हैं। जब तक अपने

लेकिन उसके बाद फिर हम उसकी परवाह नहीं करते, फिर हम चले जाते हैं, हम हट जाते हैं वहां से। हमारे हटने के बाद उसका क्या होगा? जब चाय पीने लगते हैं तो एक कप उसके लिए अतिरिक्त बनाकर रखते नहीं है, रखते हैं। जब भोजन करनी होती है तो उसके लिए एक कटोरी रस, आम का रस अलग नहीं रखते हैं, उसके लिए अलग थाली तैयार नहीं करते। जब बाजार से कपड़ा खरीद के लाने होता है तो उसके लिए अलग साड़ी नहीं खरीदते हैं, उसके लिए अलग वस्त्र नहीं खरीदते हैं। उसका क्या होगा? तो कहते हैं कि अरे वो है ही नहीं तो उसके लिए क्या भोजन रखनी है, अलग थाली क्यों बनानी है, वो है ही नहीं तो उसके लिए अलग कपड़ा क्या करना है। हम खा लेंगे तो उसको हो जाएगा, हम पहन लेंगे तो उसको हो जाएगा। तो दो तरह से देखते हैं हम दर्पण के दृश्य को, एक तो कहीं सत्य की तरह देख लेते हैं और कहीं झूठे की तरह देखते हैं। शंकराचार्य जी की मान्यता है, शंकराचार्य जी का कहना है, वास्तव में ये पदार्थ दर्पण में दृश्यमान नगर के पदार्थ के समान है। सारा विश्व इसको सत्य मान लेना ही सबसे बड़ी जीव की भूल है। दिखना ही नहीं चाहिए ये अर्थ नहीं है, दिखने पर भी उसको सत्य मानना कि नहीं मानना ये आप पर निर्भर करता है। दिखता है कि नहीं दिखता है ये आप पर निर्भर नहीं करेगा, आप नहीं चाहोगे तो भी दिखेगा। आप दर्पण के आगे खड़े हो जाओगे और आपके आंख ठीक है, वो वस्तु तंत्र नहीं है, कर्तृतंत्र नहीं है, वो वस्तु तंत्र है, वेदांत का सिद्धांत है। कर्म आदि सब, स्वर्ग आदि ये कर्तृतंत्र है, करोगे तभी प्राप्त होगा। लेकिन ये वस्तु ज्ञान जो है वह कर्तृतंत्र तंत्र नहीं है, वो वस्तु तंत्र है। प्रकाश हो और आंख ठीक हो और सामने दर्पण खड़ा हो, आप लाख कोशिश करें कि मैं उसको नहीं देखूंगा तो ये नहीं होगा, दिख तो रहेगा, दिखेगा तो सही। आप कहें कि जगत को मैं देखूंगा ही नहीं, ये नहीं होगा, दिखेगा तो सही। या तो आंख बंद कर लो हमेशा, या अंधकार में बैठे रहो हमेशा, नहीं तो आंख ठीक है और प्रकाश भी है तो दिखेगा। लेकिन दिखने पर किस रूप में दिखता है वो आप पर निर्भर करता है। उसको यथार्थ के रूप में देखना चाहते हो कि अयथार्थ के रूप में देखना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करता है। दिखने वाले दृश्य को सत्य के रूप में आप देखना चाहो तो देख लो, सत्य के रूप में देख लो, लेकिन एक बात ख्याल रख लेना, आपकी चाहना मात्र से वो सत्य नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा कि ये सत्य है, लेकिन आपको लगने मात्र से वो सत्य नहीं होता। नहीं तो बहुत आसान था, संसार में धनी होना बहुत आसान था, क्योंकि नदी के किनारे, समुद्र के किनारे खड़े हो जाते और सबकी सीपी के चांदी को आप सत्य मान लेते, तो आपके सत्य मानने पर सबके सबको सत्य मानना पड़ता, तब तो फिर आपको धन कमाना कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आपके सत्य मानते ही फिर सब सत्य मान लेंगे तो फिर समुद्र के किनारे सीपी भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सभी सत्य मानने लग जाएंगे तो फिर कौन छोड़ेगा उसको है? केवल आपको सत्य लग रहा है और सत्य नहीं मानते, इसलिए आपके लिए बचा रहता है। जैसे आपको सत्य लगा वैसे और को भी सत्य लग जाएगा, तो कहां बचेगा समुद्र के किनारे सीपी? बचेगी, सभी उसको उठाते ले जाएंगे, किनारे में आ गया कि उठा लिया।

0: விஸ்வம் தர்ப்பணம் திருஷ்யமான நகரி துல்லியம். நிஜாந்தர்கதம் கஹா தீக் ரஹா ஹை, ஏ ஜகத் ஹை கஹா, ஹை தோ நிஜாந்தர்கத், துமாரே அந்தர் ஹீ ஹை. இஸ்கா மத்லப் யே ஹை கி துமாரி சத்தா ஸே பின்ன சத்தா நஹீ ஹை. துமாரி அந்தர் ஹை கா மத்லப் யே நீ சமஜ் லேனா கி ஜைசே ஹால் கே அந்தர் ஹம் அலக் ஹை, ஸ்வதந்திர ஹை, ஹம் பைதே சாய் உடே, சாய் கதா சுனே, சாய் குர்சி மே சோ ஜாயே, ஹம் ஸ்வதந்திர ஹை, ஹை கி நீ போலோ. யஹாம் பைட்னே வாலே சபி கோ கதா சுன்னா அனிவார்ய ஹை கி சோனே கே லியே பி ஸ்வதந்திர ஹை வோ. ஹை நித்ரா லக் ஜாயே தோ சோ பி சக்தா ஹை கி நீ போலோ, ஸ்வதந்திர ஹை. கோய் கானூன் தோ ஹை நீ கி ஹால் மே குர்சி மே பைட்னே கே பாத் சோனா நஹீ, ஐசா தோ நியம் தோ ஹை நீ. ஔர் நியம் பி பனா தேங்கே தோ வோ நியம் வஹாம் தர்வாஜே மே லட்கா ரஹேகா, நியம் அப்னா சோனே கா காம் சோதே ரஹேங்கே. லேக்கின் ஐசா நஹீ ஹை. நிஜாந்தர்கத் கா அர்த்த ஹோதா ஹை கி அப்னி சத்தா ஸே ஸ்வதந்திர சத்தா வாலே யே பதார்த்த ஹை நஹீ. தர்ப்பண் கி சத்தா ஸே தர்ப்பண் கே அந்தர் திக்னே வாலா ஜோ த்ருஷ்ய ஹை வோ ஸ்வதந்திர சத்தா வாலா நஹீ ஹை. யதி ஸ்வதந்திர சத்தா வாலா ஹோதா தோ ஃபிர் தர்ப்பண் கே நஷ்ட ஹோனே பர் பி உஸ்மே கோயி பி விகார் நா ஆதா. தர்ப்பண் கே ஹட்னே கே பாத், தர்ப்பண் கே டூட்னே கே பாத் பி வோ யதாவத் பனா ரஹதா, ஸ்வதந்திர சத்தா வாலா ஹோதா தோ. நிஜாந்தர்கதம் அப்னே அந்தர் வித்யமான் ஹை. லேக்கின் ஹம்கோ தோ சப் யே லக் ரஹா ஹை கி யே தோ சப் ஹம்ஸே பஹார் ஹை, ஹம்ஸே பஹார் ஹை. கிசி கோ பி யே நஹீ லக் ரஹா ஹை கி யே சப் ஹமாரே அந்தர் ஹை. நா ஆப்கோ லக் ரஹா ஹை, நா முஜே லக் ரஹா ஹை. முஜே பி நஹீ லக் ரஹா ஹை. மே கஹ தோ ரஹா ஹூன் சங்கராச்சாரிய ஜி கி பாஷா கோ, முஜே நஹீ லக் ரஹா ஹை கி ஆப் சப் மேரே அந்தர் ஹோ. லக்னே கி பாத் ஜஹான் தக் ஹை. விசார் ஸே சித்த ஹோதா ஹை கி ஆப் மேரே அந்தர் ஹை, லேக்கின் அனுபவ மே நஹீ ஆ ரஹா ஹை கி ஆப் மேரே அந்தர் ஹை. விசார் ஸே சித்த ஹோதா ஹை கி ஆப் மேரே அந்தர் ஹை, கியோங்கி ஆப்கி சத்தா கேவல் மேரி திருஷ்டி ஔர் மேரி சத்தா பர் நிர்பர் ஹை. ஆப் யஹாம் ஹோ கி நஹீ, ஆப் மேரே ஸே பஹார் ஹோ கி நஹீ, ஆப் குர்சியோ மே பைட்டே ஹோ கி நஹீ, யா ஆப் ஸ்வதந்திர நஹீ ஹை, வோ மேரி சத்தா பர் நிர்பர் ஹை. மே ஆக் பந்த் கர் தூன் தோ க்யா கர் லோகே, தும் க்யா கர் லோகே போலோ. மே ஆக் பந்த் கர் தூன் தோ க்யா கர் லோகே, துமாரி சத்தா குர்சி மே சித்த ஹோகி. மே கைரி நித்ரா மே சலா ஜாவுங்கா போலோ. மே கைரி நித்ரா மே டீப் ஸ்லீப் மே சலா ஜாவுங்கா தோ துமாரி சத்தா குர்சி மே சித்த ஹோகி. தும் ஹோ யஹி முஜே பான் நஹீ ஹோகா தோ கைசே சித்த கருங்கா கி குர்சி மே ஹோ. யஹி தோ பாத் ஹை. சுதுர்முர்க கோ லக்தா ஹை கஹதே ஹை கி ஜப் உஸ்கோ கோய் டர் லக்தா ஹை தோ வோ ஹம் பாலூ மே ரேத் மே சிர் சுபா லேதி ஹை. கஹதே ஹை பில்லி கோ ஜப் தூத் பீனே ஹோதி ஹை தோ ஆங்க் பந்த் கர் லேதி ஹை. பில்லி ஸே பூச்சா கி பாய் தூத் பீதே சமய ஆங்க் பந்த் க்யூ கர்த்தி ஹோ. உஸ்னே கஹா டர் லக்தா ஹை, ஆங்க் கோலூ தோ டர் லக்தா ஹை. ஸோ கைசே, க்யோங்கி மே ஆங்க் கோலூ தோ சாம்னே ஔர் கோய் திகாய் படேகா, ஔர் கோய் ஔர் ஹோகா தோ வோ முஜே மாரேகா, வோ தேக் லேகா கி மே தூத் பீ ரஹி ஹூன். அப்னே ஆங்க் பந்த் கர் தியா தோ சாம்னே கோய் பி திகேகா நஹீ, கோய் பி நஹீ திகேகா தோ கோய் மாரனே வாலா ஹி நஹீ ஹை. தோ ஆப்னே நிஷ்சிந்த தூத் பீ லோ. ஆப் பி தூத் பீனா ஹோ தோ ஆங்க் பந்த் கர்கே பீ லேனா, நிஷ்சிந்த ஹோகா. ஆப் தேக்தே ஹோ தபி பாஹர் திகாய் படதா ஹை, ஆப் நா தேக்கோ ஆப்கோ கோய் சமஸ்யா நஹீ ஹை. லேக்கின் யே பாத் சித்தாந்த தக் கி யே பிரயோக் மே ஆனா படா முஸ்கில் ஹை. பிரயோக் மே ஆனா படா முஸ்கில் ஹை, க்யோங்கி हमारा ये अभ्यास हुआ है और इस अभ्यास के चलते ऐसा अध्यास हुआ है कि हमने कभी भी ये पक्ष को सोचा ही नहीं है कि पदार्थों को बाहर न देखकर अंदर देखें, ये कभी सोचा ही नहीं है, कभी अभ्यास किया ही नहीं है। तो फिर हम हमेशा बाहर देखते आए हैं, तो वही आदत है, वही अभ्यास है, उस अभ्यास के चलते ये अध्यास इतना दृढ़ हो गया है कि हमको बाहर के अलावा अंदर पदार्थ दिखता ही नहीं है। दृष्टांत दिया उन्होंने, स्वप्ने स्वंतर्गतम विश्वम यथा पृथक इवेक्षते पश्यन्नात्मया मायया बहिरिवोद्भूतम यथा निद्रया। दृष्टांत दिया था, यथा निद्रया बहि उद्भूतम इव पश्यन्, जैसे स्वप्नावस्था में अंदर ही अपनी सत्ता और अपने प्रकाश से भिन्न अभिन्न हुए हुए पदार्थों को, अपने ही अंदर विद्यमान तमाम पदार्थों को स्वप्न दृष्टा पुरुष बाहर की तरह देखता है। लेकिन स्वप्न में दिखाई दिए हुए, दिखाई पड़ने वाले वो सभी पदार्थ वास्तव में निजांतर है। जैसे स्वप्न के सारे दृश्य निज अंतर्गत है, अपने ही अंदर विद्यमान है, अपनी सत्ता और अपनी प्रकाश से भिन्न प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, अपनी सत्ता से भिन्न सत्ता वाले नहीं होते। आपको अभी तो ये लग रहा है कि कुर्सी की सत्ता मेरी सत्ता से भिन्न सत्ता है, आपको अभी तो ये लग रहा है, मैं भिन्न हूं, कुर्सी भिन्न है, कुर्सी स्वतंत्र सत्ता वाली है, मैं यहां से निकल जाने पर भी कुर्सी यहीं के यहीं रहती है, और जब मैं बाहर से आ रहा था तो कुर्सी यहीं थी, कल भी यहीं छोड़ के गया था और आज भी यहीं है, और मैं कहां से कहां पहुंचकर आ गया। इसका मतलब यह है कि यदि मेरी सत्ता से कुर्सी की सत्ता भिन्न न होती, अभिन्न होती, तो मैं जहां जाता कुर्सी वहीं पीछे लग कर जाती, मनमोहन की तरह है, शायद उसी की कुर्सी पीछे लग कर जाती और किसी की नहीं जाती है। स्वतंत्र सत्ता, हमको ऐसा नहीं लगता कि अभी कुर्सी की सत्ता और मेरी सत्ता एक ही है, और हमको ये नहीं लगता है कि ये कुर्सी को देखने वाला मैं अलग हूं और दूसरा अलग है, इसको प्रकाशित करने वाला सूर्य का प्रकाश अलग है, देखने वाला मैं अलग हूं, कुर्सी की सत्ता अलग है, अलग अलग। लेकिन दृष्टांत दिया, आपको ये जागृत में जो कुछ भी हो रहा है ये भ्रांति से हो रहा है, सत्य क्या है? जैसे स्वप्न की कुर्सी और आपकी सत्ता, कुर्सी की सत्ता और आपकी सत्ता दोनों अलग अलग है कि नहीं? स्वप्न की कुर्सी की सत्ता और आपकी सत्ता दोनों सत्ता अलग अलग है कि नहीं? ऐसा होगा कि आप जागृत में आ जाएं और कुर्सी की सत्ता स्वप्न में ही रह जाए, स्वप्न की कुर्सी की सत्ता वो स्वप्न में सुरक्षित रह जाए, संभव है? हैं? आप जागृत में आ जाएं या आप सुसुप्ति में चला जाएं, तब स्वप्न की कुर्सी की सत्ता स्थावत यथावत रहेगी वहां? इसका मतलब यही सिद्ध हुआ कि आपकी सत्ता और कुर्सी की सत्ता भिन्न नहीं है। और आप कहोगे कि भिन्न नहीं है, एक ही है, तो फिर सुसुप्ति में भी कुर्सी दिखनी चाहिए, क्योंकि मैं सुसुप्ति में गया तो कुर्सी भी वहीं जानी चाहिए, मेरी सत्ता जहां है कुर्सी की सत्ता वहीं है, दोनों की सत्ता एक ही है, तो सुसुप्ति में भी कुर्सी जानी चाहिए, सुसुप्ति में तो नहीं जाती, और जागृत में आते ही तो कुर्सी की सत्ता, फिर स्वप्न की कुर्सी की सत्ता जागृत में भी आनी चाहिए, तो फिर जागृत में नहीं आती है, तो मेरी सत्ता और स्वप्न की कुर्सी की सत्ता दोनों को अलग अलग कैसे माने? एक ही माने, एक ही मानते हैं तो फिर अनुभव में क्यों नहीं आता है? तो यह अनिर्वचनीय है, वेदांत यहीं जाकर अनिर्वचनीय कहता है। ये जागृत की सत्ता भी ठीक इसी तरह है। दूसरी बात, स्वप्न में उस कुर्सी को प्रकाशित करने वाला प्रकाश और आप ये दोनों एक ही है। मैं हूं जो बोध वहां हो रहा है वही आपका प्रकाश ही, ये कुर्सी है ये बोध करा रहा है, कुर्सी को प्रकाशित करने वाला प्रकाश और आपके प्रकाश ये दो नहीं है, इसीलिए प्रकाश और सत्ता स्वप्न की दोनों एक ही है। स्वप्ने स्वांतर्गतम विश्वम यथा पृथक इवेक्षते, अंतर्गतम विश्वम यथा पृथक इव इच्छते, स्वप्न दृष्टा अपने से भिन्न की तरह देखता है ठीक उसी तरह, तथैव जागृत काले भी प्रपंचोयम विविच्यताम, इसी तरह जागृत का ये प्रपंच भी आपके अंदर ही है, ये विचार कर लेना। विविच्यताम, ये विचार किए बिना ये अनुभव में नहीं आएगा, बिना विचारे यदि इसको अपने अंदर देखना चाहो तो वो संभव नहीं होगा। विचार करोगे तब आपकी सत्ता और आपके प्रकाश से अभिन्न सिद्ध हो जाएगा। स्वप्ने स्वसत्ते वार्थानां सत्ता नान्येति निश्चिता, को जागृति विशेषस्ति जड़ानां आसुनासिना। जागृत के पदार्थ जड़ होने के कारण स्वयं प्रकाशित तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि जड़ पदार्थ में प्रकाशता नहीं है, और मैं अपने आप को जड़ मान नहीं सकता, क्योंकि किसी भी हालत में भी अपने को जड़ नहीं मान सकता। अतः मैं चैतन्य रूप हूं और जो चैतन्यता है उसी में ही प्रकाशता है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वह दूसरे को भी प्रकाशित कर सकता है और स्वयं भी प्रकाशित हो सकता है। जागृत के तमाम पदार्थ जड़ होने के कारण ये जड़ पदार्थ न ये दूसरों को प्रकाशित कर सकते हैं न खुद प्रकाशित हो सकते हैं। आपका पेन यदि खो जाए तो उसको संबोधन करो, हे पेन मास्टर तू कहां है, तो शायद वो बता पाएगा कि मैं यहां पर हूं। बता पाएगा है? हे पेनी राम है? तू कहां है, तो वो बता नहीं पाएगा कि मैं कहां हूं। और उसके साथ अच्छा भाई तेरे साथ और कौन कौन है, वो भी नहीं बता पाएगा कि मेरे साथ और कौन कौन है, ना मेरे साथ और कौन कौन है ये बता पाएगा, ना ये बता पाएगा कि मैं कहां पर हूं किस अवस्था में हूं। ऐसी अवस्था क्यों है, तो क्योंकि वो जड़ है। जड़ वस्तु में न तो वह अन्य को प्रकाशित करने की क्षमता है न खुद प्रकाशित होने की क्षमता है। स्वप्ने स्वसत्ते वार्थानम सत्तान्नान्येति निश्चिता, को जागृति विशेषो अस्ति जड़ानम आसुनासिनाम, क्योंकि वही पदार्थ स्वप्न में भी वह सूक्ष्म संस्कारवान जो पदार्थ हैं वह जड़ का संस्कार जड़ ही होगा, तो तुम्हारे प्रकाश के बिना स्वप्न के पदार्थ प्रकाशित नहीं होते, इसी तरह जागृत के ये पदार्थ भी तुम्हारे प्रकाश के बिना प्रकाशित नहीं होंगे। तुम देखोगे कि ये कलम यहां पर है तभी वो प्रकाशित होगा, अन्यथा प्रकाशित नहीं होगा। तुम्हारे प्रकाश से पेन प्रकाशित होता है, अन्यथा पेन प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि जड़ है। आसुनासिनाम, और दूसरी बात यह है कि जड़ पदार्थ जागृत के पदार्थ इतने अनित्य हैं, इतने अनित्य हैं, तो इनकी खुद की सत्ता है यह तो कोई मूर्ख भी कल्पना नहीं कर सकता। जागृत के दिखे हुए पदार्थ इतने अनित्य हैं, आसुनासी हैं, दृष्ट नष्ट हैं। जब आसुनासी हैं, दृष्ट नष्ट हैं, तब फिर कैसे ये कल्पना करते हो कि ये पदार्थ खुद अपनी सत्ता में टिके हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इनको टिकाने वाला कोई और सत्ता है जिसकी सत्ता से ये कुछ टिके हुए हैं, कुछ टिके हुए हैं, वो भी पूर्ण टिकाऊ तो इनकी नहीं है। दूसरे की सत्ता से टिकने पर भी यह पूर्ण इनकी स्थिरता नहीं है, अनित्यता सिद्ध है। तो सत्ता भी तुम्हारी है और प्रकाश भी तुम्हारी है। को जागृति विशेष अस्ति जड़ानाम आसुनाशिनाम। सुरेश्वराचार्य जी श्लोक इस मूल श्लोक की व्याख्या करते हैं। स्वप्ने प्रकाशो भावानाम स्व प्रकाशान नहीं तर जागृत्यपि तथे वेति निश्चिन्वन्ति विपश्चितः। विपश्चित विचार करने वाले व्यक्ति को विचार के माध्यम से यह निश्चय करना चाहिए। ये बिना विचारे निश्चय नहीं होगा, दूसरे के कह देने मात्र से आपको निश्चय नहीं बन पाएगा, आपको खुद विचार करना पड़ेगा तभी जाकर आप निश्चय कर पाओगे। कोई दूसरा कह देगा कि यह जगत का पदार्थ सपने की तरह है, ये कह देने मात्र से निश्चय नहीं होगा। खूब बैठकर खूब गंभीरता से युक्तियों से प्रमाणों से आचार्य वचनों से आप जब खुद विचार करने लगोगे तब धीरे धीरे आपको यही बोध होने लगेगा कि हाँ ठीक कह रहे हैं, श्रुति जो कह रही है ठीक कह रही है, आचार्य जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा ही अनुभव हो रहा है। तब जाकर विपश्चित विद्वानों को विचारवान पुरुषों को ही यह निश्चय होगा कि जागृत का पदार्थ भी स्वप्न की पदार्थ की तरह ही है, उससे भिन्न इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तब जाकर निश्चय होगा। निद्रया दर्शिता नर्थान नपश्यति यथोत्थितः। उसी बात को और स्पष्ट करते हैं। निद्रया दर्शितान अर्थान, निद्रा यानी स्वप्न रूपी निमित्त से दिखाई देने वाले स्वाप्निक पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ वस्तुएं, न पश्यति यथोत्थितान, जगने के बाद स्वप्न में जो पदार्थ जिस रूप में दिखाई पड़ रहे थे वो पदार्थ जगने के बाद उस रूप में दिखाई नहीं पड़ते। स्वप्न में सूर्य दिखाई पड़ रहा था, अब रात्रि का समय है, पदार्थ इतने विरोधाभासी हैं, स्वप्न में आपको सूर्य दिखाई पड़ रहा था और यदि आप स्वप्न में जग गए, किसी निमित्त से गए, कई बार ऐसा होता है स्वप्न देख रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, गर्मी है, इतना गर्मी है कि एकदम शरीर से पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है, और आप छटपटा रहे हैं कि बेचैन हो रहे हैं कि कहीं छाया मिल जाए, शीतल पानी मिल जाए, तो कहीं छाया भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिल रहा था, आप छटपटा रहे थे। उसी समय में किसी कारण से, कई बार ऐसा होता है स्वप्न के दृश्यों से स्थूल शरीर में भी क्रिया होती है, जबकि नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वप्न के दृश्य का सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध है और सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ संबंध होने के कारण तत्संबंध के द्वारा स्थूल शरीर में क्रिया दिखने लग जाता है। कई बार स्वप्न देखने वाला व्यक्ति स्वप्न में संवाद करता है, किसी से बोलता है, तो यूं तो सामान्यतया स्वप्न में वो क्या बोल रहा है जागृत को पता नहीं चलने वाला है, भैखरी के रूप में परिणत नहीं होगा वो।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Manakanjara Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakton, aaj hum sunenge aur ek Nayanmar Yasant ki kahani, jinka naam hai Manakanjara. तमिलनाडु के आधुनिकता आनंद तांडवपुरम का पुराना नाम कंचारूर प्रसिद्ध था। इस कंचारूर में भी सेनानियों के एक प्रतिष्ठित वेलालर या सेनापति कुल में मानकंचारर का जन्म हुआ। इस वंश के लोग नरेशों के सेनापति रहते रहे हैं। मानकंचारर भी एक सुयोग्य और सफल सेनानायक थे, परंतु व्यवहार में विनम्रता से एक प्रतिमूर्ति थे। उनका मन संतों और भक्तों की सेवा में आनंद का अनुभव करता था। शिव भक्तों की सेवा करना इनके जीवन का व्रत बन गया था। मानकंचारूर को चिरकाल एक संतान सुख की कामना थी। कई वर्ष बाद प्रभु कृपा से उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। खूब सौंदर्य में अद्वितीय विविध गुणों से युक्त इस कन्या के घने काले दीर्घ केश उसका विशेष आकर्षण थे। जब कन्या युवा हुई तो अपने संबंधियों में से एक योग्य युवक जिनका नाम एना था, उनके साथ मानकंचारूर की युवती का विवाह निश्चय किया गया। विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई थी। विवाह उत्सव का दिवस आ पहुंचा। विवाह मंडप में आमंत्रित लोग बड़ी धूमधाम से आनंद ले रहे थे। प्रभु शिव तभी स्वयं तपस्वी का वेश धारण कर वहां आ पहुंचे। शरीर में पवित्र भस्म का लेप, उत्तराक्ष की मालाएं और शीश पर जटा समूह सज्जित, उनका वेश उत्तर भारत के शैव मार्गी महावती शाखाओं के संत जैसा था। मानकंचारूर उसे उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनका उन्होंने खूब आदर सत्कार किया। वधू बनी बेटी को भी उनके पास ले गया और आशीर्वाद लेने को कहा। उनकी बेटी के लंबे केश को देखकर मानो तपस्वी आश्चर्यचकित रह गए। महावती मुनिश्रेष्ठ की आंखें नववधु की विशेष केश पर अटक गईं। वे उनकी केश से मुग्ध हो गए। बिना किसी को संबोधित किए हुए मुनि ने विचार व्यक्त किया, श्यामल मेघ के समान सुशोभित यह केश अगर मिल जाए तो हमारी पंचसूत्री पंचवती बनाने के काम आएंगी। साधु की यह इच्छा जानकर मानकंचारूर ने तत्काल अपनी तलवार निकाली और बेटी के सौभाग्य सज्जित केश काट डाले और उन्हें मुनि के कर कमलों में अर्पित कर दिया। लेकिन आश्चर्य, सभी लोगों ने देखा कि महावती अंतर्धान हो गए और आकाश में पार्वती के साथ खड़े शिव स्वयं दर्शन दे रहे थे। कन्या की वेणी का केश यथावत हो गई। प्रथम दृष्टि में इस कथा में कोई अद्भुत त्याग नजर नहीं आता, परंतु ये याद रखें, विवाह मंडप में पधारे मुनिवर की वेशभूषा शैव मार्ग के महावतियों जैसी थी। इस प्रकार के साधु तमिलनाडु के नहीं होते, अपितु इस संप्रदाय विशेष के लोग उत्तर भारत में होते हैं। कन्या के विवाह समारोह में अपने संप्रदाय से बाहर के साधु के आ जाने पर इतना विशेष सत्कार करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु मानकंचारूर ने शिव भक्त के रूप में उनका विशेष आदर सम्मान किया। किसी उत्तर भारतीय साधु द्वारा नववधु की केश मांगने पर उसे तुरंत काट कर दे देना एक तथ्य को उजागर करता है। संत श्रेणी या नायना श्रेणी के ये शैव संत जाति धर्म और क्षेत्र के भेदभाव के ऊपर उठ चुके थे। उनके लिए शिव चिन्ह ही प्रमुख था। उसे धारण करने वाले की जाति धर्म और क्षेत्र से कोई अंतर नहीं पड़ता। पुत्री के केश काटने के साथ ही मानकंचारूर ने मानो अपने समस्त सांसारिक बंधनों को काट फेंका था। स्पष्ट है कि संत अपना सर्वस्व शिव भक्तों की संपत्ति मानते हैं, अतः इनके लिए ऐसी घटनाएं दिनचर्या जीवन की घटनाओं के समान साधारण सी बात है। इसीलिए मानकंचारूर एक उच्च कोटि के संत हैं। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो,
4: The size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
5: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Saivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
0: भजनकर परमात्मा का बोले, नारद जी को कहा मार्कंडेय जी ने, अभी क्या चिंता है भाई, अभी तो बहुत बच्चा हूं, बड़ी लंबी जीवन है, कर लेंगे बाद में भगवान का भजन। ये तो उम्र ही खेलने का उम्र है बेटा। नारद जी क्या चिंता है, खेलने दो। नारद जी ने कहा कि अभी बड़ी उम्र नहीं है, अभी एक मुहूर्त बाकी है। सच कह रहा हूं, तेरा प्रारब्ध समाप्त है। अरे एक ही मुहूर्त है, फिर क्या करे? उसके बाद बोले यमराज आएगा, तेरे को उठा जाएगा, निकालेगा, ले जाएगा, तुझे मरना पड़ेगा। किस चक्कर में पड़ा है तू? बड़ी भारी लंबी आयु, लंबा समय है, लंबी आयु ये कह रहा है, कुछ नहीं। अरे राम राम, तब तो फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर क्या करें? बोलो बचने का कोई उपाय? बोले और कोई उपाय नहीं है। मेरी मां है, मेरे पिता है, भाई बंधु हैं, कोई न कोई तो मदद करेगा ना। उस समय में पृथ्वीपति सूरी ने, महाराष्ट्र के कवि हुए हैं पृथ्वीपति सूरी, उन्होंने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरी बलम कुलम अवति को फिन कालगतम बसम भजतरे मनुज गिरिजा पतिम। अरे मनुष्य, तो इस भरोसे में नहीं रहना कि काल वसम गतम, जिस समय यमराज के वश में जाने का समय होगा, उस समय में न जनको न जननी, यमराज सामने आ जाएंगे तो तेरे बाप भी तेरे को बचाने में असमर्थ हैं। न जनका, तो किसी के भरोसे में नहीं रहना। बोले पिता नहीं बचाएगा, मां तो बचाएगी ना। बोले न जननी, मां भी उस समय नहीं बचा सकती है। भूख लगी हो तो खाना खिला सकती है, लेकिन यमराज सामने खड़े हो, मां कुछ नहीं कर सकती। न चसोदरा, अपना ही बेटा भी कुछ नहीं कर पाएगा, भाई अपना भाई भी कुछ नहीं कर पाएगा। न तनय, अपना बेटा भी कुछ नहीं कर पाएगा। न च भूरी बलम, और लोग कुछ नहीं कर पाएंगे तो बादाम खा के दंडवत पेल कर तगड़ा है पहलवान बनेंगे तब तो बल काम आएगा। बोले न च भूरी बलम कुलम, तुम्हारे शरीर की ताकत भी काम नहीं आएगी। आवति को पिन काल गतम भसम, फिर उस समय में कौन रक्षा करेगा, कौन मदद करेगा? तो कवि ने कहा कि एक ही व्यक्ति है उस समय में, ऐसी अवस्था में तुम्हारी रक्षा करने वाला, रक्षा करने में समर्थ एक ही व्यक्ति है। कौन है महाराज? भजत रे मनुजा गिरिजा पतिम, वह पर्वत पुत्री पार्वती उनके जो पति हैं, गिरिजा पति, गिरि पर्वत, जा पर्वत से उत्पन्न हुई, गिरिजा पार्वती उनके पति शिव, वही समर्थ है, उसके अलावा और कोई समर्थ नहीं। यदि उस समय उनके शरण में गए तो वो तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, और नहीं कर सकते, बस। शायद नारद जी ने मार्कंड ऋषि को वही समझा दिया। तो मार्कंड ऋषि ने कहा कि अच्छा, उनके शरण में जाने के बाद वो रक्षा करेंगे? बोले हाँ, पक्की बात है। तो तुरंत ही खेलना छोड़कर भगवान शिव के शरण में चले गए अनन्य। तो कहते हैं कि वहां जहां खेल रहे थे उस मैदान के बगल में ही एक शिव मंदिर था। खेला छोड़कर तुरंत मंदिर के अंदर घुस गए और शुरू कर दिया प्रार्थना। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। प्रार्थना करना आरंभ कर दिया, तब तक एक मुहूर्त समय निकल गए। नारद जी बाहर खड़े थे, अब देखते हैं क्या होता है। यमराज ने मार्कंडेय ऋषि को कहा कि हे मार्कंडेय ऋषि, तू कहां है? चल अब यहां तेरा खेल खत्म, यहां मृत्युलोक में तेरा खेल अब खत्म, चल बाहर आ। बोले कौन हो? बोले मैं मृत्यु का देवता यमराज खुद आया हूं। चल, अरे ठहरो बाहर, हम अभी पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, बाहर ठहरे रहो। यमराज ने कहा कि आज तक कोई किसी बहाने से नहीं बचा है। टेबल में खाना खाने बैठा हो और यमराज आए, वो बताओ मैं ये थाली का भोजन खा पूरा करूं तब ले जाना, रुका है भोजन पूरा करने तक, और तुम टॉयलेट में बैठे हो और यमराज आ गया, चल खड़े रहो, हम पूरा फ्रेश हो जाएं, नहा धोए तब ले जाना, रुका है वो, कोई बहाना नहीं है, वो आ गया तो आ गया। बोले जल्दी चल, बोले हम नहीं जाएंगे, बस तुम जाओ वापस। बोले हम आए और तू ऐसा कहे, तेरी क्या हिम्मत है? कहते यमराज खुद मंदिर के अंदर घुस गए। महाभारत की कथा है, पुराण की कथा है, महाभारत की कथा है। अब यमराज ने अंकुश और पास दोनों निकाली और अंकुश से स्थूल शरीर के अंदर का अंगुष्ठ परिमाण का सूक्ष्म शरीर को और पास से निकालना शुरू किया, पास फेंक दिया। निकालने के लिए जैसे यमराज ने पास फेंकी, अंकुश का प्रहार किया, मार्कंडेय ऋषि ने वो जो शिवलिंग था उसको पकड़ लिया। शिवा त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् मृत्योर मुक्षीय। इस यमराज से मेरे मुक्ति करो, ये जबरदस्ती कर रहा है, मैं जाना नहीं चाहता हूं, आपके आराधना में लगा हूं और ये जबरदस्ती मुझे ले जाना चाहता है, रक्षा करो रक्षा करो। तो उसी शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। अच्छा, ये जबरदस्ती करता है, तो मेरे शरण में आया और ये जबरदस्ती करे। एक लात उसे यमराज के छाती में प्रहार किया, उसी पर शंकराचार्य जी ने संकेत कर दिया, मारा एक लात तो यमराज मर गया। बक्ष कपाट छटी, देख लो, कठोर यमराट बक्ष। यमराज का हृदय कोमल हो सकता है, हैं? हो सकता है यमराज का हृदय कोमल? 2013 में केदारनाथ में अतिवृष्टि के चलते खंड प्रलय हो गया, तो बूढ़े बूढ़े को भगा दूं, बच्चों को छोड़ दूं, ऐसा कहा यमराज ने? हैं? कहा? अभी अभी नेपाल में भूकंप चला, बड़ा भयंकर तबाह हो गए, बूढ़े बूढ़ों को तो खत्म कर दूं, छोटे बच्चों को छोड़ दूं, महिलाओं को छोड़ दूं, ऐसा कहा है क्या? उसके हृदय में दया तो है ही नहीं। दया हो सकती है यमराज के हृदय में? कठोरता, ये संभव? मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है, कहां आपका चरण नित्य योगी हृदय कमल में, हृदय रूपी कमल में संचरण करने वाला चरण, और कहां वो यमराज का कठोर हृदय में अपने एक प्रहार किया और एक ही प्रहार से यमराज मर गया। ये कैसे संभव हुआ? महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कितना पीड़ा होगी, आपके चरण में कितनी पीड़ा हुई होगी। महाराज, अत्यंतम मृदुलम तवांग्री युगलम, हाय हा हाय है, खेद दुख की बात है। अत्यंतम मृदुलम तवांग्री चरणम, तुम्हारे चरण कमल इतने कोमल है, अत्यंत मृदुलम, मैं मनश्चिंतयति, मुझे तो उस दिन से आज तक, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मुझे तो उस दिन से आज तक, किस दिन से हैं? यमराज के हृदय में जब आपने लात प्रहार की, उस दिन से आज तक मनश्चिंता, यही मुझे तो यही चिंता सता रही है, आपके चरण में कितना कष्ट हुआ होगा। मैं हा मैं मनश्चिंतयति, मुझे तो रात दिन वही चिंता लगती है कि शिव के चरण में कितना दुख होगा। भावना बड़ा विचित्र होता है भाई। अभी एक डेढ़ महीना से ये क्या बोलते हैं इसको, हैं? फ्रोजन, फ्रोजन शोल्डर, इस शोल्डर को फ्रोजन हो गया है ना, जाम हो गए नस मसल्स, कहीं जाम हो गए होंगे ना? अब उसके चलते हाथ मूव करने में, चलाने में कहीं ना कहीं तो खिंचाव आता है। तो हमने यहां आने के बाद मुख से ये शब्द निकल क्या गया, जो आता है इसके इलाज की ही चिंता करता है। कोई बिजली का वाइब्रेटर लेके आ रहा है, कोई मैग्नेट का वो रोलर लेके आ रहा है, कोई गर्म पानी के थैली लेके आ रहा है, हैं? कोई तेल लेके आ रहा है, कोई ऑयल लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है। हे भगवान, जब से आया जिसको पता चला वो कुछ न कुछ उपचार के लिए प्रयत्न कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कराने के लिए आ रहा है, कोई कुछ कराने के लिए आता है। हे, एक चेला है, सुबह कथा करके कमरे में आया नहीं कि गुरु उठिए एक्सरसाइज करिए, दिन में चाय पिया नहीं कि एक्सरसाइज करिए। अब कमरे में पहुंचोगे तो वो फिर कहेगा स्वामी जी एक्सरसाइज करिए। कितनी चिंता है देखो भक्तों को, मुझे उतनी चिंता नहीं, इनको चिंता है, है कि नहीं बोलो, भावना ना है, भावना ना है। इस शोल्डर के फ्रोजन से मुझे इतनी चिंता नहीं है, और दूसरे लोग बहुत चिंतित हो गए, स्वामी जी को कितना कष्ट हुआ होगा, कैसे ठीक करें, तेल लगाकर ठीक करें कि एक्सरसाइज करके ठीक करें कि वाइब्रेटर करके ठीक करें कि है। हे भगवान, तो शंकराचार्य कहते हैं कि महाराज ये भक्तों का तो ये हाल है तो मेरा क्या हाल होगा, तो मैं क्यों नहीं चिंता करूं बोलो। उस दिन से मैं आज तक यही चिंता कर रहा हूं कि आपके चरण में कितनी पीड़ा हुई होगी। अत्यंतम मृदुलम तदंग्री युगलम, तत् माने आपके चरण कमल अति कोमल हैं और यमराज का वक्षस्थल अति कठोर है। ऐसे कठोर हृदय में आपने इतनी कोमल चरण से प्रहार किया तो आपके चरण में कितनी पीड़ा हुई होगी महाराज। ये तत् लोचन गोचरम कुरु विभो, हे विभो, मुझे एक बार जिस चरण से यमराज का वक्षस्थल प्रताड़न करके फोड़ा था, नष्ट कर दिया था, मुझे एक बार दिखाइए तो सही, क्या कितना घाव हुआ है, स्वेलिंग हुआ है कि नहीं, सूजन आया है कि नहीं। लेकिन तब से फिर मैंने आज तक आपके वो चरण देख नहीं पा रहा हूं, एक बार दिखा दीजिए, मैं एक्यूप्रेशर जानता हूं। शंकराचार्य जी कह रहे हो मेरे पास उसकी उपाय है, ट्रीटमेंट है, हैं? ये भी वो एक बार दिखाइए तो से। एतद लोचन गोचरम कुरु, मुझे एक बार दिखा दीजिए, मैं आपके चरण में यदि सूजन आया हो, फ्रैक्चर हुआ हो, क्रैक हुआ हो, कुछ घाव हो गया हो, कुछ छिलछाल गया हो, तो हस्तेन संभा है, हस्तेन संभा है, मैं अपने हाथ से आपके उस चरण की मालिश करना चाहता हूं। कौन कह रहा है ये बात, किसके चरण की बोलो, क्या भाव है, क्या भाव है, है? और मैं मालिश करूंगा तो आपके जो चरण में यमराज के छाती में प्रहार करके जो आपको पीड़ा हुई है, बड़ा आनंद आएगा महाराज। मैं ज्यादा दबाऊंगा नहीं, है? मैं कुछ दो चार पॉइंट जानता हूं, एकदम भी कर दूंगा, एक बार दिखाइए तो सही। हस्तेन संबाहे, और दूसरी बात है, मेरे हाथ छोटे हो सकते हैं, आपके चरण बड़े हो सकते हैं, कुछ नहीं तो शायद हाँ वो था ना बाणासुर, जिसके सिर्फ दो हाथ थे और शिवजी की तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न करके शिवजी से ये वरदान मांगा कि महाराज मुझे 1000 हाथ दे दो, ये दो हाथ आपकी सेवा में कम पड़ रहे हैं। मान लो शंकराचार्य जी ये कह रहे हो कि मेरे हाथ कम हो तो मेरा चेला बाणासुर है उसको भी बुला लूंगा, महाराज एक बार चरण दिखाइए तो सही, और क्या है, दिखाइए तो सही, ये भक्ति का भाव है महाराज है। शिव जी के चरण को आप क्या दबाओगे, पाताल जिसके पांव हैं, ब्रह्मलोक जिसके सिर है, ऐसे विराट पुरुष का आपके क्षुद्र हाथ क्या सेवा करेंगे। फिर भी आपकी भावना तो है ना, फिर भी आपकी भावना है, आपका छोटा पोता नाती जिस समय आप कहो कि यह मेरा तो आज कमर में बहुत दर्द हो रहा है, और उस समय उसने देखा कि कभी कभी जब दर्द होता था तो उसकी मां आयोडेक्स लाकर उसके बाप के कमर में मलती थी, उसने देखा था, और उस दिन उसकी मां घर में नहीं है, तो आपका पोता क्या कहता है पता है, दादा मैं मालिश कर देता हूं। तो क्या उसके हाथों की मालिश से आपका कमर का दर्द जाएगा। मानो कि उस पोते का ये कहना आपके लिए प्रसन्नता का कारण बन जाएगा, दर्द जाए चाहे न जाए, क्या भावना है, इतना छोटा है लेकिन भावना कितनी विशाल है, मेरे कितनी हित की चिंतन करता है ये। आपकी प्रसन्नता का कारण बनेगा कि नहीं, और आप नहीं करोगे तो भी जबरदस्ती वो आके मालिश करेगा, तो शाम को जब पत्नी आएगी तुम्हारी, बेटा आएगा तुम्हारा, कहोगे आज इसने मेरी मालिश कर दी है, तब कमर में तेल लगा के मूव लगा के उसकी प्रशंसा करोगे कि नहीं, ये तो भावना के साथ संबंध है, भक्ति भाव है महाराज, क्या सुंदर भाव है। नित्यम योगी मन सरोज दल सन चारक्षम त्वत्क्रम शंभो तेन कथम कठोर यमराट वक्ष कटाक्ष क्षति कवाट क्षति अत्यंतम मृदुलम त्वदंग्री युगलम आमे मन चिंतयत् ते तत् लोचन गोचरम कुरु विभो। एक बार दिखा तो दो, हस्तेन संबाहये मैं अपने ही हाथ से मालिश करूंगा आपके चरणों की, और शायद मेरे मालिश करने से आपके चरण की जो पीड़ा है, यमराज के छाती में प्रहार करते समय जो दर्द हुआ है, अवश्य जाएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। ये श्लोक भी लगभग उसी तरह का है, ये दूसरा श्लोक भी 80वां नंबर का। यस्य तेस जनिम मनोस्य कठिनम तस्मिन् नटा नीतिमत् द्रक्ष्यायै गिरिशीम निकोमलपद न्यास पुराभ्यासितः। भगवान शिव कैलाश की चोटी में अपने पांव से चल के जाते हैं। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि वो क्यों आप जबरदस्ती पहाड़ की चढ़ाई करते हो महाराज, कोमल पदन्यास और इतनी कोमल आपके चरण हैं और पहाड़ की चोटी पर कठोर पत्थर हैं, वहां चट्टान के चट्टान है, ना आपके चरण में जूते हैं ना चप्पल है, और नंगे पांव क्योंकि दिगंबर हो, बोलो जो शरीर में लंगोटी भी नहीं लगाएगा तो पहाड़ की चढ़ाई करते समय जूता पहनेगा क्या? बोलो जो शरीर में लंगोटी भी नहीं लगा रहा दिगंबर है वो क्या पहाड़ की चोटी में चढ़ते समय जूता पहन के चढ़ेगा? नंगे दिगंबर है वो, कहां वो पहाड़ के चट्टाने, वो पत्थर कठोर, कहां आपके चरण बहुत कोमल। फिर भी आप उन्हीं पत्थरों में नित्य निरंतर विचरण करते हो। मुझे तो लगता है आपने ये सोच रखी है, मेरे जन्म से पहले आपने ये सोच रखी है कि ये संसार में जन्मेगा, पैदा होगा, जन्म लेगा, और इसका हृदय नरम तो होगा नहीं, कठोर होगा। जीवों का हृदय तो कठोर होता ही है ना, मेरे कहां कोमल चरण और कहां इसके कठोर हृदय, और कदाचित इसने मुझे बुला ली, पुकार लिया, ये कठोर हृदय वाला ने संसार में, मुझे तुरंत उसके हृदय में जाना पड़ेगा। और कहां मेरा चरण कोमल, कहां उसका हृदय कठोर, जब बाद में उसके कठोर हृदय में मुझे चलना है तो क्यों ना अभी से रिहर्सल करूं। ये सच बात कह रहा हूं मैं, भगवान ने ये सोचकर बाद में इसके कठोर हृदय में मुझे चलना है, अभी से कठोर पत्थर में चल के कठोर हृदय में चलने का अभ्यास करूं करके आपने वो अभ्यास किया है, समझे कि नहीं? कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं ना, जो निश्चय करते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना, मैं ही प्रेमपुरी आश्रम में ही कथा कर रहा था तो हमारे डॉक्टर अतुल भाई मजुमदार, उन्होंने निश्चय किया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा करनी है, तो फॉर्म भर लिया, बहुत पहले की बात है, फॉर्म भर लिए तो दिल्ली से स्वीकृत हो गया, सेलेक्ट हो गए, वो जाने के लिए चिट्ठी आ गई कि फलाने ग्रुप में, नंबर के ग्रुप में आपको जाना है, आप तैयार होइए। चिट्ठी प्राप्त होने के बाद से डॉक्टर मजुमदार जी सुबह घर से वो जो स्पोर्ट शूज पहनकर सुबह से घर से पैदल चल के श्री रोड से वहां हैंगिंग गार्डन घूम के फिर दौड़ के आते थे, फिर जाते थे, तो आके मुझे कहते थे स्वामी जी अब कैलाश मानसरोवर जाना मेरा पक्का हो गया, मैं इस पहाड़ की चढ़ाई करने का अभ्यास कर रहा हूं, इसे अभ्यास कर रहे हैं, और ताकि पहले से अभ्यास करोगे तब ना वो कैलाश की जो परिक्रमा आसान से हो पाएगी। ये केवल मजुमदार की कथा नहीं है, हर कैलाश की यात्रा करने वाले इस प्रकार से पहले अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं। ये बात शंकराचार्य जी या शिव जी से कह रहे हैं, नहीं तो तुमको क्या पड़ी है कि वो कैलाश की चोटी के इतने कठोर चट्टानों में नंगे पांव घूमने का क्या जरूरत है? कहां आपके कोमल चरण, कहां इस पहाड़ों की कठोर चट्टाने और वहां आप क्यों विचरण कर रहे हैं? मुझे तो लगता है

0: और यहां आने के बाद इसका मन कैसा होगा? मनोस्य कठिनम, जरूर कठिन होगा, इसका मन कठोर होगा। और तस्मिन अटानीति, उसके मन में मुझे चलना पड़ेगा। मद्रक्षा ये, और मेरे हृदय में आए बिना आप मेरी रक्षा कर भी नहीं पाओगे। जब वो मृत्युंजय महादेव त्राहिमं शरणागतम कहेगा तो उसकी रक्षा के लिए मुझे उसके हृदय में पहुंचना पड़ेगा। मद्रक्षा यही गिरिसीमनी, पहाड़ के चोटी, गिरि माने पहाड़, सीमनी माने चोटी, गिरिसीमनी कोमल पद न्यास पुराभ्यासिता, आपने पहले से ही उस चढ़ने का अभ्यास कर रखा है। नोचे यदि यह प्रयोजन न होता, दिव्य गृहांतरेषु सुमनस्तल्पेषु वेद्यादिषु है, अन्यथा आपके लिए क्या कमी थी? किसी बढ़िया घर बनाकर उस घर के अंदर बढ़िया एक तख्त लगाकर, मंच बनाकर, उन मंचों के ऊपर बढ़िया बढ़िया गुलाब के और कमल के फूल बिछाकर, उस फूल के ऊपर चढ़कर आप नृत्य करते तो हर्जा क्या था? क्या आपको संभव नहीं था वो करना? कमल के फूलों की कमी होती है शिव जी को? वो चाहते मेरा कोमल चरण है, तांडव नृत्य करना मुझे जरूरी है, ये कठोर पत्थर में मैं क्यों करूं? एक बढ़िया स्टेज बनाऊं, बढ़िया बढ़िया फूल लाकर उसमें बिछाऊं, पुष्पेशु तल्पेशु, फूलों के चादर बनाकर फूल बिछाऊं और फूल के ऊपर मैं नाचने करकर अभ्यास करूं, ये तो आप कर ही सकते थे। फिर वो पहाड़ों में क्यों चढ़ना पड़ा? वहां जाकर क्यों नाचना पड़ा? जरूर यही सोचकर कि ये पैदा होगा, इसके हृदय में फूल कहां मिलेंगे, और इसका हृदय कठोर है, और उस हृदय में मुझे विचरण करना है। पहले से ही इसी कठोर पहाड़ में चढ़ के अपने पांव को उसी प्रकार का बनाओ ताकि उसके हृदय में विचरण करना कोई कष्ट न हो। नोचेत दिव्य गृहांतरेषु सुमनस्तल्पेषु वेद्यादिषु प्राय सत्सु शिलातलेषु नटनम शंभो किमर्थम तव, अन्यथा ये शिलातलेषु नटनम किमर्थम, क्या प्रयोजन था? तांडव नृत्य करना था तो घर में ही बढ़िया स्टेज बनाकर बढ़िया डल्लभ का गद्दा लगा के वही अभ्यास करते, नंगे पांव से पहाड़ों में नाचने की क्या जरूरत थी? बड़ा सुंदर भाव है, और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे भाई। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।

गुरु श्लोक नंबर 8। कल हम विचार कर रहे थे उसी संदर्भ में। अब श्री पुष्पदंत जी परमात्मा के जो वैभव है सगुण साकार का वर्णन हुआ तो वर्णन में उनके जो वैभव है उसका वर्णन उसके साथ ही आ जाता है। अमुक अमुक व्यक्ति है तो वो कुछ विशिष्टता से जानी जाती है। पहले के जमाने में हम बोलते थे कि कोई बड़ा कोट पहनते थे यहां तक का हमारे दादाजी, तो ऐसे चप्पल ऐसी मोजड़ी पहनते थे, ऐसा हार रखते थे गले में, ऐसी इस प्रकार की टोपी रखते थे, पगड़ी पहनते थे, हाँ तो ऐसे जाने जाते थे श्रेष्ठी। ये तो श्रेष्ठियों की भी श्रेष्ठि है, तो ये परमात्मा को पहचानेंगे कैसे, ये रखते क्या है, उनका वैभव क्या है। तो कहते हैं मोक्ष खटवांगम, नंदी कहते हैं, नंदी जी खटवांग परशु यानी फरसी कहते हैं जिसे, अजीनम मृग चर्म भस्म रखते हैं, और फणिन सर्प, इतने उनके आभूषण है, उनका ये वैभव है। तो ये जो बातें हैं वो हमें दो तीन बातें सिखा के जाती है। देखिए जब अतद व्यावृत्ति यानी अंतिम पढ़ाया जाता है, और अतद व्यावृत्ति का ज्ञान गुरु भी 5, 6, 10 साल तक शिष्य रहे और लगा कि अधिकार है, साधन बराबर बनाए रखा है, तो कभी समझाते हैं हमारे कान में वो शब्द पढ़ते हैं, बहुत विरल और दुर्लभ है। और ये विरल और दुर्लभ बातें करने के बाद ये बातें की जाती है, यानी उसका सिर्फ इसका ट्रांसलेशन ही कर दिया उतना महात्म्य नहीं हो सकता है। स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी और कई जो भी गुरुजन है संत है उन्होंने इसके ऊपर जो भी व्याख्याएं दी है उनमें कई अर्थ भी निकाले गए हैं। देखिए कहा जाता है कि 7 जो प्रकृतियां हैं, 7 जो तत्व है, उससे ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है परमात्मा के उपादान कारण। देखिए ये उत्पत्ति है विशिष्ट है तो उपादान कारण भी विशिष्ट होंगे। आपको सब रोटी बनानी है, पूरी बनानी है, उपादान कारण क्या है, तो बोले गेहूं लेके आए, हाँ लोट बना दिया और बना दिया, वो क्या है स्थूल उपादान, रोटी भी दिखती है और ये उपादान कारण भी दिख रहा है। यहां हम जब कहते हैं कि उत्पत्ति रज्जु सर्पवत है, उत्पत्ति बीज अंकुरवत है, सब परमात्मा का ही झुंबण है, तो उसका जो उपादान कारण है उसमें ऐसे ही गुण होने चाहिए जिससे परमात्मा का जो वैभव है अकर्ता वैभव वो बना रहे, परमात्मा का जो अनाम अरूप जो वैभव है वो भी बना रहे और उत्पत्ति भी हो। और इसे हमारे शास्त्र में विवर्त उत्पत्ति कहते हैं। विवर्त यानी दिख तो रही है उत्पत्ति, जन्म दिख रहा है, पर वो क्या है, वो हकीकत में नहीं है, अमुक देश अमुक काल से सीमित ही वो वस्तु दिख रही है। और विवर्त जो कारण है उसकी और एक विशिष्टता क्या है कि भाई वो जो अपना कारण जो है वो उत्पत्ति तो करता है पर अपने में कोई भी परिवर्तन किए बिना उत्पत्ति होती है, ये विवर्त उत्पत्ति है। तो दूसरी क्या है, दूसरी परिणामी कारण है, परिणामी उत्पत्ति है। परिणामी यानी क्या, तो बोले कि रात को दूध है, दूध में थोड़ा अपने जमाने के लिए दही डाल दिया तो क्या हुआ, उसका परिणाम आ गया, उसमें दूध जो है वो अपनी कंसिस्टेंसी जो तरलता है वो खो देगा और थोड़ी स्थूलता आ जाएगी। तो ये विवर्त और परिणामी, कहने का तात्पर्य कि अगर परमात्मा में से ही उत्पत्ति मानने के लिए हम तैयार हो गए हैं तो उनकी उपादान कारण की विशेषता होनी चाहिए। और ये 7 जो चीजें कही गई है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, किसे दिखा रही है, तो बोले कि मानो ये 7 प्रकार की जो प्रकृति जो है परमात्मा की जिससे ये उत्पन्न हुआ है। तो किससे उत्पन्न हुआ है, तो बोले पहले तो प्रथम पुरुष ये परमात्मा, फिर पुरुष के साथ उनकी प्रकृति आती है, फिर सूक्ष्म तन्मात्राएं आती है, फिर
पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच प्राण और महत तत्व, ये सब शब्द जो है, और इसीलिए प्रकरण ग्रंथ में ये सब पढ़ाया जाता है। तो ये पुरुष, प्रकृति, पंच प्राण, पंच इंद्रिया, महत तत्व और पंचभूत, ये सब मिल के क्या होता है, ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अब पुरुष जो है वो आंख से दिख रहा है, क्या है, सूक्ष्म है, तो ये सब प्रकृति में जो सूक्ष्मतया अनुस्यूत है वो पुरुष ने किया, वो काम अनुस्यूत होने का। भाई सूक्ष्म भाग जो है, नहीं दिखने वाला भाग जो है, नहीं समझने वाला भाग जो है, उसे मैं संभाल लेता हूँ, क्योंकि वो कोई भी स्थूल जो है वो ये संभाल नहीं सकता। प्रकृति ने क्या किया, प्रकृति यानी माया, त्रिगुणित्म का माया, माया ने क्या किया, माया ने कहा कि मैं अपना पार्ट, में अपना रोल, कभी भी देखिए हमारे यहाँ भी ज्ञान यज्ञ या शिविर होती है तो कमिटी होती है, तो कोई किचन को देखता है, कोई स्टेज की व्यवस्था देखेगा, कोई ये देखेगा, तो इस प्रकार सब ने अपना अपना किया। तो ये पुरुष जो है अस्थि भाति प्रिय रूप सब में अनुस्यूत होने के लिए तैयार हो गए। प्रकृति माया ने क्या कहा कि भाई मेरे पास तीन चीज है, सत्व, रजस और तमस, तो सत्व, रजस और तमस रूप में मैं सब में अनुस्यूत हो जाऊंगी। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे ही आप नहीं अनुस्यूत हो सकते, सबके कर्म के फल के अनुसार उतनी ही मात्रा में आप प्रवेश कीजिए। इसीलिए हमें मिलता है कि कोई एकदम तामसिक है, हाँ, कोई एकदम राजसिक है, दो मिनट भी बैठ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और कोई एकदम परम सात्विक है, तो कोई कभी थोड़ा तामसिक। देखिए सत्व, रजस और तमस का मीटर पहले से ही फिक्स करके भेज दिया है, और इसी से हमें पता लगेगा कि माया परमात्मा के अधीन है। मैया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मायाम तु प्रकृतिम विद्धि माइनम तु महेश्वरम, ये माया से पार उठना है तो जो महेश्वर है, जो आत्मा है, ब्रह्म है, परमात्मा है, उसे आपको जानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका प्रारब्ध रूपी मीटर लेके आए हैं ना, इतना सत्व, इतना रजस, इतना तमस, इतना ही काफी नहीं है। कब, कौन सी क्षण में, कौन से देश में, कौन से काल में कितना सत्व, रजस और तमस का कंसंट्रेशन बढ़ता है, घटता है, वो पहले से ही फिक्स करके परमात्मा ने रख दिया है। जितना हम जिएंगे उतने तरह, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, अब ये तो फिक्स करके ही आए हैं, कर्मफल भुगतना ही पड़ेगा। तो इज देयर एनी वे आउट, तो बोले हाँ, किसे मिलना पड़ेगा हमें, माया के बाद वाली जो भी चीज हम कह गए, जो महत तत्व है, जो पंच महाभूत है, दूसरी जो इंद्रिया है, प्राण है, वो तो बाद में आ गए, तो माया के बाद वाले को आप मिलेंगे या माया के पहले वाले को, माया के कारण को मिलेंगे, किसके किसको मिलने से काम बनेगा अपना। हमें क्या करना है, प्रारब्ध वशात सुख दुख आते रहते हैं, सत्व रजस तमस में हम घूमरते रहते हैं, कैसे, ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया, ऐसे घूमना फिरना बंद करना है। तो मिलना है किसे, पहले पुरुष है, फिर माया है, और फिर मैंने जो बता दिया वो है, अब किससे मिलने से काम हो जाएगा वो बता दीजिए। हाँ, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ज्ञात्वा तम मृत्यु मत्येति, ये मृत्यु यानी ये माया, हर क्षण हम मरते हैं, वो मृत्यु तो अच्छा होगा, यहाँ तो हर क्षण मरना है। हाँ, तो ज्ञात्वा तम, वो ज्ञान प्राप्त करने से, और इसीलिए कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन जी को संकेत दे दिया कि मैं भ्रामयन करने वाला कौन है। पहला वाक्य सुन लीजिए, ईश्वर सर्वभूतानाम, ये इनडायरेक्टली बता दिया। देखिए परमात्मा डायरेक्टली नहीं बता दे सकते कि मुझे मिल लो तो इस भ्रम, आपका भ्रमण बंद हो जाएगा, ऐसा श्लोक में क्यों नहीं कहा कि ईश्वर को जानने से माया का भ्रमण बंद होगा, ऐसा श्लोक नहीं है। मैं सब में बैठा हूं और घुमा भी रहा हूं, तो ये सूक्ष्म बुद्धि लगानी है यहाँ कि भाई ये घुमाना बंद कौन कर सकता है, जो घुमा रहा है यही बंद कर सकता है, तो उसे पकड़ लीजिए, उसे जान लीजिए। नहीं तो परमात्मा ने नहीं कहा होगा कि अपि चेदसि पापेभ्यः, ऐसा नहीं कहा होगा, सर्व ज्ञान प्लवे नैव, और वो जो कर्म जो है, यथे धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, ये हमें इंडिकेशन मिल गए हैं। तो ऐसे जो आप पुरुष है, वो पुरुष आप ही जगत की, यहाँ प्रस्थापित आप क्या करना चाहते हैं, भाई उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण एकमात्र ये महेश्वर, एकमात्र ये परमात्मा है,
उपादान भी उन्हीं में से आया है, यही बताना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा के पास उनका जो पौरुषत्व जो है, पौरुषत्व यानी उनका जो अस्थि जो है, सत्य चित और अनंतता है, जो वो अनंतता का प्रभाव ये है। देखिए एक पुष्प भी है ना, यहाँ एक पुष्प ये आपको दिख रहा है ना, उसका प्रभाव नहीं है क्या? हाँ, उसका क्या प्रभाव है? पुष्प अपने साथ क्या लेके आया, उसका प्रभाव क्या है? सुगंध आप तक नहीं पहुंच सकती, रूप तो पहुंच सकता है ना, उसका प्रभाव है। ये उसका प्रभाव क्या है? ये चीज आपका ध्यान खींच रही है, वो उसका प्रभाव है। हर चीज अपनी प्रभाव को लेके आता है। तो परमात्मा का प्रभाव क्या है? सत चित और आनंद जो स्वभाव है उनका प्रभाव है। सत्व रजस और तमस रूपी जो माया जो शक्ति जो है वो उनका प्रभाव है, और वो उनके साथ चला आता। हम क्या समझते हैं कि यहाँ एक ब्रह्म है, कुछ निकला माया जैसा और सृष्टि हो गई, ऐसा नहीं है। ये प्रभाव का कारण है। हाँ, कर्म जो होते हैं प्रभाव से होते हैं। आप किससे प्रभावित होके उनसे खींचे चले जाते हैं और अप्रभावित होके वापस आते हैं। प्रभाव तो दोनों में है। वहां जो है वो रिजेक्शन का प्रभाव है, वहां जो है अट्रैक्शन का प्रभाव है। प्रभाव तो हम में भी है। जड़ वस्तुएं अभी हमें अट्रैक्ट करती है। शोकेश में देखते हैं तो चीज अट्रैक्ट नहीं करती है क्या? हाँ, जागते हैं, अच्छा लगता है, खरीदते हैं, तो वो जड़ चीज, शोकेश में पड़ी हुई जड़ चीज भी हमारे पूरे संगात को खींच सकती है। जो हम किसी का नहीं सुनने वाले वो चीज हमको सुना देती, वो हमको घर में से निकालती है बाहर, चलो आओ मेरे पास और मुझे ले लो। ये चीज का, ये जड़ चीज का प्रभाव है। सुनिए, ये जड़ चीज इतना प्रभावित करके आपको घर में से खींच लेके वहां ले जाती है। हाँ, सात्विक बुद्धि है तो आपको क्या खींचेगी भाई? ऐसे प्रवचन है, सत्संग है, भजन है, दर्शन है, खींच के चली लाती है। तो ये सब जड़ चीजें भी आपको खींच सकती है, तो वो परम पुरुष परमात्मा का जो प्रभाव है क्या हमें नहीं खींचेगा? और उसी की शक्ति यहाँ हो रही है। तो ये समझ लीजिए कि ये पुरुष के बाद का जो है वो परमात्मा का प्रभाव है, उसकी आभा है। एक गुलाब का फूल ले लिया तो सौंदर्य उसका प्रभाव है, ऐसे ये परमात्मा का एक किरण निकला, ये प्रकृति है, एक वहां से इंद्रिया बन गई, यहां से पंच महाभूत, यहां से तन्मात्रा, यहां से महत्तत्व, और कुछ ऐसा लगा प्रभाव का जो फीलिंग जो है, गुलाब के फूल को देखा, उसका जो प्रभाव है, उसका जो महिमा है वो सौंदर्य। तो सौंदर्य देखने के बाद आपके भीतर जो हुआ वो गुलाब का अनुभव है। सौंदर्य होने के बाद क्या अनुभव हुआ कि भाई सुंदर है? अभी वो सुंदरता वो गुलाब है नहीं, आप उसे बोल सकते हैं नहीं। ऐसे परमात्मा प्लस ये जगत रूपी प्रभाव, वो हमें जो भी कुछ फीलिंग हो रहे हैं वो है। हम कहते हैं मैं देख रहा हूं, तो देखना उसका प्रभाव है, अब उसको पकड़िए। सुनना श्रवण शक्ति वो प्रभाव है, बोलना प्रभाव है, खाना प्रभाव है, जाना उसका महिमा है। तो ऐसे आप धीरे धीरे करके परमात्मा मई धीरे धीरे होने लगेंगे। कैसे होने लगेंगे? जान लिया कि ये सब जो है वो वही पर, मेरा स्रोत जो है वो यही परमात्मा है, ऐसा जानना जरूरी है। और इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, मिले हुए हैं कि भाई ये जाने, ये प्रक्रिया में हम प्रवेश करें। ये प्रक्रिया है, ये साधन है, ये विधि है। दूसरी कौन सी बात श्री पुष्पदंत जी हमें बताना चाहते हैं कि श्री शिवजी जो है वो कहते हैं कि देखिए, जगत की कोई भी ऐसी चीज नहीं है, नाम रूपात्मक कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका प्रभाव मुझ पे है। ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हमारे इर्द गिर्द आ गए कि ये सब चीज कोई हमें भी देगा, कोई नंदी जी आके हमें भेंट कर देंगे, कोई सर्प भेंट कर देगा, हाँ कोई भस्म देंगे, तो ये क्या, ये साथ में से एक चीज भी ऐसी है जिसकी आपको वासना या कामना या आसक्ति हो? नहीं, डर लगता है। वासना कामना आसक्ति तो बात जाने दीजिए, कोई फर्शी आके दे दे तो, खटवंग आके दे दे तो। ये चीजें ऐसी नहीं है कि जिसे आपका मन वहां लग जाए और इच्छा हो। यहाँ ईश्वर परमात्मा इतना ही बता रहे हैं कि भाई कोई भी चीज की इच्छा वासना, एक कण की भी, मिट्टी की भी वासना इच्छा मत रखिए। एक चीज, एक विषय भी ऐसा, एक विषय ऐसा सेवन नहीं कीजिए जो वासना से आप वहां जाके आपका मन वहां लग के आपको लाना पड़े। मैं ऐसे विषयों को मेरे साथ रखता हूं जो
उनसे मैं वासना से प्रेरित नहीं हुआ हूँ, ये मेरी प्रकृति में से ही उत्पन्न हुए हैं, मैं उनसे अलिप्त हूँ। और क्या कहना चाहते हैं कि मेरा वैभव भले ऐसा हो जिसकी कोई इच्छा भी न करे। नंदी तो अभी भी बराबर है, उसके बाद वाली जो बात है वो फणी न कोई सर पाके दे दे तो बोले कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे मैं आसक्त हूँ। और सुन लीजिए कि मेरे पास मेरा जो कुछ भी वैभव है वो ऐसा वैभव है जिससे होने या न होने से आपकी जो आपका जो महिमा जो है, आपका जो रहना है, आपका जो अस्तित्व है, उसमें कोई भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ सकता। और एक बात है कि मेरे वैभव को देख के मेरे बारे में कुछ भी सोचना नहीं, मैं पहले से ही कैसा हूँ, मैं पहले से ही अवांग अमनस अगोचरम हूँ। हाँ, मेरा वर्णन नहीं किया जाता, यानी परमात्मा इनडायरेक्टली बता देते हैं कि मेरे नंदी जी को, मेरी फर्शु को, मेरी भस्म को देख के मेरे बारे में कुछ भी अनुमान नहीं लगाना, ऐसा परमात्मा कहते हैं। कोई सृष्टि आ गए, उनके जो बाहर के रूप है वो बग्गी में से उतरे, आज के जमाने में वो कार में से उतरेंगे, तो उनके जो हलन चलन है उससे हम जो व्यवहार में क्यास लगाते हैं कि ये ऐसे ऐसे होंगे। ऐसे शिव जी कहते हैं कि मेरे बारे में अगर मेरे रूप को, विशेषणों को देख के मेरे बारे में आपने कुछ भी सोचा तो आप गलत ही ठहरेंगे, गलत ही पड़ेंगे। और दूसरी बात है कि मैं अवांग अमनस अगोचरम हूं, इतना बताने के लिए। और दूसरी बात है कि मेरा जो वैभव जो है उसके बारे में भी कुछ बोला नहीं जा सकता। आप नंदी जी के बारे में क्या बोलेंगे, आप भस्म के बारे में क्या बोलेंगे, आप सर के बारे में क्या बोलेंगे? बोलना नहीं आता, क्या है, वाणी रुक जाती है और मन विचार में चढ़ जाता है कि ऐसा। तो बोले कि मेरा जो बाहर का भी स्वरूप है वो इतना आश्चर्यमयी है, ये दिखाने के लिए कि मैं आश्चर्यों का आश्चर्य हूं, इसलिए मैंने मेरा बाहर का वैभव भी ऐसा ही कुछ विशिष्ट रखा है कि आश्चर्य होना शुरू हो जाए, आश्चर्य होने की प्रैक्टिस आपको मेरे रूप से ही हो जाए। तो मैं जो आश्चर्य को लेके बैठा हूँ, परम आश्चर्य है जिसका अनुभव आपको करना है, वो जब आपके पास आने लगे, वो अनुभूति आप करने लगे, तब आपको वो अनुभूति में थोड़ी सरलता आ जाए। मैं मेरे रूप से ही प्रैक्टिस दे रहा हूँ। इतनी बहुत सुंदर बातें। और ये देखो, ये जब परमार्थ चलता है ना, तो परमात्मा को जो इच्छा होती है अपने आप से वो अपने अर्थ निकाल लेते हैं। तो कई कई संतों, बड़ी विभूतियों ने ये सब अर्थ निकाले हैं। ये अर्थ से हमें इतना ही समझना है कि बाह्य वैभव हमारे काम का नहीं है, उससे परमात्मा का मिलना या नहीं मिलना अपेक्षित नहीं है। दूसरा, ये वैभव है जो आप मन वाणी वहां तक नहीं जा सकती, और मन और वाणी दूसरा ऐसा है कि मन और वाणी प्रवृत्त होने की कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं। कोई एकदम, मैं अगर एकदम सुंदर वस्त्र पहनूं या ऐसा कुछ विशिष्ट मेकअप कर लूं तो आपको जानने की उत्सुकता होगी कि ये क्या करके आए हैं आज। मेरे आधा प्रवचन तो आपके विचार में ही चला जाएगा, हाँ, आप सोचते रहेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं मेरा वैभव भी ऐसा रखता हूँ कि एक क्षण के लिए भी नाम रूपात्मक वृत्ति जो है वो आपकी न बने। जीवन ऐसा जीना कि हमारी वृत्ति भी नाम रूपात्मक न बने, ऐसे उसका कारण नहीं है कि फटे हुए कपड़े पहनो के ऐसे ऐसे घूमो, ऐसा नहीं कहा है शास्त्र ने, पर जरूर है उतना बनो सजो, जरूर है। वृत्ति बदलनी चाहिए, मेरे तैयार होने में मेरी भगवद आकार वृत्ति जरा भी यहां से यहां हिलनी नहीं चाहिए। और तैयार हमें ऐसे होना है, बाह्य हमारा वेश ऐसा रखना है कि सामने वाला जब मुझे मिले तब उसकी भी जो वृत्ति जो है वो भगवद आकार टूटे नहीं, उसकी भी वृत्ति नाम रूपात्मक न हो। आप कुछ ज्यादा ही करके आएंगे और सामने वाली व्यक्ति में उसका अभाव होगा, वह उसके पास वो कम चीज होगी तो उसे मन हो जाएगा। आप ऐसा कुछ नहीं कीजिए जिससे सामने वाले का मन वो लेने में कह रहे भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये वैभव नहीं है। ऐसा सामने वाला का मन
थोड़ा भी विक्षिप्त हो जाए ऐसा आप कुछ भी नहीं कीजिए। ऐसी बहुत सारी सुंदर, ये तो चलती ही रहेगी, बहुत सारी सुंदर बातें यहाँ पुष्पदंत जी बता रहे हैं। हमें इतना ही समझना है कि ये न केन प्रकारेण परमात्मा की कोई भी विभूति है वो मेरे आनंद का कारण बननी चाहिए, इतना पर्याप्त है। श्लोक नंबर 9, एक साथ आप गान कीजिए। ध्रुवम कश्चित सर्वम सकल

0: तस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मित इव स्तुहि जिह्वेमि त्वाम् न खलु ननु दृष्टा मुखरता।
1: बहुत सुंदर कहते हैं, यहाँ कहते हैं ध्रुवम कश्चित सर्वम, कोई कोई सांख्य या योग दर्शनकार है, फिर से मतवादियों की बात कर दी, संप्रदाय की बात कर दी कि कोई और संप्रदाय और वादियों से हमें क्या समझना है कि अष्टमूर्ति ब्रुद पृथ्वी से लेके पुरुष तक जो जहां रुक गया वहां थोड़े और रुक गए और कुछ बन गई बात, कुछ वाद बन गए, कुछ संप्रदाय बन गए। कोई सच्चे झूठे के उसमें नहीं करना, हमारा कर्तव्य क्या है कि अगर हम रुक गए हैं तो आगे चलना है, बस पुरुष तक अहम ब्रह्मास्मि तक चलना है, गंतव्य स्थान जान लीजिए। तो बोले कोई सांख्य कोई योग दर्शनकार जगत नित्य है ऐसा मान रहे हैं, यानी जगत की उत्पत्ति सत्य है, हकीकत में नहीं है, नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न हुआ है ऐसा मानते हैं। दूसरे जो बौद्ध है वो ये जगत अनित्य है, उनका क्या है सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, और शून्य शून्य बौद्धवादी जो है वो क्या मानते हैं कि सर्व शून्य शून्यम शून्यम ऐसा मानते हैं कि ये जगत शून्य है क्षणिक है। ये जो है जो जगत में जगत की नित्यता या अनित्यता को प्रस्थापित करने में अपने जीवन का समय और शक्ति बर्बाद करते हैं ये भिन्न भिन्न विषय में, तो हे पुरमचन हे परमात्मा वो सब स्तुति के प्रकार से मैं मानता हूं कि पृथ्वी से लेकर पुरुष तक सब में आप ही है, तो कोई कहेगा कि जगत नित्य है तो वो आपकी स्तुति ही है क्योंकि नित्य तो नित्य जगत तो आपने वैसे ही आया है। उन्होंने उसको विवर्त तरीके से नहीं समझा तो उनमें उनकी गलती नहीं है, जगत का नाम तो लिए क्या है, अनजाने में भी परमात्मा का नाम तो लिया ना, उसका प्रभाव तो होगा ही। जैसे ये एंटी स्नेक वेनम आपको पता है ना, वैक्सीन जो आते हैं सर्प की, सर्प जब काटता है तब उसका जहर उतारने के लिए, पर ये तो अभी अभी बने हैं, पहले के जमाने में क्या था तो बोले मंत्र आते थे, सर्प डंस हो जाता था तो मंत्र आते थे, वो सर्प वो जो मंत्र जो जानने वाले होते थे वो विशिष्ट प्रकार के लोग होते हैं, उन्होंने उसकी आराधना की हुई होती है, और जब सर्प दंश होता है तो उन्हें बुलाया जाता है, वो मंत्र उच्चारण करते हैं और सर्प का जहर जो है वो आदमी में से चला जाता है। तो भाई जिसे सर्प काटा है वो तो बेहोश पड़ा है, और अगर होश में भी है तो वो मंत्र का अर्थ करने में क्या सक्षम होंगे, मंत्र का अर्थ जिसे सर्प काटा है उसे जानना जरूरी है सर्प का जहर निकालने के लिए, नहीं जरूरी है, मंत्र की असर तो होती ही है, आप अर्थ जानो या नहीं जानो। यानी हे परमात्मा आपके जगत को नित्य मानने वाले हैं या अनित्य मानने वाले हैं, या आपको नहीं मानने वाले भी ऐसा कहते हैं कि मैं परमात्मा को नहीं मानता हूं, वो भी आपका नाम तो लेते हैं ना, तो मुझे उसका भी हर्ज नहीं है, मैं उनको भी मानता हूं। देखिए ये सीखना है, और वेदांत के हम सब साधक हैं, और हमारा मुख्य जो वाक्य जो है, मुख्य जो शब्द जो है, हम वेदांत साधक अपने को जब कहते हैं तब ये दो शब्द याद रखना, अविरोध अविवादश्च, ये आपके साधन की साधना की नींव बननी चाहिए। अविरोध, किसी के साथ भी आप विरोध नहीं करना और किसी के साथ भी आप विवाद नहीं करना, भाई मेरे परमात्मा हमारे परमात्मा ने तो ऐसा ऐसा लिखा है, उत्पत्ति यहीं से हुई है, परमात्मा ऐसे है, सगुण ही है निर्गुण ही है, आप ये गलत बता रहे हैं, नहीं, विरोध किसी से नहीं करना, और अगर विरोध प्रदर्शित कोई करे तो उसके साथ विवाद भी नहीं करना। दुस्तर्का सुविरम्यताम श्रुतिमतः तर्को अनुसंधीयताम, दुस्तर्क कभी भी नहीं करना, विवाद नहीं करना, हमारी जो शक्ति जो है उसका ह्रास हो जाता है, और वो व्यक्ति को तो मजा आता है, हमें इरिटेट ही करना होता है, उन्हें कुछ सुलगाना ही होता है पर वो पास हो जाता है, वी आर हेल्पिंग देम। तो अविरोध और अविवाद एकदम याद रखना, वेदांत के साधक को तो खास याद रखना है, कभी भी विरोध विवाद नहीं करना, अंतर से समझ जाना, पुष्पदंत जी जैसी वृत्ति रखना। ये श्लोक यही समझाने के लिए है कि अगर वो इतने ज्ञानी होके भी सांख्य को, जैन है बौद्ध है मीमांसक है कपिल मुनि के जो है सबको, सब धर्म को, सब संप्रदाय को वो मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हे परमात्मा आपका ही नाम वो ले रहे हैं। तो हे परमात्मा, मैं उन्हें आपकी स्तुति ही समझ रहा हूं और हकीकत में ये बात है। ओहो हे परमात्मा, इसीलिए मैं भी विस्मित होकर आपकी स्तुति करूं तो गलत नहीं है। पुष्पद अंतर्जी का यही मेन पॉइंट है कि मैं गलत नहीं हूं आपकी स्तुति करने के लिए। मैंने जो आपकी स्तुति की है वो गलती नहीं है, क्योंकि आपको नित्य अनित्य मानने वाले भी इनडायरेक्टली आपकी स्तुति ही करते हैं। तो मैं स्तुति करूं, मैं गलत नहीं हूं। और ओहो हकीकत में ये वाणी जो है, यहां कहा है स्तुवन झिर्रे मित्वम न खलु ननु दृष्टा मुखरता। ये जो वाणी जो है वो कैसी है? वो दुष्ट है, निर्लज। दुष्ट नहीं कहते हैं, कहते हैं कि ये वाणी तो हे परमात्मा निर्लज है। क्यों ये वाणी निर्लज है? जानती है कि आपका जो प्रभाव है, आपका जो महिमा है, वहां तक नहीं जा सकती, तो भी आपके प्रभाव का वर्णन करने में उत्सुक है। इसलिए ये वाणी भले ही निर्लज हो, फिर भी स्तुति तो आपकी ही कर रही है। कहीं ना कहीं तो मेरा इससे चित्त शुद्ध हो रहा है, मेरी भगवद आकार वृत्ति बनी रहती है, इसलिए ये मेरा प्रयत्न व्यर्थ नहीं है। इतना ही परमात्मा को बार बार श्री पुष्पदंत जी कहते हैं। देखिए, कुछ भी हमारे भी शरीर मन बुद्धि से, ये ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय पांच प्राण से कोई भी प्रकार से के कर्म हो, तो कैसे भी इसके बारे में परमात्मा को मना लीजिए कि हे परमात्मा, कुछ भी प्रकार के मेरे कर्म अभी हो गए हैं तो आप उसका स्वीकार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये कर्म करते हुए मैं आपको याद तो कर रहा हूं, आपको याद कर लिया, अब कर्म की उल्टी सुलटी करनी, कर्म को शुद्ध करना, मेरे पुण्य को, मेरे पाप को पुण्य में बदल देना, वो आपके हित में है। ऐसा क्यों परमात्मा से प्रेम से बातें करनी है? ये वृत्ति बनाए रखने के लिए। और हकीकत में उनके प्रभाव में अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पुण्य पाप जो है वो भी विसर्जित हो जाते हैं। ऐसी श्रद्धा अगर हम खुद को वेदांत के साधक समझते हैं तो इतनी श्रद्धा आपके पास से अपेक्षित है। पर ये कब होगा? जब अविरोध और अविवाद करेंगे। और एक चीज और ध्यान में रखना, अविरोध अविवाद तो करें आप, खास करके कोई भी संत, कोई भी शिक्षक वेदांत के, कोई भी आचार्य, कोई भी गुरु, उनके साथ कभी भी वाद भी नहीं करना। वाद तो अच्छा है, वाद यानी बातें, फिर विवाद होता है, तर्क के बाद दुस्तर्क होता है और सुतर्क होता है, अच्छा तर्क होता है। कोई भी प्रकार का तर्क या वाद या सलाह सूचन ये गुरुजनों के साथ भूल से भी करना नहीं। ये अविरोध और अविवाद गुरु से ही शुरू होता है। कभी भी कोई भी प्रकार की सूचन हमें देने की जरूरत नहीं है, ये खूब ध्यान में रखना। क्योंकि हम जानते हैं किसके पास ये बुद्धि विवेक कहाँ से लाते हैं, उन्हीं लोग के, उन्हीं से पास लाते हैं।
2: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
3: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta 9.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Nandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Chiptah Sansar Vatena Cheshtate Susk Parvat. Very sundar charcha. Unhone kaha, निर्वासनु, जिसके अंतर्गत से कामना निकल गई, वासना निकल गई, निर्वासित हो गया, वासना से रहित हो गया, और वासना से रहित हो गया तो कहने लगे निरालंब। तब उसने सारे सहारे छोड़ दिए, आलंबन छोड़ दिए, अब किसी का सहारा ग्रहण नहीं किए, और जब तक वासना कामना रहती तब तक सहारों की आवश्यकता पड़ती। अब निर्वासनो निरालंब, आलंबन से रहित हो गया, और जो इतना काम कर लेता है, जो वासना से रहित हो गया, आलंबन का त्याग कर दिया, तो क्या होता? स्वच्छंद, वो स्वच्छंद हो जाता। आजकल तो स्वच्छंद शब्द का अर्थ है उच्छृंखलता, लेकिन ये नहीं। स्वच्छंद का अर्थ क्या है? स्व माने अपना, और छंद माने गीत। अब क्या हुआ? जो इस प्रकार से इहा से रहित, कामना से रहित हो गया, आलंबन का जिसने त्याग कर दिया, उसका फिर क्या है? अपना गीत। अब उसे पराधीन नहीं होना पड़ता। भई यदि किसी दूसरे से वह सुनना चाहेगा, आनंद लेना चाहेगा, तो वो संगीतज्ञ का मूड है या नहीं है, है ना, वो उपस्थित है अथवा नहीं है, ये सारी बातें आएंगी। लेकिन यदि अपना ही गीत है तो जब इच्छा हो तब उसका आनंद ले सकते। तो इसलिए कहा स्वच्छंद, वो स्वच्छंद हो जाता, अर्थात अपने में ही आनंदायित होने लगता, अपने भी ही मग्न हो जाता। और आगे संकेत किया मुक्त बंधना, सारे बंधनों से भी वह रहित हो जाता। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तब तक तो उदाहरण दिया चेष्टते शुष्क पर्वत, सूखे पत्ते का उदाहरण दे दिया। क्यों? जब तक पत्ता हरा है, उसके अंदर हरा तब तक है जब तक रस विद्यमान है, और जब तक उस पत्ते में रस विद्यमान है, हरा है, तो रस को ही वह आसक्ति कह दो, कामना कह दो, और वो जब तक वासना है तब तक पत्ता क्या किए? टहनी का आसारा ग्रहण किए, टहनी का आलंबन ग्रहण किए हुए, और टहनी का आलंबन ग्रहण किए हुए तो क्या होता? छिपता संसार बातें, वायु आती है और उस पत्ते में